प्रेत सुने मानने वाला को प्रेत कहते हैं। मर गया ना, प्र इत गत, प्र माने प्रकर्षण, इत गत माने यहां से चला गया, उसको प्रेत कहते हैं। ना प्रेत एक जोनी है, मरने वाला को प्रेत कहते। मर गया ना, प्र इत गत, ईण गत धातु से बनता है, प्रेता माने मर गया। तो मर करके कहां गया, गया चलिए फिर। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

सर्वसो बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा भरद्वाजे समीधानो युविष्ठ्यादेवत्पावकदीदिः त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तो सूरयः यन्दारो ये मघवानो जनानामोर्वन्दयन्तगोणाम् अग्ने जरितर्विश्वतिस्तापानो देव रक्षसः अप्रोजिवान् गृहपते महाँ असीदीवस्पायुर्दुरोणायुः अग्ने विवस्वतुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य आदाशुषे जातवेदो वाहा त्वमद्या देवाङ्कोशर्बुधः त्वन्नश्चित्रा भूत्या वासो राधांसि चोदय अस्य

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Samaveda Samhita Purvarchikam Prapataka 1 Dashati 9. Thank you.
2: अग्नवोजिष्ठमाभरद्युम्नामस्मभ्यमध्रिगो प्रणोराये पणीयासे रत्सिवादाय पन्थाम् यदि वीरो अनुष्यादग्निमिन्धीतमर्त्यः आजुह्वद्धव्यमानुषक्ष

पाकरोचसेक्षयितावद्यशोऽग्ने वृक्रो न पत्यासे त्वं विचर्षणे श्रावो वसो पुष्टिर्न पोष्यसि प्रातरग्निः पुरप्रियो विशस्तवेतातिथिः विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्ता स इन्धते यद्वाहिष्ठन्तदग्नये।

0: प्रातिरक्षांसिसेधति।
1: ओम ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: पञ्चदश तृतीयः।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: यदा विद्वान यदा पश्य विद्वान पश्यतीति पश्य, जो देखता है माने क्या, समझता है। ये गम धातु जो है ना, हमेशा किसी गति के रूप में उसका उपयोग होता है। आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट, है ना, आई गॉट इट, ऐसे होता है। आपकी बुद्धि में प्रवेश किया कि नहीं इस बात ने, हाँ मुझे अंदर घुस गया, ऐसे कहते ना, अंदर आ गया। इसलिए पश्यति, जानता है, समझता है। किसको? यदा पश्य पश्यते, देखता है किसको, पुरुषम। यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम, रुक्मवर्णम होता है सुवर्ण का। सुवर्ण में तीन गुण है, एक तो उसको कभी झंक नहीं लगता है, does not get rusted, malleable, और तीसरा है उसका जो चमाचम चमक है वो कभी जाती नहीं है। पित्तल की जाएगी, सबकी जाएगी, चांदी की जाएगी, पर always shining, कर्ण सुवर्ण। अव्यय, इसी प्रकार से आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा कभी विकृत होता नहीं है, जंक नहीं लगता है, विकृत नहीं होता है। और उसका जो चैतन्य स्वभाव है उसमें कभी आगे पीछे नहीं होता है, वो समान चैतन्य रूप ही देता है। जागृत हो चैतन्य रूप, स्वप्न हो चैतन्य रूप, सुषुप्ति हो चैतन्य रूप, कभी जड़ नहीं होता है, चित अचित नहीं होता है, सब प्रकाश सर्वावभासक है, अन्य प्रकाश निरपेक्ष है। ये तीन लक्षण सिर्फ चैतन्य आत्मा में ही होता है। सो यहां कहा यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम, जो स्वयं ज्योति है। अब आप देखिए, हम लोग को जो ये रंग दिया गया है ना, पहनते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑरेंज, इस रंग का नाम है। मैं अमेरिका गया, पहली बार देखा एक पूरी ट्रक भर के कई लोग एक कपड़े पहन के जा रहे थे। हमको लगा सब साधु लोग होंगे इतने, कि नहीं, रोड पे काम करने वाले जितने मजदूर हैं इनको ये रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। क्यों? ये जितने रंग है इसमें सबसे पहला अपनी आंख को कौन सा रंग मालूम पड़ता है, ये गेरुआ रंग ऐसा है, फर्स्ट यू साइट दैट। इसलिए कहीं अकस्मात ना हो जाए, लोग पहले से देख ले, इसलिए उनको पहनाया जाता है कैची कलर, इंटरनेशनल ऑरेंज। इसी प्रकार से कोई भी अनुभव हो, सबसे पहला कौन होता है, चैतन्य। मैंने देखा, मैं चैतन्य ने देखा, सुना चैतन्य ने सुना, सभी अनुभव में अनुगत अनुसूत है स्व प्रकाश। एक लक्षण सुन लेना, व्याप्ति है इसे। यत्र यत्र व्यवहार तत् तत् व्यवहारः तद् व्यतिरिक्त ज्योतिर अधीनः यत्र व्यवहारः तद् व्यवहारः तद् व्यतिरिक्त ज्योतिः अधीनः इसको कहते व्याप्ति कुछ प्रत्यक्ष में देख के हम उसका नियम बना लेते हैं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या होता है अग्नि ये क्या होगा व्याप्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इसी प्रकार के जहां भी व्यवहार होगा वो व्यवहार चैतन्य के अधीन ही होगा चैतन्य के बिना व्यवहार की सिद्धि होती नहीं है फिर पूछा व्यवहार क्या होता है शब्द उच्चारण तत्स्फुरणम व्यवहार है आदान प्रदान व्यवहार है ना शब्द को उच्चारण करो और मन में वो शब्द का अर्थ दिखे इसी का नाम भी व्यवहार है घड़ा तो मन में घड़ा दिखता है गैया मन में गैया दिखती है या कुछ लेन देन आंख से देखा हाथ से पकड़ा लेन देन तो जागृत में व्यवहार है लेन देन है स्वप्न में भी लेन देन है तो वो व्यवहार किसके अधीन है चैतन्य ज्योति के अधीन है सुषुप्ति में भी व्यवहार होना चाहिए क्योंकि जगने पे मैं कहता हूं मैं कुछ जानता नहीं था खूब सुखी था इसलिए वहां भी कुछ है व्यवहार वो भी किसके अधीन है चैतन्य ज्योति के अधीन है और दूसरा वो चैतन्य ज्योति उस व्यवहार से बिल्कुल निराली है स्वतंत्र है तो यहां का यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम और देखो बहुत बढ़िया बात है कर्तारम कर्तारम का अर्थ क्या होता है अपनी कर्मेंद्रियों में विषय रूप फल की प्राप्ति के लिए संकल्प पूर्वक जो कर्म अहंकार करता है उसको क्या कहते हैं कर्तृत्व डूअरशिप हमको फल चाहिए आम चाहिए तो आम के लिए क्या करेंगे मार्केट जाएंगे और आम ले आएंगे खरीद के इसको क्या कहते हैं कर्तृत्व पूर्वक मुझे आम चाहिए इसके लिए मैं आम खरीद के ले आया ये हो गया त्रिच प्रत्यय कर्तृत्व और मैं अपने को क्या मानता हूं मैंने ही पौधा लगाया था मैंने ही आम तोड़ा मैंने ही आम बेचा ये मेरे आम है ये सब क्या है कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तारम प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा अहं कर्ता इति मन्यते ठीक है गीता में अहम कर्ता कर्तारम अब देखो यहां उपनिषद में क्या बढ़िया बात बता दी कर्तारम ईशम ये कर्ता ही परब्रह्म है ईश्वर है इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में बाध सामानाधिकरण्य बाधायाम सामानाधिकरण्यम जब मैं कहता हूं अरे भाई ये भूत नहीं है ये तो लकड़ी का खंभा है भूत लकड़ी का खंभा है इसका अर्थ क्या हो गया भूत का बाध हो गया और कौन बचा लकड़ी का खंभा तो इसमें एक का निवृत्ति हो जाती, दूसरे की सिद्धि हो जाती है। कर्तारम ईशम, ये कर्ता जो आपको अनुभव में आ रहा है वो कर्ता ही परब्रह्म है, तो किसका बाध हो गया? कर्तृत्व का बाध हो गया, क्योंकि कर्तृत्व परब्रह्म है। कर्ता रमीशम, और क्या उसका स्वरूप है? पुरुषम। संस्कृत में पुरुष शब्द का अर्थ एक है और भाषा में दूसरा होता है। स्त्री पुरुष ये लिंग भेद है, पर यहां पारिभाषिक रूप में पुरुषोत् पुरुष शब्द का होता है पुरी पुरो उषति वसति इति पुरुष है। ये नगरी है जगन्नाथ पुरी, इस प्रकार से इस नगरी में जो निवास करता है, जिसके कारण ये नगरी काम कर रही है, उसको कहते हैं पुरुष। दूसरा अर्थ किया गया है पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुषोत्तम है, गीता में भी आए। पूर्ण जो है उसी का नाम है पुरुष। यदा पश्य यदा विद्वान पश्यते, किसको? रुक्मवर्णम स्वयं ज्योति कर्तारमीशम। कर्तार को छोड़ के क्या है? कर्तार का रूप छोड़ के क्या है? वो कर्ता का सच्चा रूप क्या है? ईश है, ईशनशील है और पूर्ण है। ब्रह्म योनि बहुत स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मणश्च योनि, जिससे ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ भी प्रकट हुआ वो ब्रह्म, या जो ब्रह्म भी है ब्रह्मश्च योनिश्च। योनि मनि कारण, जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भी है और जगत की उत्पत्ति का हेतु भी वही ब्रह्म है। ब्रह्मश्च योनिश्च ब्रह्म योनिम। यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। अब पराविद्या तो आ गई, अब पराविद्या का फल बताते हैं। वेद मुक्ति का वर्णन स्वयं करता है, उपनिषद। सभी जीव बद्ध है, जहां जीवत्व है वहां बंधन है। बंध का नाम होता है जिससे हम छूटना चाहते हैं उसी को बंधन कहते हैं। ये बात समझ लो, फ्रॉम व्हाट यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। जिससे हमेशा हम प्रयत्न करते कैसे छूटे, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। अगर आप जेल में हैं तो क्या चाहते हैं? अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? बोलो भाई, इतना तो मालूम होना चाहिए। कारा जेल में हुआ था। एक महात्मा जा रहे थे ट्रेन में बिना टिकट, किसी ने पूछा महाराज कहां जाना है? टिकट नहीं है कि नहीं है? कहां जाना है? राम जन्मभूमि। तो टिकट चेकर ने बताया आपको कृष्ण जन्मभूमि ले जाएंगे। बोली क्या? जेल में ले जाएंगे आपको, जेल में। सर, जेल से हम छूटना चाहते हैं, बंधन, रोग से छूटना चाहते हैं, बंधन। कन्या राशि वाले शनि दशा से छूटना आजकल चाहते हैं। क्यों? उनको शनि दशा बता रही है। तो जिससे हम छूटना चाहते हैं वो क्या है? बंधन। कभी कभी हम अमुक आदमी से भी छूटना चाहते हैं, भैया ये जाए तो बहुत अच्छा, कहीं मेहमान घर में आते तो यही प्रार्थना करते भगवान ये लोग कब जाए, है ना। अपने बॉस से भी छूटना चाहते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, आसाम उसको भेज दो आसाम में, क्यों इसको कहते हैं जिस जो दुखदाई है उससे छूटना चाहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता है प्रेमपुरी में आके हम स्वामी जी अपने पैसे से छूटना चाहता है, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। पैसा तो हमको चाहिए, उससे छूटना नहीं है। तो दैट विच इज अ प्रॉब्लम आई वांट टू गेट रिड ऑफ। बट बंधन वेदांत में क्या है, अपने आपा के विषय में आपकी जो मान्यता है उससे ही आप छूटना चाहते हैं। आपने अपने आप विषय में कुछ धारणा बना ली है कि मैं मरने वाला हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, दुख से छूटना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, ये दुखी पना से छूटना चाहता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, छोटे जी हूं, छोटे जी नहीं रहना है पर छोटे जी हूं क्या करूं, दुख एक बंधन, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। तो ये बंधन की निवृत्ति जो आत्ममूलक है, आत्मा में अधिकृत है, आत्मा में है, मैं बद्ध हूं, मैं दुखी हूं, तो इसकी निवृत्ति होती है इस ज्ञान से, अपने स्वरूप को पहचानने से। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। देखो भाई, न किसी ने पाप को देखा है न किसी ने पुण्य को देखा है। क्या रंग है पाप का, क्या स्वाद है पाप का, पाप की आवाज कैसी आती है, कुछ नहीं देखा नहीं है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है। इस कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होगी, ये बात शास्त्र के सिवाय कोई नहीं जान सकता है। गो हत्या से पाप की उत्पत्ति होगी और गोदान से पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भोजन खिलाएंगे, विद्या प्रदान करेंगे, पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भूखा रखेंगे, घर में आए को खिलाएंगे नहीं, तो क्या होगी, पाप की उत्पत्ति होगी। तो शास्त्र के द्वारा किस कर्म से पाप पुण्य नाम का अदृष्ट उत्पन्न होता है उसके लिए वही प्रमाण है। पाप पुण्य को अदृष्ट का है, क्यों न दृश्यते, दिखता नहीं है, इसलिए क्यों नहीं दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अदृष्ट है। क्यों अदृष्ट है, क्योंकि दिखता नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, पूछना है अभी और आगे, अदृष्ट है। अभी पर उसका जो पर्यवसान फल है वो दिखता है। जीवन में ऐसी परिस्थिति, अनकंडीशनल सिचुएशन, प्रतिकूल संयोग, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति से मालूम पड़ता है ये किसका फल है। हाँ, कई लोग का पैसा किसी ने ले लिया, वापिस देने का नाम नहीं है, और हमारा पैसा होने पर भी घर में क्या है, पैसा नहीं है खर्च करने को, ये स्थिति कौन सी हो गई, प्रतिकूल। किसका फल है, मानना पड़ेगा पाप का फल है। जिस ट्रेन में मैं बैठा उसी को अकस्मात हो गया, ये क्या है, प्रतिकूल। हाँ, अनुकूल, ठीक है, सब बहुत सब लोग जानते, सुख दुख तो को बहुत मालूम है, पर किसका फल है, पाप पुण्य का। कभी कभी दोनों का मिक्सचर भी आता है, इसको मिश्र फल कहते हैं। बहुत बढ़िया चावल खाने को मिला, आहा बासमती चावल, खाते खाते बीच में कंकड़ आ गया, ये क्या है, और 3 फुट का बड़ा लंबा बाल भी निकला उसमें से, ये सब क्या है, पाप मिश्र। जीवन में दोनों होता है, कभी कभी पुण्य कभी कभी पाप, दोनों चलता है। तो कार्य से अनुमान करते हैं कि ये पाप का फल होगा, ये पुण्य का फल होगा, और एक दूसरी बात देखिए, हमारे अकाउंट में पाप पुण्य कितने हैं? चित्रकूप भी पागल हो जाएगा, इतना है, अनंत है। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे भगवान, मेरी मुक्ति करिए संसार से, कि मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। कि क्या पुण्य कर्म किया है गोस्वामी जी आपने? कि मेरे पाप पुण्य का हिसाब इतना लंबा था कि चित्रकूप देखते देखते इतने उलझ गए उसमें कि उस समय भव रोग से कई जीव छूट के भाग गए, तो मेरे कारण इन लोग की मुक्ति हो गई, उसका फल के रूप में आप मुझे मुक्त करो। देखो इतना बड़ा अकाउंट है, इन्फिनिट। ओके, पाप पुण्य के जीव अनादिकाल से, पाप पुण्य भी कितने हैं उसको देखना। ये ज्योतिष लोग क्या जानते हैं, एक जीवन का थोड़ा फलादेश कर देते, बड़ी बड़ी बात करते, कुछ नहीं है, इन्फिनिट। और इसको भोगना है तो कितना जन्म लेना पड़ेगा? अनंत जन्म तक। देखो आप लोग, मैं मानता हूं सब जो यहां आते हैं, भले लाल पीले कपड़े न पहनते हो, यहां के रोज आके बैठते हो, आप लोग साधु है। साधु माने जिज्ञास हुए, सब कुछ छोड़ के सीधे साधे लोग हैं। कोई भी कपड़ा हो, मैं उसको देखता हूं, मैं साधु मानता हूं आपको। तभी ये पाप पुण्य के चक्र में ज्यादा न पड़े, ये पुण्य करिए, सब छोड़ो। सबसे बड़ा है ये पाप पुण्य, सब प्रकार के पाप पुण्य हर हमेश के लिए कैसे छूटे, इसका उपाय है ये ब्रह्म विद्या। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विद्या, पराविद्या, इसकी सेवा करो, और किसी की नहीं। अभी ये पाप पुण्य को, जमेरा को छोड़ो, जो कि त्यों दर्दी चदरिया। तदा विद्वान पुण्य पापे विदूय, विदुन होती, सब पाप पुण्य से वो मुक्त हो जाता है, अनंत कोटि के पाप पुण्य से। अभी एक बात और है, कोई प्रायश्चित कर्म करके पाप से छूट सकता है, पर प्रायश्चित कर्म करके पुण्य से छूट सकता है? वो तो धरे रहेंगे। इसलिए इसका बहुत चिंतन करना है। तो गीता के 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य के भाष्य में शंकराचार्य ने बहुत भारी चर्चा की है, वो देख लेना, समय अभाव से मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तदा विद्वान पुण्य पापे विदूय, सब पाप पुण्य उसका जल गया, जल गया थे ही नहीं। एक दिन मुझे महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज ने, महाराज ने बताया, बेटा महात्मा का आगे जन्म नहीं होता ये तो ठीक है, पर उसका पूर्व जन्म भी नहीं था ये महात्मा जानता है। आत्मा की दृष्टि से न उसका पूर्व है न अपर है, दोनों से मुक्त है वो तो। तदा विद्वान पुण्य पापे विदूय निरंजन है, जिसमें माया विद्या का लेश नहीं है, ऐसे आत्मा को साम्यम उपैति प्राप्त करता है। न भी उसको माया छू सकती है, न विद्या छू सकती है, न कर्म छू सकते हैं, न जन्म छू सकते हैं, न गति आगति छू सकते हैं। इस प्रकार की पूर्ण मुक्ति किसको प्राप्त होती है? विद्वान को। और अविद्वान का क्या होता है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। और उपनिषद बहुत बढ़िया बताती है, मृत्यु से मृत्यु मापनोति या इह नानैव पश्यति। जन्म से जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु की। मृत्यु दुखदायी है, बारंबार जाता है एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, क्या है? इससे छूट जाता है कौन? विद्वान। अविद्वान वही चक्कर काटता रहता है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि आप भी विद्वान बनो। एक बात याद रखना, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई मुझ वासुदेव के स्वरूप को आत्मा के रूप में पहचानता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। जब भी कोई ये वाक्य सुनता है तो मन में क्या होता है, मैं तो अभी तक हुआ नहीं हूं, कब मैं वासुदेव को पहचानूंगा, कब मेरा ऐसा जन्म होगा। अरे भाई, ये जो वाक्य सुनने वाला है उसके बहुत जन्म हो चुके हैं, ये सुनने वाले का अंतिम जन्म ही होना चाहिए, नहीं तो कहां से सुनेगा ये। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ऐसे होता है, हमको अपने को शुद्ध करना है, इस जन्म में हमको बोधिसत्व नहीं प्राप्त है। जब हम शुद्ध होंगे तब, हर जन्म में क्या सोचते हैं, हम शुद्ध होंगे तब। तब कब शुद्ध होगे भाई, वेदांत ये नहीं है नगद, ये सुनने वाला का ये अंतिम जन्म है, क्योंकि ये सुन रहा है। आप ये सब सुन के ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, मानी अभी आपके बहुत जन्मों का फल मिल चुका है। ये मेड इट, बहुनाम जन्मनामंते, इसका फल यह है। इस प्रकार से यहां मुझे दो दिन प्राप्त थे और दो क्लास में एक दिन अपराविद्या पराविद्या दोनों का वर्णन हो गया। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
3: हरिओम, पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन करते हैं। जभी जभी पधारते हैं आनंद लेके आते हैं, दुनिया भर में घूमे और यही आनंद, खाली प्रेमपुरी। इतने हम सेल्फिश न बने, स्वार्थी न बने कि खाली प्रेमपुरी। प्रेमपुरी में से कई संत इसी तरह से जाए और बहुत अच्छा कार्य करे, और उसी के साथ प्रेमपुरी का विनाम हो और संत लोग का जो भी ज्ञान विद्या है दुनिया भर को मिले, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो महाराज जी को फिर से आप सबकी तरफ से हम प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह जो आखिरी एक वाक्य आपने सुना हो, तो उस एक वाक्य में उन्होंने अपने आशीर्वाद बहुत ही अच्छी तरह दे दिया है। तो फिर से महाराज जी को प्रणाम करते हैं।
4: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
5: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Viranminda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे तमिलनाडु के और एक नायनमारी संत की कहानी। इनका नाम है वीरुण मंडल। तमिलनाडु के चेर प्रदेश में सेन्नगर नाम के एक कृषक परिवार में महान संत वीरुमिंडर का जन्म हुआ था। यह नगर आधुनिक केरल से कुछ दूरी पर है। पेरियपुराण के रचयिता, वैसे बता दूं पेरियपुराण शिव की महिमा का गुणगान है। इनमें शिव के संतों का वर्णन है जो कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत के प्रदेश से हैं। पेरियपुराण के रचयिता चिक्किलर ने वीरुमिंडर की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है, विख्यात संत हैं वीरुमिंडर, जिनकी शिव के पद कमलों पर दृढ़ आस्था थी। माया ममता के समस्त बंधनों को वे कठोरता से तोड़ चुके थे। प्रभु के भक्तों के प्रति उनकी प्रबल स्नेह वंदना थी। संत वीरुमिंडर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। अनेक मंदिरों में प्रभु की अनंत कीर्ति का गुणगान उन्होंने किया और अंत में तिरुवारूर में आकर बस गए। तिरुवारूर तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। तिरुवारूर के त्यागराज शिव मंदिर में एक देवाचार्य मंडप है जहां शिव भक्त संत रहते थे। वीरन मिंडर उन्हीं के साथ रहने लगे। उस काल की परंपरा के अनुसार तिरुवारूर के मंदिर में प्रवेश करने वालों को सर्वप्रथम मंडप में रहने वाले इन शिव भक्तों की वंदना करनी थी। उसके तत्पश्चात ही भगवान के दर्शन के लिए वो भीतर प्रवेश कर पाते थे। विख्यात भक्त कवि सुंदरमूर्ति संत या नायनमार वीरन मिंडर के समकालीन थे और उन्होंने अज्ञातवश शिव भक्तों की वंदना किए बिना ही शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। भक्तों की अवहेलना देखकर सुंदर वीरन मिंडर से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा और उन्होंने घोषणा कर दी। भक्तों की अवहेलना करने वाले सुंदरमूर्ति को और उन्हें परश और उनके भगवान त्रिपुरदाह सर्प को धारण करने वाले प्रभु शिव को भी संतों की मंडली से निष्कर्षित किया जाता है। ऐसे अद्भुत साहस से युक्त वीरन मिंडर धन्य है। सुंदरमूर्ति नायनाथ ये मानते थे कि वे शिव भक्तों के सानिध्य के योग्य नहीं हैं और इसी कारण वो प्रभु के प्रति अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी अयोग्यता का वर्णन किया। शिव ने उनके अनुग्रह का स्वीकार किया और उन्हें देवाचार्य मंडप के संतों के समक्ष प्रस्तुत होकर कहने का साहस दिया, मैं तिल्लई चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूं से प्रारंभ होने वाली 10 पदों की कविता उन्होंने सुंदरमूर्ति से वर्णन करवाया। इन पदों में सुंदरमूर्ति ने भक्तों की नामावली की और उनके गुणों का वर्णन किया है। इन्हीं 10 पदों के आधार बनाकर चकेला ने प्रिय पुराण की रचना की। वीरन मिंडर के जीवन की इस घटना से एक सत्य उभरता है। वीरन मिंडर आदि महान संत थे। किसी एक बात को जीवन का लक्ष्य बनाकर मार्ग में आने वाली बाधाओं विपदाओं की चिंता न किए हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। यदि प्रभु स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने लक्ष्य को त्याग करने को कहें तो भी ये ईश्वर का त्याग चाहे कर दें पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। इन संतों के विषय में यह विचारना निरर्थक है कि इन्होंने किस बात को अपना लक्ष्य बनाया। युग बोध और जीवन दृष्टि में परिवर्तन हो गया है। जिस सिद्धांत को हम आज अत्यंत साधारण मानते हैं, हो सकता है कि कोई संत उसी को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और उसके लिए जिए या मरे। अतः लक्ष्य कौन सा है यह देखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, लक्ष्य सत होना चाहिए। सत यानी कि अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। संत की पहचान इसी में है कि क्या उसने अपने लक्ष्य का अंत काल तक पालन किया है या नहीं। प्रिय पुराण के संतों के पुण्य चरित्रों का यह संकलन लक्ष्य के लिए जीने और प्राण उत्सर्ग करने के आधार पर किया गया है। ओम नमः शिवाय।
7: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
8: Tab kya hoga? Vranti. Jo Narayan nahi hai, usme Narayan buddhi hona vranti hai ki nahi? लेकिन प्रस्तर आदि में नारायण बुद्धि होने पर यह भ्रांति होने पर भी उसकी उपासना का फल क्या हुआ? नारायण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये उपासना संवादी भ्रम है। और अन्यत्र तुम यदि नारायण बुद्धि करोगे है तो फिर वो उससे तुम प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो शास्त्र इसीलिए शास्त्र प्रमाणित आलंबन में नारायण बुद्धि करोगे तो वह संवादी ब्रह्म होगा, उससे प्रयोजन सिद्ध होगा। और जो शास्त्र ने नहीं कहा है उन वस्तुओं में नारायण बुद्धि करोगे तो वह विसंवादी ब्रह्म होने के कारण प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब सोने का जो मूर्ति बनाया भगवान नारायण की, तुम उस मूर्ति को बनाकर घर में रखकर नारायण बुद्धि करके पूजा करोगे तो वह समाधि ब्रह्म होने पर भी तुमको नारायण भाव का भाव की प्राप्ति होगी, चित्त शुद्ध होगा और भगवत भाव की प्राप्ति तुम्हें अनुभूति होगी। लेकिन उसी सोने का तुम एक चेन बनाकर लॉकेट बनाकर गले में लगाओगे, लगा रखे होगे नहीं है, और उस गले में जो लटका हुआ है उसमें नारायण बुद्धि करोगे तो क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो चूड़ी है सोने की, बांगड़ी बोलते हो ना, हाथ में पहन रखा है और तुम कहोगे कि नारायण बुद्धि कर लो, क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी? क्योंकि शास्त्र ने हाथ में पहनी हुई चूड़ी में भगवान नारायण की बुद्धि करके पूजा करो ये कहा है, है? नहीं है, शास्त्र ने नहीं कहा, इसलिए तुम भले ही पूजा करो बंगड़ी को नारायण मानते हुए, है? तुमको भगवान नारायण भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्यों? वह विषमवादी ब्रह्म है। और इधर वास्तव में सोने की नारायण की प्रतिमा बनाकर यदि तुम स्थापना करके आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पंचोपचार, षोडशोपचार, बत्तीसोपचार पूजा करोगे तो निश्चित है कि तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी। है दोनों सोने, है दोनों में भावना करनी है, एक में शास्त्र प्रमाण के अनुरूप भावना करनी है और दूसरे में शास्त्र ने नहीं कहा फिर भी भावना करनी है, तो दूसरा शास्त्र के द्वारा न कहे होने के कारण यदि तुम भावना करोगे तो उससे तुम्हारे भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी, और पहले में शास्त्र ने कहा है उसी अनुसार जो तुम भावना करोगे तो तुम्हारा के भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए ब्रह्म दो प्रकार के हो गए, एक संवादी ब्रह्म, दूसरा विषमवादी ब्रह्म। ये बात हम क्यों उठा रहे हैं? यहां शंकराचार्य जी, लोग जड़ जना कितने भ्रांति ब्रह्म में हैं और क्या क्या करते हैं भ्रांति के चलते, ब्रह्म के चलते, ये बताने जा रहे हैं। यथा बुद्धि ही सुक्तौ रजतम, एक भ्रांति का लक्षण ये हो गया कि सुक्तौ रजतम, रजत बुद्धि, सीपी में रजत की जाने चांदी की बुद्धि होना। दूसरा उदाहरण, काचास्मनि, काचास्मनि मणि, कांच अस्मनि, कांचास्मनी माने शीशा, कांच बोलते हो ना, संस्कृत शब्द है कांच, शीशा। अस्मनी माने पत्थर, क्योंकि शीशा भी प्रस्तर है, पार्थिव है शीशा, इसलिए कांचास्मनी कांच के टुकड़ों में मणि बुद्धि हो गई, किसी को कांच का टुकड़े में मणि बुद्धि हो गई, हाँ, और किसी को मणि में कांच बुद्धि हो जाती है, ये क्या है? भ्रांति। मणि में कांच बुद्धि होना और कांच में मणि बुद्धि होना दोनों भ्रांति हैं। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना, न जानने का फल कभी कभी सुख होता है, न जानने का बल फल कभी कभी सुख होता है, और कभी कभी जानने का फल बड़ा भारी दुख होता है, होता है कि नहीं? नहीं जानोगे तो सुख है और जानोगे तो दुख है, और कभी कभी नहीं जानोगे तो दुख है और जानोगे तो सुख है, ये विपरीत है, ये दोनों भ्रांति है। न जानने से सुख होगा और जानने पे दुख होगा, और कहीं कहीं जानने पर दुख होगा, न जानने पर सुख होगा। इस सुख दुख का कोई ठिकाना नहीं है। वो जानने से सुख होता है कि न जानने से सुख होता है, जानने से दुख होता है कि न जानने से दुख होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तब वह उसको दुख होगा कि नहीं, डरेगा कि नहीं, भयभीत होगा कि नहीं? वो यदि डर गया, भयभीत हुआ, तो उसका कारण क्या हुआ? न जानना। ये सिद्ध हुआ कि नहीं, बोलो? रस्सी के स्वरूप को न जानना उसके लिए भय का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया। फिर से आगे उसने देख लिया, भ्रांति हो गई, सर्प है, तुरंत उस पीछे मुड़ गया और दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसको नीचे गिर गया किसी गड्ढे में और टांग टूट गई। बोलो, अब सुख होगा या दुख होगा? और वो जो दुख है किस कारण से हुआ? न जानने से। किसको न जानने से? रस्सी को न जानने से। और दूसरा, कोई व्यक्ति को कांच के टुकड़े में हीरे की बुद्धि हुई, अब उसने उस हीरे समझकर उस कांच के टुकड़े को घर में लाकर तिजोरी में रख ली और मन ही मन प्रसन्न हो गया कि भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ कर दिया। महात्मा लोग कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। ये महात्माओं की भाषा है ये सब, ये भगवान का कोई भरोसा नहीं है। देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है, है? कोई भरोसा नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या निश्चय किया? इतना बड़ा कांच का टुकड़ा था, बड़ा चमकीला था, अब उसको कांच में हीरे की बुद्धि हुई, तो यह भ्रांति हुई कि नहीं उसको? और उसको उठाया, लाया, प्रसन्न हो गया, वाह इतना बड़ा हीरा, कितना कैरेट का होगा, ओहो इसका मूल्य बाजार में बेचूंगा, तो क्या भगवान प्रसन्न हो गए आज तो। बड़े खुशी से लाया और तिजोरी में रखा और बार बार सबसे कहता रहा, भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है भाई? अरे हमको बढ़िया हीरा मिल गया है, अब हमारे पास कोई दरिद्र फटके नहीं आ सकता है, गरीबी नहीं रह सकते, दरिद्र। एक दिन बेचूंगा, करोड़ों रुपया मिलेगा, करोड़ों रुपया का हीरा मेरे पास है, मुझे लगता है दुनिया में किसी के पास नहीं, अब तो मैं माल माल हो गया। अब क्या प्रसन्न है, भगवान को धन्यवाद दे रहा है, सबको प्रसन्न है, खुश है, है? घर में जाकर श्रीमती का आज खिचड़ी और कड़ी नहीं पकाना। बोले क्यों? अरे आज तो भगवान ने इतना दिया है कि आज खुशी का दिन है, बढ़िया लापसी का लापसी पकाओ, मूंग की दाल का हलवा बनाओ, बादाम काजू डालना उसमें, खूब हलवा पकाओ, आज तो खुशी का दिन है, प्रसन्नता के दिन है। क्या खुश हो गया वो, किसके चलते? अज्ञान के चलते खुश हुआ कि नहीं? अब उसने विचार किया कि एक दिन तो इसको बेचना ही पड़ेगा, रख रखने से क्या फायदा है, है? तो गया जब जौहरी का है बेचने के लिए, लेकर गया, कहा मेरे पास एक हीरा है, कितनी कीमत का?

अरे ये तो कांच का टुकड़ा निकला, क्या करें भाई, मेरा भाग्य ही ऐसा। दुखी हुआ कि नहीं बोलो, हैं? ज्ञान से दुखी हुआ, वो ज्ञान से सुखी हुआ कौन? रस्सी में सर्प मानने वाला जब प्रकाश आ गया तो ये तो रस्सी है, तो अब प्रसन्न हो गया कि नहीं? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं कैसा मूर्ख हूं, ये तो रस्सी निकली। पहले अज्ञान से दुखी हुआ था, ज्ञान से सुखी हुआ, और यहां अज्ञान से सुखी हुआ था, ज्ञान से दुखी हुआ। ये सुख दुख का कोई भरोसा नहीं है वो। हाँ, तो यहां शंकराचार्य जी इसी प्रकार के भ्रांति से लोग किस तरह भ्रमित हैं पहला उसका प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति, यथा कांचास्मणि मणि इति, मणि बुद्धि इति। इसी तरह यथा जले पेष्टे क्षीरम बुद्धि इति है। ये शब्द आप लोग समझ पाए? जले पेष्टे क्षीरम, जल में आटा घोलकर पतला बनाकर रखो, मैदा अरारोट कुछ डाल के घोल दो और पतला, तो देखने में कैसे लगेगा? क्षीर दूध लगेगा कि नहीं? यथा पेस्टे क्षीर, पेस्ट माने पीठा, पीठो, पीठ शब्द बोलते हैं वो आटे को, ये संस्कृत भाषा है। पिष्ट, पिष्ट गुजराती में तुम लोग लोट कहो छो, अपने शू कहवाए? पिष्ट, पीसकर जो तैयार हुआ है उसको पिष्ट, तो पिष्ट द्वारा जो बना उसको पेस्ट, पेस्ट हो गया। पिष्ट द्वारा जो बनेगा वो क्या होगा? पेस्ट होगा। हाँ, तो उस पेस्ट छीर पानी में वो पिष्ट डालोगे तो जो सफेद पानी बनेगा वो क्या होगा? पेस्ट होगा। वो पेस्ट में क्षीर बुद्धि हो गई। तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पुराण की कई कथाएं हैं? अश्वत्थामा का है, उपमन्यु का भी है। अश्वत्थामा का भी वही प्रसंग है। एक बार अश्वत्थामा बेचारे द्रोणाचार्य तो गरीब ही थे, हैं? द्रोणाचार्य तो गरीब थे, अब गरीब होने के कारण उनकी पत्नी भी गरीब रही होगी। पति यदि गरीब होगा पत्नी अमर होती है कि नहीं? अमीर होती है कि नहीं? यहां तो होते हैं वो, हाँ हो जाते। पत्नी धनवान होगी पति बेचारा गरीब हो सकता है। अरे मायके का संपत्ति लाई होगी तो पत्नी क्या कहती है पता है? पति को क्या बोलती है? ये मेरा संपत्ति है, तेरा थोड़ी है, ये सारा संपत्ति मेरा, मेरा संपत्ति खाकर तुम बचा हुआ है, ये सारी संपत्ति किसकी? मेरी है। तो क्या हुआ? पत्नी धनवान हो गई, पति बेचारा गरीब का गरीब ही रह गया। हाँ, तो ऐसा कृपी के पास ऐसा नहीं था, है ना? बेचारा कृपाचार्य के पास क्या था और क्या देते दहेज में द्रोणाचार्य को, है? तो द्रोणाचार्य और कृपी, उनका पुत्र अश्वत्थामा, घर में तो कुछ था नहीं बेचारा। एक बार वह मामा के यहां चले गए अश्वत्थामा, तो वहां बढ़िया गाय का दूध है उनको पीने को मिला, तो क्या आनंद आया, पहली बार जीवन में मुख में उनको गाय का दूध मिला। तो पूछा कि क्या है? ये गाय का दूध है बेटा, खूब पियो, बड़ा गुणकारी है, बड़ा फायदा करता है। तो दो चार दिन मामा के यहां बैठा तो वो गाय का दूध रोज पीता था, बड़ा स्वादिष्ट था। उसके बाद घर आ गए, अब अपनी मां से अश्वत्थामा कहने लगे कि मां मुझे दूध पिला, मां मुझे दूध चाहिए। बार बार दूध पर वह हट करने लग गए अश्वत्थामा,

0: मां ने कहा कि ये बेचारा वहां दूध पी के आया है और यह दूध मांग रहा है, अपने पास दूध तो है ही नहीं। बड़ा होशियारी कर लिया उसको। हम लोग कभी कभी बच्चों को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिह्वा जो है चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े का हो बराबर काम करता है, करता है कि नहीं? जिह्वा तो चाहे बच्चे का हो चाहे बूढ़े का हो, जिह्वा बराबर काम करता है। उन्होंने आटा घोल दिया पानी में और थोड़ा घोल घाल के ले बेटा गिलास में तैयार कर दिया, ले बेटा दूध पी ले। अब अश्वत्थामा ने जब दूध के नाम पर वो पिया तो जिह्वा ने उसको रिजेक्ट कर दी है? मां ने दूध कहा लेकिन अश्वत्थामा के जिह्वा ने तो कहा नहीं ना। कहा जिह्वा भी यदि मान लेता मां का कहना, जैसे मां ने कहा वैसे जिह्वा भी कह देता तो अश्वत्थामा को क्यों फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। जिह्वा ने रिजेक्ट कर दिया, बोले थू थू कर दिया, ये तो नहीं है दूध, मुझे दूध दो। बड़ा हट करने लगा तो कृपी ने कहा जब द्रोणाचार्य जी आए, अरे सुनो जी ये जो लड़का है हमारा बेटा है वो बहुत हट कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है। क्यों? बोले दूध के लिए हट कर रहा है, वो और कुछ खा ही नहीं रहा है, मुझे वही चाहिए बोलता है। अब क्या करें भाई? बोले क्या करें, हमारे पास गाय खरीद के लाने का कोई क्षमता नहीं है, संपत्ति पैसा नहीं है, और आजकल तो श्राद्ध पक्ष भी नहीं है, जजमानी भी नहीं चल रही है, कोई जजमानी नहीं चल रही है। नवरात्रि होती तो कोई अनुष्ठान आदि कर लेते, चंडी का पाठ वो भी नहीं है, श्राद्ध पक्ष होता तो किसी के यहां श्राद्ध तर्पण कराने चले जाते वो भी नहीं है, क्या करें, जजमानी भी नहीं चल रही है। फिर कृपी ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम्हारा जो एक मित्र है ना पढ़ते समय गुरुकुल का साथी, कौन था? द्रुपद। हा, वो आजकल राजा बना है कह रहे हो ना तुम, पहले जो तुम्हारे गुरुकुल का साथी है वो अभी राजा बना है, तुमने ही तो कहा है, तो उसके यहां चले जाओ मित्रता के नाते, उसके राजा है उसके यहां तो बहुत गाय है, बहुत संपत्ति है, तो थोड़ा सा संपत्ति जाने दो, संपत्ति छोड़ दो, एक गाय तो ले आओ, मांग लो एक गाय मांग के ले आओ, तो उसी के दूध पिला देंगे संतुष्ट हो जाएगा। तो बेचारे अश्वत्थामा चले गए, है ना? मानना ही पड़ता है, तुम लोग मानते हो कि नहीं पत्नी का कहा है? सारे उदाहरण है वो, पत्नी का कहा मानते हैं, सब मानते हैं। देखो सुदामा माने कि नहीं? किसने भेजा कृष्ण के पास सुदामा को? हैं? जाओ, सुदामा जाना नहीं चाहते थे, जाओ कहा और मानना ही पड़ा, होम मिनिस्टर का कहा कौन नहीं मानेगा बेचारा। अब यहां कृपी ने भी अश्वत्थामा को कहा जाओ जाओ, द्रोणाचार्य सॉरी द्रोणाचार्य को कहा जाओ जाओ, बेचारे वो चले गए। और बेचारा वो फिर राजा बनने के बाद वो उसका अहंकार तो साथ में आसन को छू चुका था है? जब वो पढ़ता था परशुराम जी के यहां तब एक अक्षर उसको नहीं आता था, थोड़ा बहुत जो है यही द्रोणाचार्य जी उसको सिखाते थे, अतिरिक्त पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पास मार्क लाता था, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होता था, वो डिक्टेंशन की तो बातें छोड़ दो, और द्रोणाचार्य जी डिक्टेंशन लाते थे, केवल पास की बात नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिक्टेंशन मेरिट हो जाते थे वो। और ये बड़े मुश्किल से वो भी द्रोणाचार्य जी के कृपा से पास मार्क लाता था और कहता था मित्र तुम मुझे सिखाना, मुझे पढ़ाना, मैं युवराज हूं तो बाद में मैं राजा बनूंगा, तो तुम्हारे ये सारे चीज का मैं हमारे साथ रहेंगे, मैं मदद करूंगा तुमको, मैं राजा बनूंगा तो मित्र तो है इस संस्कार के चलते चले गए द्रोणाचार्य जी है? लेकिन उसने जवाब दे दिया, कौन मित्र, किस बात का मित्र, जवाब दे दिया। ये गाय देने को तैयार नहीं हुआ द्रोणाचार्य जी को, तो बड़ा गुस्सा आ गया बेचारे द्रोणाचार्य जी। कामात क्रोधो अभिजायते, पढ़ा है कि नहीं किताब में, गाय की कामना से गए थे कौन, द्रोणाचार्य जी, किसके यहां, राजा द्रुपद के यहां है। लेकिन जब वो कामना में प्रतिबंधित हो गया, रुकावट आ गया, उसने दिया नहीं, तो क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। बस क्या था, तब दुश्मनी शुरू हो गई। तब गाय तो नहीं मिली, अब क्या करें, बड़े समझा समझा के उसको किसी तरह खिचड़ी खिचड़ी से अश्वत्थामा को बड़ा किया भाई, दूध तो है ही नहीं, संपत्ति तो है ही नहीं। इसी तरह उपमन्यु का भी ये बात है, भगवान शिव के शिष्य है ना, भक्त उपमन्यु की कथा आपने सुना, 5 साल के बालक हैं, उनको भी कहानी वही है, उसी तरह मामा के यहां गए तो उनको दूध पीने को मिला, घर में आए तो उन्होंने मां से कहा, तो बेटा गाय है ही नहीं हमारे पास, तुमको दूध कैसे पिलाए। बोले उनके यहां इतना गाय है, हमारे यहां एक गाय भी क्यों नहीं है। बोले बेटा अब क्या करें, भगवान ने उनको इतना गाय दिया, हमको नहीं दिया, भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे, उनको दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे। बेटा हमने कोई तपस्या नहीं की होगी, हमारा कोई पुण्य नहीं रहा होगा, इसलिए भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई होगी, कौन से भगवान ने दिया है। बोले बेटा शिव में यदि प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ दे सकते हैं। तब उपमन्यु ने तपस्या शुरू की, तो शुरू की थी एक गाय के दूध की कामना से, और होते होते ऐसा हो गया कि शिव जी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे शिव भक्त हुए अनन्य के इतिहास में, उसका उल्लेख हमने परसों किया ही था। तो ये क्या है, ये सारा प्रसंग किस वाक्य से चल पड़ा, जले पेस्टे क्षीरम, ये क्या है, भ्रांति, ये भी भ्रांति का लक्षण है। भवती मृग तृष्णा सुसलिलम, दूसरा मृग मरीचिका, मरुभूमि में दिखने वाला जो जल, तो मरुभूमि में जल की जो भ्रांति है उसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग की तृष्णा, वो क्या है, वो भी एक भ्रांति है। तथा देव भ्रांता भ्रांत्या, इसी प्रकार से जड़ धिया, बहुत से जड़ बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वह भ्रांति से, जो वास्तव में महादेव नहीं, जो वास्तव में परमात्मा नहीं, उन सब में भी थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध होता हुआ देखा कि उसी को परमात्मा समझकर उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की ही सेवा करने लग जाते हैं सभी लोग भ्रांति से, दरगाह पूजने लग जाते हैं, किसे बोलो, किसी से थोड़ा सा उनका प्रयोजन पूरा कर दिया है। एक सज्जन आके कह रहे थे हमको, एक महिला का शरीर में बहुत दर्द होता था, उसकी पत्नी का, औषधि किया, दवाई किया, यूं किया त्यों किया, किसी से कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा कि इसमें कोई मृतात्मा किसी का घुस गया है, इसके कारण से इसको तकलीफ हो रहा है, तुम ऐसा करो कि फलाना दरगाह है वहां, वहां उस दरगाह में जाओ तो बस वो सब खत्म हो जाएगा। देखो मेरा भी ऐसे ही था, मैं एक बार दरगाह में किसी ने कहा, मैं गया वहां जाकर फूल चढ़ाया, गुलाब के फूल, मैं अब ठीक हूं, तो रोज शिवजी के जल चढ़ा था तो उससे तो कमर ठीक नहीं हुआ, लेकिन दरगाह में जाकर एक गुलाब का फूल चढ़ाया तो कमर ठीक हो गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। तब से मैं नियमित दरगाह जाता हूं। अब क्या हुआ बोलो? एक छोटा सा लौकिक फल मिल गया, इतनी मात्र से वो दरगाह ही प्रधानता हो गई, उसी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानने लग गया। अब वो भ्रांत है कि नहीं बोलो? शिव जी को छोड़ दिया जल चढ़ाना, उनको क्या कहेंगे? कब्र पूजने वाला तो क्या है, जड़मती, जड़ दिया और क्या। अब ये बात अलग चीज है, दरगाह भी जो परमात्मा है सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, तो दरगाह में भी है कि नहीं बोलो? सर्वव्यापक होने के कारण दरगाह में है। अब कोई सुनेगा तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा, है मुसलमान? आप लोग तो मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा, मुसलमान कदाचित सुन लेगा, है तो वो लोग भी कम नहीं है, हमारी धज्जी उड़ा देते हैं वो लोग भी, है ये सब बूथ परस्त। हम लोगों को क्या बोलते हैं? बूथ परस्त, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं। अब वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तो मूर्ति पूजकों की वो धज्जी उड़ाते थे, लेकिन वो कब्र पूजा करते हैं, है ना? कब्र पूजते हैं कि नहीं बोलो? दरगाह में क्या करते हैं? कब्र पूजते हैं। अब मान लो वही तो मूर्ति है, उसमें हमने नाक कान आंख बना दी, हाथ पांव बना दिया, उन्होंने नहीं बनाया, मिट्टी तो दोनों में बराबर है कि नहीं? है मिट्टी तो वही है कि नहीं? पत्थर तो वही है, मिट्टी तो वही है, उसी में जरा आंख कान नाक बना दिया हमने, वो तुमने नहीं बनाया, बस इतना ही तो अंतर है। आखिर किसी न किसी मूर्त वस्तु में अमूर्त वस्तु की भावना करना, यही तो हम कर रहे हैं और यही तुम कर रहे हो, फिर हमारी क्यों धज्जी उड़ाते हो मूर्ति पूजकों की? श्रद्धा भाव से तुमको जिसमें प्रतीक मानकर करते हो, क्योंकि हमारे वेदांत परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है, सर्वव्यापक मानने के कारण भैंस के गोबर में भी है कि नहीं, गाय के गोबर में भी है कि नहीं, वो तो है ना, इसीलिए तो हमने उसमें गोवर्धन पूजा करना शुरू कर दी। हम गोबर की पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? गोबरावच्छिन्न चैतन्य की, वेदांत की भाषा बोल दिया वो हमने, ये वेदांत की भाषा है, हम गोबर की पूजा नहीं करते हैं। यदि गोबर की पूजा करके भी हमको फल मिल रहा है, हमारा मनोकामना, हमारा मनोरथ पूरा हो रहा है, तो मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं है, गोबरावच्छिन्न चैतन्य है। जो शिव सर्वव्यापक है, वही शिव सर्वव्यापक होने के कारण गोबरावच्छिन्न भी है, गोबर में भी है, तो हमको फल देने वाला कौन है बोलो? गोबर की, गोवर्धन की पूजा करके हमारे मनोरथ पूरा करने वाला कौन है? गोबर है कि गोबरावच्छिन्न शिव है? वेदांत की भाषा जो जानता है वो समझेगा इस बात को, क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापक होने के कारण जो जो वस्तु हैं उस वस्तु में तद वस्तु अवच्छिन्न होके रहेंगे। हाँ, जैसे आकाश सर्वव्यापक होने पर, आकाश सर्वव्यापक होने पर सीधा आकाश में हम पानी नहीं भर सकते हैं, किसमें भरते हैं? घड़े में नहीं भरते, घड़े में पानी नहीं भरते हम, किसमें भरते हैं? घटाकाश में। पानी किसमें भरते हैं? स्पेस में भरते हैं कि घड़े में भरते हैं? घड़ा कोई स्पेस नहीं है, घड़ा कोई स्पेस है? घट तो घट है, स्पेस अलग है, घट अलग है, घटाकाश अलग है, घड़ अलग है, पानी कहां भरते हैं? घटाकाश में। लेकिन सब लोग कहते हैं घड़े में भरते, घड़े में भरते, घड़े में तो घड़ा है, घड़े में कहीं अवकाश है पानी के लिए? हैं? घड़े में तो घड़ा ही है, पानी के लिए अवकाश तो है ही नहीं, पानी के लिए अवकाश तो घड़ाकाश में है, पहले पानी भरते कहा। अब देखो आकाश सर्वव्यापक होने के कारण घड़े के अंदर भी है कि नहीं, तो पानी हमने कहां भरा? घटाकाश में। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है कि नहीं है? सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है। अब वही शिव सर्वव्यापक है तो गोबर में भी है, तो गोबरावच्छिन्न चैतन्य की हम पूजा कर रहे हैं, गोबर की नहीं। और हमारे मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं, क्या है? गोबरावच्छिन्न चैतन्य, वही शिव है। ये बुद्धि होना अलग चीज है, और गोबर में गोबर बुद्धि होना अलग चीज है, गोबर में सर्वव्यापक परमात्मा बुद्धि होना अलग चीज है। तो लोग कहते हैं हमने गोबर लाके गोवर्धन की पूजा की तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया, तो दूसरे ने सुन लिया तो कई सड़क में से गोबर भैंस का उठा लिया, घर में रख लिया और उसको पूजा करने शुरू कर दिया। ये क्या है बोलो? उसकी वो सर्वव्यापक चैतन्यता की बुद्धि नहीं हो रही है, है? उसकी तो सर्वव्यापकता की बुद्धि हो गई, तब उस गोबर में भी उसी भगवान बुद्धि करके पूजा कर रहा है, और उसमें सर्वव्यापकता की बुद्धि तो है ही नहीं। उसने क्या देखा? इसने गोबर की पूजा करके इसका मनोरथ हो गया पूरा, तो हम भी गोबर की पूजा करते हैं, तो बोले गोबर लाया और गोबर का एक टीला बना लिया और पूजा करने शुरू कर दिया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इतनी पढ़ाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं कि ब्राह्मण भी अमुक ब्राह्मण है, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर है। उसको ऐसा विद्या पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते इतना साक्षर हो जाता है कि कहता है बस मैं तो अमुक का बेटा हूं। दूसरा आता है कहता है बिल्कुल झूठ बोला, कोरा झूठ, तू बेटा नहीं, तू हमारा भतीजा है। मैं जब आओ पूछू तो कहना कि मैं आपका भतीजा और आप हमारे चाचा। ये जितने लोग आते हैं ना, इसके बाद मामा आया, उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं, तू न जो है किसी का भतीजा है न तू बेटा है, तू मेरा शुद्ध भांजा लगता है, मैं तेरा मामा हूं। महाराज दुनिया वाले इतने पढ़ाई पढ़ा देते हैं ना कि हम जो है निशेष होकर के भी सविशेष हो जाते हैं और फिर जीवन भर नाचते रहते हैं, नचाते हैं। मामा ये भांजे की रस्सी से नचा रहा है तो चाचा भतीजे के, तो दुश्मन भी आता है कहता देख मैं तेरा दुश्मन हूं। इतने गले में ये रस्सियां बंध जाती है, हम जीवन भर नाचते रहते और दिन पर दिन बढ़ती जाती है रस्सियां, घटती नहीं है। एक केवल वेदांत ऐसा है जो आपको साफ साफ कहता है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विशेष चैतन्य हो। ये तो मतलब के लिए उपाधियों को लोगों ने जोड़ दिया है, मतलब जानते हैं ना, जिसे किसी से काम निकालना हो तो हम लोग जो है उसकी बड़ी तारीफ कर देते हैं। तो यहां पर निर्विशेष चैतन्य है उस पर हलाहल विषमल अविद्या का आरोप, ऐसे जीव निर्विशेष चैतन्य है इसके ऊपर नाम रूप उपाधियों का आरोप हो गया। आरोप होने के बाद कामना होती है और काम का दान भी भगवान शंकर ही करते हैं, जिस 15वें श्लोक में बतलाया गया है कि सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैव सुर नरे। यह जो कामना है वह कामना चाहे देवता हो या असुर हो या नर, कहीं पर भी इसकी अबाध गति है। जब तारकासुर पूरे ब्रह्मांड को पीड़ा पहुंचाने लगा और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त होके अमर के समान हो गया था। ब्रह्मा जी ने वरदान में एक बात कही थी कि तुझे केवल शंकर पुत्र ही मार सकते हैं, और उदंड हो गया। उसे पता था कि सती का दाह होने के बाद भगवान शंकर हिमालय पर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। न भगवान शंकर के जल्दी समाधि खुलेगी, न ब्याह होना है, न पुत्र होना है। निश्चिंत रूप से वह संसार में उत्पात मचा रहा था। सारे देवता पीड़ित होकर के भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, अपने स्वरूप चिंतन में तल्लीन हैं। देवताओं ने कामदेव को पुकारा, बहुत तारीफ किया। राजस्थान में चंग चढ़ाना बोलते हैं ना, किसी काम निकलना तो चंग चढ़ाते हैं। खूब तारीफ किया कि देखो भाई, इस समय तुम ही यह काम कर सकते हो, तुम्हें हम लोग बहुत इनाम देंगे। अब कामदेव भी देवताओं की बात में आ गया। पहले तो मना किया कि भगवान शंकर के समाधि को खोलना अर्थात सीधा अपनी मौत को पुकारना है। पर जब सबने कहा, भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि ये तो केवल तू ही कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, हम लोग तेरे सहायक बनेंगे, तू जो हमारा नेता है। किसी को नेता बना दो ना, जो नेता बनता उसको मालूम है, गिरीश भाई को मालूम है कि व्यवस्था में स्वर्ण रजत महोत्सव मनाने में कितनी तकलीफ पापड़ बेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में बोलते हैं पापड़ बेलना, पापड़ बेलने बहुत मुसीबत होती, लोग तो आराम से एक सेकेंड में अग्नि पर रख के पापड़ सेके खा लिए, सबसे आसानी से पापड़ खाना होता है, परंतु बेलने में कितनी परेशानी, वैसे महोत्सव को मनाने में कितनी परेशानी। पर किसी को नेता बना दो ना, बुधरा आनंद से वो मनाता है, उत्साह रहता है। हमारे यहाँ जब किसी महात्मा से काम लेना हो तो उसको मंत्री महामंत्री बनाते हैं। ये कुठारी शब्द पुराना हो गया ना, तो कुठारी से उसको बुरा लगता है, हीन भावना होती है। काम तो पूरा कुठारी का ही है, वही जो व्यवस्था है, नमक में दाल चेल देख रेख वही काम है, परंतु कुठारी शब्द को विकसित करके उसको मंत्री महामंत्री से पुकार तो खुश होता है, मैं मंत्री हो गया, महामंत्री हो गया, काम निकालना है। ऐसे ही जो यहाँ पर भी कामदेव से काम निकालना था, तो देवताओं ने कहा कि देखो तुम हमारे नेता हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सब जो है हिमालय पहुंचे, वहां भगवान शंकर समाधि लगाए हुए हैं। तुरंत काम बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करते ही भगवान शंकर की आंख खुली। जैसे हम लोग नींद से जब जगते हैं तो नींद में हमारे आंख में खुमारी होती है, खुमारी मतलब कि आधी नींद होती है, थोड़ा बंद होता है, थोड़ा नींद का असर होता है, तो समाधि का असर दाहिने आंख में है। और काम बाण के कारण से बाएं आंख में भगवान शंकर के श्रृंगार रस है, बाजू में पार्वती जी सेवा कर रहे उनको भी देख रहे, और तीसरे नेत्र से विचार किए, तीसरा मतलब ज्ञान नेत्र, कितने दिन से पार्वती हमारी सेवा कर रही परंतु कभी भी कामना नहीं हुआ, आज अचानक कैसे हुआ, क्योंकि इसके मन में कोई कामना नहीं हो सकता ना, मेरे मन में हो न हो किसी तीसरे व्यक्ति का काम होगा। भगवान जब दृष्टि दौड़ाए तो बस कामदेव धनुष बाण फेंक दिया, ताकि हमने नहीं किया है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, जैसे देवता लोग खड़े पंक्ति वैसे मैं भी दर्शन कर रहा हूं। पर भगवान शंकर समझ गए कि कामदेव का ही काम है, बस तत्काल उस ज्ञानाग्नि से कामदेव भस्म हो गया, तब से कामदेव अनंग हो गया। तो देखो भगवान शंकर के पास यदि काम पहुंचा तो उसका नाश हुआ। तो हमारे जीवन में भी जब अविद्या के बाद जब काम हो और कामना से जब परेशान हो तो एक ही सहारे हैं भगवान शंकर। इसी बात को उपनिषद के मंत्रों में बदलाया है कि आत्म कामः, सबसे पहले आत्म काम होना चाहिए, फिर अकामा आप्त कामा शोका अनंतरम। जीवन में कामनाओं से शोक हो रहा हो, विषाद संतप्त हो रहे हो, तो सबसे पहले आत्मा की शिव की कामना करें। जैसे कामदेव भगवान शंकर के पास गया तो पहुंचते ही काम का नाश, और नाश होने के बाद भी 15वें 16वें श्लोक में ज्ञान गंगा का अवतरण वर्णन है। तो हमारे जीवन में भी ये जो कामदेव की बाणे है ना, विशिखा, विशिखा शब्द का अर्थ होता है विविध प्रकारेण शिखा विशिखा। एक दीपक की शिखा होती है, मोमबत्ती की शिखा होती है, और एक कामदेव की ऐसी विशिखा है कि संसार में सर्वत्र विजयी होती है। कहीं पर भी जाए देवलोक, जब ब्रह्मा के पास कामदेव गया जमाने के लिए, बेचारे ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए, इंद्र ही मुग्ध हो गए, अहिल्या के सतीत्व का भंग किया। वैसे ही भगवान शंकर को समझा कि जैसे ब्रह्मा है इंद्र है, ऐसे जो है इनको भी हम वश में कर लेंगे। उपनिषद में जहाँ प्राणोपासना है वहां पर कहा है प्राण एव ब्रह्म, तो वहां पर जब उद्गीत कर्म प्रारंभ होता है तो जैसे उद्गीत कर्म प्रारंभ हो वैसे ही असुर लोग आक्रमण करते थे। पहले उद्गान वाणी ने किया तो वाणी को असुरों ने विद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। इसके बाद आंख ने किया, कान ने किया, सब ने किया, अंत में प्राण ने उद्गीत कर्म प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार से पत्थर के पास मिट्टी के ढेले जाते हैं चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्राण के पास जब असुर गए तो वहां जाते ही समाप्त हो गए। ऐसे ही कामदेव ने सोचा कि अन्य देव असुर मनुष्य के समान ये हमारे बाण भगवान शंकर को भी वश में कर लेंगे, और हो गया विपरीत। कल हमने आपको सुंदर का चरित्र सुनाया था, शेष था ना, तो सुंदर के जीवन में एक घटना घटती है कि एक बार तो भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त, जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन भी थे, उद्धव जी भी थे, कई थे, ऐसे ही सुंदर को भगवान शंकर ने शिव मित्र नाम दिया। तो हमारे मित्र हो, जब चाहे तब तो हमारे सामने आ सकते हो, क्यों मित्र के लिए कोई नियम नहीं होता है, वह नहा धोकर आए, बिना नहाए आए, कैसे भी आ जाए। भक्त के लिए नियम होता है, शिष्य के लिए नियम होता है कि नहा धोकर आए गुरु के पास, परंतु भगवान ने सुंदर को सीमित नाम दिया कि तुम हमारे मित्र हो और कभी भी आ सकते हो। तो सुंदर जब जवान हुआ तो एक दिन पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गया, उधर से एक परवा नामक गड़िका की कन्या भी पुष्प लेने आई थी। संयोग से जैसे ही सुंदर ने उस परवा नामक वेश्या कन्या को देखा, मुग्ध हो गया। उसका सौंदर्य इतना सुंदर था कि अपने आप को रोक न सका, उधर परवा भी इसको देखकर मुग्ध हो गई। इसके बाद वहां से दोनों अपने अपने घर गए। इधर सुंदर के मन में उसका सौंदर्य इतना हलचल उत्पन्न कर दिया कि वह भगवान शंकर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया, पूजा भी छूट गया। तीन चार रोज से उसी का चिंतन करते रहा, ये काम ऐसी है ना कि बड़े बड़े को मुग्ध कर देती है। मुग्ध का मतलब कि मुह धातु वैचित्य अर्थ में है, जब काम जीवन में आता है तो हमारा चित्त वैचित्य, वैचित्य मतलब विविध प्रकार के उसी के रूप का श्रृंगार के आकार प्रकार के चिंतन में डूब जाता है। भगवान शंकर ने देखा चार रोज हो गए अभी तक सुंदर नहीं पधारा, क्या कारण है। स्वयं ही भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके घर जाते हैं, भगवान शंकर के आते चरणों में गिर जाता है। उसने कहा यदि मुझे परवाह नहीं मिलेगी तो मैं भूखे प्यासे शरीर को छोड़ दूंगा। अब क्या करे, जैसे अर्जुन ने कहा ना कि अभिमन्यु का दर्शन कराओ, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है। पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद भी, जैसे कभी कभी आकाश में बादल सूर्य को ढक देते हैं, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, फिर भी महाभारत के बाद अर्जुन एक बार प्रार्थना किया, आप कृपा करके एक बार मेरे लाडले अभिमन्यु का दर्शन करा दो, उससे कुछ बात कर लो। जब वहां गए तो अभिमन्यु ने कैसा सत्कार किया, एक तमाचा जड़ दिया, बोला कि कितने बार तू हुआ, मैं हुआ, बाप बेटा, इस संसार का कोई अंत ही नहीं, और गीता ज्ञान सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं तेरा बेटा, तू मेरा बाप, या ज्ञान अभी तक गया नहीं। वह तुरंत लौटे। ऐसे ही यहाँ सुंदर जीवन में घटना घटी। सुंदर ही भगवान के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और मैं जीवन में केवल एक ही चीज आपसे मांगता हूँ, अभी तक हमने कुछ भी नहीं मांगी थी, वह यह है कि हमारा परवा से ब्याह करा दो। अब जिद ठान लिया, जैसे कोई बच्चे जिद करते हैं ना। भगवान शंकर बहुत समझाए कि देख इसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं। बोला कि कुछ भी हो, एक बार बस, केवल एक बार मेरा ब्याह करा दो, इसके बाद मैं आपकी पूर्व सेवा करता रहूंगा। बोले ठीक है, जब तेरा यही आग्रह तो तेरा ब्याह करा देते हैं, पर बाद में रोना नहीं। बोला महादेव मैं सब संभाल लूंगा, एक बार ब्याह मेरी हो जाए, जैसे नारद जी ने कहा था ना भगवान विष्णु से। उधर भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्धरात्रि में परवा के घर पधारते हैं। वहां जाकर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो। परवा खोलने गए तो उसकी मां ने रोक दिया कि रुक जा, मैं देखती हूं कौन है। उसकी मां ने कहा कि जिसकी तू याद करती है शायद वही पधारा होगा, पर मैं देख लूं कौन है। परवा आई तो पूछी तुम कौन हो, तो भगवान शंकर जो ब्राह्मण वेश बनाकर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं हूं तेरा गुरु पुजारी मंदिर का। और इतनी रात्रि मर्ध रात्रि में कैसे पधारे, चार पांच घंटे के बाद स्वयं मैं आपके मंदिर में आती, बोले कुछ विशेष काम था। परवा की मां ने कहा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अर्धरात्रि में किसी घर पधारना इस तरह। बोले इसकी तो चिंता छोड़, मैं विशेष काम से आया हूं। बोले काम बताइए। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुंदर के साथ तेरी कन्या परवा का ब्याह होना चाहिए, और बड़ा अच्छा ये संयोग है, सुंदर भी चाहता है, तेरी कन्या परवा भी उसको चाहती है। परवा को जब बुलाया तो परवा ने कहा कि ब्याह इसी शर्त पर होगी जब साक्षात भगवान कह दें कि ब्याह होवे, जो आपके कुल देवता मंदिर के जो भगवान शंकर हैं, वे आकर स्वयं जब कहें तब विवाह होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत कर, बस थोड़ी देर में वे भी आएंगे। इधर जो है भगवान शंकर बाहर के दरवाजा बंद हुआ, पांच मिनट के बाद शंकर थे ही आ गए। बोले कि देख हमारा आशीर्वाद है, तुम दोनों अपना नया जीवन प्रारंभ करो। पूरे गांव में सपना दे दिया कि सुंदर परवा का ब्याह होना चाहिए। प्रातः काल होते ही अपना विधिवत दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आप जानते हैं ना कितना सुख होता है, एक साल के अंदर पूरा सुख समाप्त, आकाश उड़ जाता है। कई लोगों सब ने पूछा, ऐसी बात नहीं। तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कुछ दिन के बाद सुंदर को अपने गलती वाला पश्चाताप हुआ। अब विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी आएगी। पहले तो आपको अकेले की जिम्मेदारी थी, वह केवल इतनी थी कि आपको बस कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर्याप्त है। परंतु विवाह होने के बाद पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, महावीर हैं, बलवान हैं, हम लोग तो भगोड़े से संसार से। हमारे कैलाश के दशम पीठाचार्य कहते थे कि सन्यासी लोग, हम लोग भगोड़े हैं, हम लोग जिम्मेदारी संभाल न पाए तो छोड़कर सीधे आ गए, तो आप लोग महावीर हैं। इधर जो है सुंदर ही पछताने लगा, जाकर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा, तो हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने ब्याह कर लिया, अब जो है समय से आपकी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। अब पत्नी कहते कि ये करो वो करो, ये भी झमेला खड़ा हो गया। जब विवाह हो जाएगी तो पत्नी की बात सुनना ही पड़ेगा। आप माता पिता के बात इनकार कर सकते हैं, काम चल जाता है, माता पिता सहन कर लेंगे, पर श्रीमती सहन नहीं करेंगी, वो तो बार बार कहती रहेंगी। अब बेचारा रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता की बात नहीं, कुछ समय के बाद तेरा उद्धार होगा। इधर एक दिन अजीब घटना घटी। सुंदर को भगवान ने कह दिया कि तू चिंता छोड़, जब भी तुझे समय मिले नहा कर बिना नहा कर तो मंदिर में आकर के अपने नए स्तोत्रों से मेरा स्तवन किया कर। एक दिन सुंदर जल्दबाजी में, समय बहुत अधिक हो गया था, बिना नहाए ही मंदिर में प्रवेश करके आंख बंद कर स्तुति गान प्रारंभ कर दिया। वस्त्र व्यस्त व्यस्त थे, मुख में अभी पान के समझो की लालिमा थी, आंख में कीचड़ थी। मंदिर का रक्षक जिसका नाम था वीर मित्र, वह दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। बोले कि कैसा धूर्त है, बिना नहाए धोए मुख में पान चुबा रहा है और कपड़े अस्त व्यस्त, आंख में कीचड़ है, और आंख बंद करके स्तुति शुरू कर दिया। अपने हाथ में परसु लेकर दौड़ा, बोला कि जल्दी निकल नहीं तो तुझे काट डालूंगा। भी जब रक्षक दौड़ा तो डर के मारे सुंदर जो है कपाट अंदर से बंद कर लिया। जब कपाट बंद कर लिया, भगवान को पकड़ लिया कि क्षमा करे हमसे भूल हो गई, या आपका द्वारपाल मुझे मार डालेगा, दरवाजा खोलूंगा तो आप मुझे सद्बुद्धि दें। भगवान शंकर ने अंदर से कहा कि वीर मित्र तू चिंता मत कर, ये हमारा अनन्य सखा है और भक्त भी है, और हमारे आदेश से इस प्रकार से मंदिर में पधारा है, इसलिए मंदिर तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ है। इतना सुनते ही द्वारपाल और आग बबूला हो गया। बोला कि आप जगत गुरु कहलाते हैं, आप संसार के शासक हैं, नियमन करता है, और आप ही जब ऐसे धूर्तों को मंदिर में बैठाएंगे, जो कि माता जी अंदर बैठी है और आप अकेले हो, तीसरा कोई है नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तुम दोनों जल्दी से बाहर निकल लाओ, अभी सुबह का समय है। भगवान शंकर को भी डांट दिया, आप भी निकलो। देखो भक्तों की ऐसी जो है ना प्रतिभा होती, प्रभाव होता है। ज्ञानी नहीं डांट सकता है, पर भगत भगवान को जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। गोपियां तो भगवान को पाव भर छांछ में नचाती थी, जिससे सारा दुनिया नाचता है उसको नचा रही गोपियां। यहां पर भी भक्त ने कहा कि आप भी बाहर निकल आओ, क्योंकि मंदिर आपने शुद्ध कर दिया, हमें सफाई करनी पड़ेगी। अब जो है उत्तर दिशा से दरवाजा खुल गया, भगवान शंकर की पिंडी मंदिर के बाहर स्थापित हो गई, और सुंदर वय से तेजी से भगा, भागते भागते वहां से अपने गांव पहुंच गया। इधर जब देखा वीर मित्र कि दरवाजा पूरब का बंद है, उत्तर दरवाजा खुल गया और शिवलिंग भी बाहर स्थापित हो गया, उसके मन में उस भगवान के प्रति बड़ी नफरत हो गई कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं, और अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए इन्होंने दूसरा दरवाजा खोल करके और बाहर भगे। उसने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं इस जो यहाँ के देवता कमलानाथ हैं, कभी पूजा न करूंगा न दर्शन करूंगा, बड़ी कभी यहाँ पर प्रवेश भी नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से कहीं बाहर चला गया और कुछ दूर जा करके छोटा सा मंदिर बना करके वही पूजा शुरू कर दिया। इधर भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा के लिए एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं कि सही में इसने जो प्रतिज्ञा किया है वह अटल है कि नहीं। भगवान परीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। उसका नियम था कोई भी यदि द्वार पर आए तो उसका चरण धो करके और उसको भोजन कराना, पर एक शर्त था, वह पूछता था कि आप कहां से पधारे हैं। यदि बोल दे कि मैं कमलानाथ के यहां से आया हूं तो सीधा पैर भी काटता था, ये भी नियम था। ये बाएं हाथ में परसु रखता था, दाएं हाथ से पैर धोता था, और अपने पत्नी को लगा रखा था जल गिराने के लिए। तो पत्नी बहुत चतुर थी। पत्नी पहले ही सबको पूछ लिया व्यागतों से कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हैं तो झूठ बोल देना, कहीं और का बता देना, अन्यथा हमारे पति देवता आपके पैर काट डालेंगे या चले जाना। अभी जब ब्राह्मण पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हो तो झूठ बोल देना या चले जाना, नहीं तो हमारे पति देव पैर काट डालते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा कि देख देवी, मैं तो कमलानाथ पुरुष आया हूँ, मैं परम सही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे जोर से भूख भी लगी है, मुझे भोजन भी करना है, और तेरे पति देवता बड़े अच्छे शिव के भक्त हैं, मैं बिना भोजन किए नहीं जाऊंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा। अब पत्नी घबराई, पत्नी ने चालाकी किया, परसा को छिपा दिया दूर। जैसे ही आए, पैर धोने लगे, पूछे कि आप कहां से पधारे हैं? बोले कमलानाथ पुर से आया हूं। बस सुनते ही वीर मित्र आग बबूला हो गया, बोला कि परसा लाओ, इसका पैर काटते हैं अभी। अब परसा डोले मिले ही नहीं कहीं, तो डंडा उठाया, बोले किसी से पूजा करे भगवान शंकर। ब्राह्मण वेश में भगे पीछे पीछे, और ये डंडा लेकर के धनुष बाण पीछे पीछे दौड़ रहा। भगवान शंकर भागते भागते कमलानाथ क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो दूर से ही धनुष बाण से अनुसंधान शुरू कर दिया, मारने लगा। भगवान शंकर भी बाण चलाने लग गए, भयंकर संग्राम। कि भगवान शंकर ने देखा कि अपने प्रतिज्ञा पर अटल है, एक तरफ भगवान शंकर का नाम भी लेता, दूसरे तरफ कहता है कमलानाथ पुरुष कोई भी आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अंत में भगवान को हार करके वही दर्शन देना पड़ा। देखो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं, इसलिए इनका यह सार्थक नाम है भुवन भय भंग व्यसनिना। यदि आपको संसार से भय लगता हो, मौत से भय हो, कामना से पीड़ा हो, तो अपने कामना को यदि आप भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे तो वह कामना नष्ट हो जाएगी, आत्म काम हो जाएंगे, परिपूर्ण काम हो जाएंगे, और जीवन में सुख शांति की उपलब्धि होगी। शेष कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
4: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
4: ओम नमः शिवाय।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. ओम नमः शिवाय।
2: तो दूसरा शब्द दिया चित्ताकाश। ये चित्ताकाश क्या है? तो संकेत किया, चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यथा। चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यथा। क्या है? चित शब्द है, और चित शब्द में एक तकार और बैठा दो तो क्या बन गया? चित्त बन गया। ये आचार्य शंकर का अनुभव उनका है, और उन्होंने इस अनुभव को दिया। वो लिख रहे हैं कि चित शब्द जो है, तो चित चैतन्य का वाचक है, चिदानंद का वाचक है, सदानंद का वाचक है, और चित्त अंतःकरण का वाचक है, मनादि जहां। तो जहां से उस तकार को हटा दो तो क्या रह गया? चित्त रह गया। अब जब ये समझ लिया जाता है कि चित्त क्या है और चित्त क्या है, लेकिन ये चित्त कहां होगा? चित्त के बगैर चित्त क्या शब्द बन जाएगा? चित्त शब्द न बनाओ और केवल चित्त शब्द बनाओ तो केवल तकार से क्या चित्त शब्द बन जाएगा? नहीं बने। अधिष्ठान उसका क्या है? चित्त, चैतन्य। उसी चैतन्य में एक तकार की और कल्पना कर ली तो क्या बन गया? चित्त। ऐसे ही और तकार कोई भी हटा दो तो क्या रह जाएगा? चित्त ही तो रहेगा, कि और कुछ रह जाएगा? और यही सारा का सारा यहां बतलाया कि जीव है क्या। आप सुनते रहते हो, वेदांत के ग्रंथ भी सुनते हो, स्वाध्याय भी करते हो, जीव क्या? अंतःकरण की उपाधि से जो उपहित है उसी का नाम क्या है? जीव। और अंतःकरण की उपाधि से उपहित और अंतःकरण की उपाधि को हटा दो तो क्या रहेगा? उपाधि के हटने पर क्या शेष रहता? अधिष्ठान मात्र शेष। और उपाधि क्या है? उपाधि क्या है? आप जैसे सामान्य लोक में देते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, बाबा जी, ये सब क्या है? ये सब उपाधि। लेकिन उपाधि किसमें आई? उपाधि ये स्वतंत्र नहीं, केवल उपाधि की सत्ता ढूंढो कि डॉक्टर, तो डॉक्टर किसी जीव को लेकर के ही, किसी प्राणी को लेकर के ही तो आएगा। वो गुण कहां रहेंगे? वो धर्म कहां रहेंगे? स्वतंत्र रूप से उसकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं। इसलिए उपाधि का लक्षण शास्त्रकारों ने किया। उपाधि क्या है? अविद्यमानत्वे सति, असंश्लिष्टत्वे सति, व्यावर्तकत्वम उपाधेर लक्षणम। उपाधि क्या है? कहने लगे जिसकी सत्ता है ही नहीं। बड़ी विलक्षण बात है, जिसकी निजी सत्ता है ही नहीं, और सत्ता भी नहीं है, और कहने लगे असंश्लिष्ट, उसका संबंध भी नहीं, और संबंध भी नहीं, सत्ता भी नहीं, लेकिन फिर भी कर क्या रही? व्यावर्तकत्व, भेद बतला रही है, दूसरे से भिन्न करके बतला रही है, तो उसी का नाम क्या है? उपाधि।

लेकिन ये उपाधि की अपनी निजी सत्ता ढूंढने जाओ तो कहीं मिलने वाली नहीं। उदाहरण के लिए जैसे और मोटे ढंग से समझो, छाया जो है उस छाया की सत्ता ढूंढो तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। और छाया जो है वो आप में मिली है का मिली भी नहीं है और आपसे भिन्न भी नहीं है, ये भी समझ लेना। छाया भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, सत्ता वाली भी नहीं है, लेकिन सारे क्रियाकलाप वह दिखला रही। ऐसे ही उपाधि विशेषण तो कम से कम क्या होता, विशेषण का लक्षण वहां किया कि विशेषण तो जो है संश्लिष्टत्व सती व्यावर्तकत्व विशेषत्व। ये कपड़ा लाल है तो ये जब कहोगे तो क्या है, यहां विशेष विशेषण भाव होगा और विशेष विशेषण भाव में यह कपड़ा जो है सफेद रंग का था, उसकी सत्ता सफेद थी, लेकिन लाल रंग है और वो लाल रंग इसमें संश्लिष्ट हो गया, उसका इससे संबंध हो गया, इसका उसका चिपकाव हो गया, लगाव हो गया। लेकिन उपाधि का तो लगाव भी नहीं होता, ये विलक्षण था। ऐसी उपाधि और ऐसी उपाधि को लेकर के ही वो व्यावर्तन भेद खड़ा कर दे। ठीक यही जो तकार है वो क्या है, चित्त जो बना, तो चित्त शब्द में तकार आया उपाधि रूप से, अंतःकरण ही उसको बना उपाधि रूप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी सत्ता नहीं है लेकिन वो सत्ता हमने मान ली, और जो नहीं है उसे मान लेना ही हमारी मृत्यु का कारण है, हमारे दुख का कारण है, हमारे जन्म का कारण है, हमारे रोगों का कारण है। यदि वह मान्यता जो उपाधिकृत मान्यता है उसकी हम निवृत्ति कर लें, और वो निवृत्ति का उपाय क्या है, तो प्रबोधैक समीरणा प्रबोध भाव। वो कब, तो चित्त और चित्तम विजानीयात, चित्त क्या है और चित्त क्या है, तो दो चीजें नहीं, चित्त ये अलग चीज नहीं है और चित्त अलग चीज नहीं, ध्यान रखना। क्या चित्त और चित्त ये दो सत्ताएं, अरे चित्त में ही तो आया है तभी तो चित्त बना है, केवल उस तकार को हटाना मात्र है तो क्या रह जाएगा, चैतन्य। सत्ता किसकी है, सत्ता चैतन्य की है, चित्त की है, तकी कोई सत्ता स्वतंत्र उसकी सत्ता कोई नहीं। ऐसे ही यहां पर जो जीव आदि और जिसको लेकर के भेद खड़ा हुआ, जिसको लेकर के नाना प्रकार के उपद्रव हुए, कहने लगे ये ही समझना और ये समझ लिया जाए, तो कहने लगे ये फिर जीव क्या है, तो क्या सिद्ध होगा, जब तकार हटा दिया तो चित ही रह गया, वायु आदि हट गई तो क्या आकाश ही रह गया, है ना। ऐसे ही यहां पर इसलिए यजुर्वेद के अंतर्गत क्या चर्चा आई, अमृतस्य पुत्र, हम आपको अपने को मरण धर्मा मानते हैं लेकिन हम हैं क्या, तो क्या कहा, अमृतस्य पुत्र, अरे तू तो अमृत पुत्र है, और आप सुनते भी हो आत्मा वही है पुत्र नाम आश, वो पुत्र भी कौन है, तो कहा आत्मा ही है, या वहां दूसरा शब्द दे देते हैं पिता वही है पुत्र नाम आश, पिता का ही अंश तो पुत्र रूप है, उससे भिन्न उसकी सत्ता नहीं है। ऐसे ही यहां संकेत किया अमृतस्य पुत्र। तो अब जब ये सारी बातें हम शास्त्र की सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे सामने क्या चीज है, तो कहने लगे हमारे सामने संकल्प भी है और विकल्प भी। प्रत्येक प्राणी के अंदर दो चीजें, और ऐसी स्थिति में वो खड़ा है जहां पर उसके अंदर प्राणी जीव भाव है तो वहां संकल्प विकल्प भी रहेगा, और जब तक संकल्प

आपने दबाव दिया था, उन पैरों को वहीं रोक दो तो क्या होगा, वो पैडल भी वहीं रुक जाएंगे। और पैडल भी रुक जाएंगे तो साइकिल में जो गति है वो रुकेगी कि चलती रहेगी, कहा वो भी रुक जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हमने ये संकल्प हुआ मैं जीव हूं, मनाया मन को लेके संकल्प होता है तो विकल्प भी खड़ा हो जाता। अब मैं जीव हूं तो कैसा हूं, जन्म लेने वाला हूं, मरने वाला हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, ये सब आ गया। लेकिन चाहता क्या अंदर से, अंदर से तो चाहता कि मैं जन्म न लूं, मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं, मैं रोगों को प्राप्त न हूं, मैं दुखी न हूं, है ना, मैं अमर हो जाऊं। तो ये दो स्थितियां प्रत्येक जीव की सामने, एक तो मृत्यु और दूसरी अमरता, ये दो स्थिति प्रत्येक जीव के सामने है। तो जीव चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, मृत्यु से रहित हो जाऊं और अमृत हो जाऊं, है, अमरता को प्राप्त कर लूं। ये प्रत्येक प्राणी की स्थिति। अब इसके लिए कहा ये होगा कब, तो बतला दिया आचार्य ने कि चिदाकाश में ये खेल है, प्रमोद रूपी वायु के द्वारा ही ये सारा का सारा झंझावात समाप्त, और समाप्त हो जाएगा तो वो तो जैसा था वैसा ही है और वो अमृत रूप ही है। इसलिए वेद कहता अमृतस्य पुत्र, तुम हो तो अमृत पुत्र, लेकिन तुमने अपने को क्या मान लिया है, खेल में मान लिया है मरण धर्म। आप लोग कभी वृंदावन जाते हो, और आजकल तो वृंदावन वासी यहां भी आ जाते, तो रासलीला करते, और आप लोग देखते हो रासलीला, लीला नाम है, और लीला किसकी करते हैं, तो रास का मतलब ये मैंने रस से होने वाला जो है उसे रास शब्द भी कह देते, रस से बने, तो मैंने जो रस है उस रस की ही लीला करते, या ये कह दें रहस्य की लीला करते, रस ही तो रहस्य है, रसो वही सह। अब जो है जब वो लीला करते हैं तो उस लीला को तो हम देखते हैं, और लीला में इतने लीलान्वित हो जाते हैं कि लीला का जो सार है, लीला का जो मूल रस है, उसे हम पकड़ नहीं पाते। आप जानते हो जब वहां पर रासलीला होती है तो जो कृष्ण बनता है, और हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना, जो कृष्ण बनता है वो बोलता है वहां, और क्या बोलता है, यमुना के किनारे खड़ा हुआ और गोपिकाएं हैं, और वहां पर क्या बोल रहा है, जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। ये अक्सर बोलते, जितने भी कृष्ण बनते उनको रटा हुआ है, रिपीट है, और वो उनका अभ्यास है, उसको जो बोलेंगे जहां भी ये रासलीला होगी वो बोलेंगे जग नैया हमार। कृष्ण जो बनता है वो बोलता है जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। क्या बोलता है, कहा ये जो सारा जगत है वो क्या है, कहा एक नाव, नौका है, नाव है, कहा ये नौका किसकी है, कहा मेरी। कृष्ण बनता वो क्या कहता, जग नैया हमार, ये नौका मेरी है। और कहा ठीक, अच्छी बात, नौका तुम्हारी है, तुम कहां हो, कहा मैं उसी नौका में हूं, देखना ध्यान से, जग नैया हमार, नैया में हम कहां है, कहा जगत में है। और उसी कृष्ण की बात नहीं, आप लोग भी कृष्ण हो, आपकी सबकी बात वही, जग नैया हमार, नैया में हम, और आगे शब्द जोड़ दिया, आप कह दोगे ये घर मेरा, तुम कहां हो, कहा इस घर में, यहां तक तो समझ में आ जाता, लेकिन आगे जो संकेत कर दिया वो विलक्षण कर दिया, क्या कहा, जग नैया हमार, नैया में हम और हम में, कहा वो नैया कहां है, तो कहने लगे वो मेरे में है। हाँ विचार करो, एक लीला है, वह आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, और परम जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देते भी हैं।

0: लेकिन वो जान के दे रहे हैं कि अनजान के दे रहे हैं, वो बात अलग है। वो भी खेल में खेला है, खेलान्वित तो हो रहे हैं, उनकी दृष्टि कहां है बात अलग है, लेकिन है ये यथार्थ। ये समस्त वेदों का, समस्त श्रुतियों का और समस्त सार का भी सार है। जग नैया हमार, नैया में हम और हम में सारा। ये जगत की नौका भी तो क्या हो गया, कहा इसका मतलब यही है अभेदत्व, यह है प्रबोध। क्योंकि हमारे अंत, इसलिए तुलसीदास ने सरल भाषा में लिख लिया, मूदो नयन कतहु को। जब तक हमारी दृष्टि है तभी तक सब कुछ है, और दृष्टि न हो तो सारे शास्त्र सुसुप्ति अवस्था को लेकर के यही तो बतला रहे, यही अनुभव की तरफ इंगित कर रहे। तो ये सब कहां है, तो जो संकेत कर दिया उसी चिदाकाश में। क्या आया, माया भी आई, मन भी आया, अहम भी आया, सारी वृत्तियां भी, तो सारा जगत भी उसी में है, और उसी जगत में भी वो विद्यमान है, उसका अभाव नहीं। और कहने लगे वो जगत कहां है, तो कहा उसी में है, उससे भिन्न जगत की सत्ता नहीं। ऐसा जब बोध होता है, उसी बोध के लिए संकेत करते, तब जो है अमृत की प्राप्ति होती। अब ये जो है बोध हो हमें, तो हम शास्त्र सुनते हैं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता, इसलिए ही यहां कहा रुचि नाम। ध्यान देना, ये सारी चर्चा क्यों कर रहे, बार बार जो है यहां पर कहा विस्पष्टार्थ रुचि नाम। जो उस विस्पष्ट रूप से उस रहस्य को समझना चाहते हैं और उसमें उनकी रुचि है, ऐसी रुचि वाले। हम लोग गीता को पढ़ते हैं, बोलते हैं श्रद्धावान लवते ज्ञानम। कौन इस ज्ञान को प्राप्त करता, इस ज्ञान को प्राप्त कौन करता है, का श्रद्धावान। और भी साथ में तत्पराचार्य जोड़ दिया, लेकिन उसकी चर्चा न करके। अब ये श्रद्धा क्या है, हम श्रद्धा को समझते क्या, श्रद्धा का रूप क्या। मोटे उदाहरण से बतलाऊं, श्रद्धा को ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे घर में क्या हो गए, चूहे हो गए, और चूहे हो गए तो चूहों का स्वभाव क्या, जो भी वस्तु उनके सामने आएगी उसे कुतर डालेंगे, उसमें विकार पैदा कर देंगे। तब तुम क्या करते हो कि हमारी वस्तु सुरक्षित रहे तो चूहों से निवृत्ति हो जाए, तो चूहे से निवृत्ति कब हो, तो तुम आप अपने को हैं अहिंसावादी मानते हो, धर्म के अनुयायी हो, हिंसा करना नहीं चाहते हो, और हिंसा नहीं करोगे तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी, तब क्या करते हो, चूहेदानी बनवा लाते हो, और चूहेदानी बनवा करके लाके उसमें कुछ डाल देते हो, और फिर क्या होता है, चूहा आकर के उसमें, अब उसको निकाल के बाहर कराते, ये बात भिन्न है, उसको हम नहीं लेने, इतने अंश में लेना कि चूहेदानी में चूहा आकर के फंस गया, अब चूहा निकलना चाहे तो निकल पाता, और जब निकल नहीं पाएगा तो तुमको हानि भी नहीं कर पा, और निकलता है तो कब निकलता है, कहा जब आप छोड़ोगे, आपके पूरे बंधन में आ जाता है। लेकिन ये होता कब है, ये चूहादानी क्या है, श्रद्धा। ये हमारे जीवन में जब आ जाती है, श्रद्धा का ऐसा स्वभाव है, क्योंकि तब कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान, और जिसके अंदर ये श्रद्धा आ जाती है फिर वो उस परमात्मा को पकड़ने नहीं भाग रहा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर उसे कोई विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं रह जाती। जैसे चूहा आकर के उसमें फंस जाता है, वैसे ही ज्ञान भी उसमें आ जाता है, या वो परमात्मा वो अमरता भी उसमें आ जाती। इसलिए कुछ लोग भक्त जो होते हैं ना, वो कह देते हैं असर होगी उल्फत में तो वो आ ही जाएंगे, मुझे परवाह नहीं अगर वो तन के बैठे, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी प्रार्थना के अंदर यदि असर होगी, सामर्थ्य होगी तो वो अपने आप आ जाए। और वो प्रार्थना, वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तो पहले तो श्रद्धा नहीं थी, हे नवद्धो बली राजा, हम बोलते तो हैं कर्मकांड दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुवधनामी रक्षे मा चल मा चल। हम रक्षा सूत्र बांध देते हैं, यज्ञ आदि करते हो, मांगलिक कार्य करते, लेकिन उस रक्षा सूत्र का तात्पर्य क्या है और कब से यह शुरू हुआ? तो वहां क्या है, वहां पर भगवान आए लेकिन वो जानता तो था नहीं, उसे तो उसका ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में श्रद्धा आ गई। शुक्राचार्य को ज्ञान तो था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना भी किया, लेकिन बलि में श्रद्धा आ गई, और जब श्रद्धा आ गई तो उसने अपना कुछ बचाया भी नहीं। समर्पण भी वही होता है, वास्तव में समर्पण शिष्यत्व भी वही आता, और जहां ऐसा समर्पण आता है, ऐसा शिष्यत्व आता है, वहां सत्य की प्राप्ति भी हो जाती। इसलिए केवल गीता की बात नहीं, गीता तो सारी उपनिषदों का सार। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया मापनो दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मवापनोति श्रद्धया सत्य मस्तोते। वहां संकेत किया, श्रद्धा के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो जाती, इसलिए रुचि नाम करके संकेत कर दिया वो श्रद्धा। तो कब? तो वहां श्रद्धा का रूप बतलाया, श्रद्धा क्या है, तो वेद के अंतर्गत ये मंत्र आता, व्रतेन दीक्षा मापनोति। व्रत के द्वारा किसकी प्राप्ति होती? का दीक्षा की प्राप्ति होती, और दीक्षा के द्वारा किसकी प्राप्ति होती? का दक्षिणा की प्राप्ति होती, और दक्षिणा के द्वारा किसकी प्राप्ति होती? व्रतेन दीक्षा मापनोति और दीक्षया दक्षिणा, और दक्षिणा श्रद्धा मवापन होती, उस दक्षिणा के द्वारा श्रद्धा की प्राप्ति होती, और श्रद्धा के द्वारा क्या मिलता? कहा मिलता नहीं, श्रद्धया सत्य मस्नुते, और सत्य का जो यथार्थ है उसका ही आनंद लेता, उसका स्वाद लेता। लेकिन शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अर्थ अनेक होते, वहां जिसे तत्परा शब्द से कहा, यहां व्रतेन शब्द से कहा। यहां व्रत का मतलब जो हम व्रत समझते वो व्रत नहीं, वहां क्या है, वहां जिसे तत्पराह शब्द कहा, यहां पर व्रत शब्द का। तो तत्पराह संयतेन्द्रिया तत्पराह श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, जब अन्वय करोगे तो क्या है, संयतेन्द्रिया तत्पराह श्रद्धावान ज्ञानम लभते। वेद ने कह दिया व्रतेन दीक्षा, और दीक्षा के द्वारा दक्षिणा, दक्षिणा के द्वारा श्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा एक ही सार को वहां पर निकाल दिया। तो वहां व्रतु परिपालन अर्थ में धातु है, इसका मतलब है व्रत। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अहंकार आदि को हटा करके वर्णाश्रमोचित धर्म से, और जो है जो प्राप्त समय के अनुकूल कर्म हुआ है उस कर्म का परिपालन करता है, तो वही है व्रत, और उस व्रत के द्वारा उसके जीवन में दीक्षा आती। दीक्षा का मतलब क्या, एक तो ये अर्थ है, गुरु मुखात स्वयिष्ट मंत्र ग्रहणम इति दीक्षा, इसको भी दीक्षा कहते, लेकिन ये दीक्षा विपरीत यहां नहीं है। यहां दीक्षा शब्द का अर्थ जो है तत्परता, जिसको आप शिक्षा और दीक्षा बोलते ना, तो वो अनुभव, अर्थात जब आप अपने कर्तव्य को सही ढंग से करोगे, कर्तव्य परायण होगे, कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करोगे, तो उसमें आप दीक्षित हो जाएंगे, उसमें आप अनुभवी हो जाएंगे, और उसमें आपकी संलग्नता हो जाएगी। ये दीक्षा शब्द का, और जब इस प्रकार की दीक्षा आती है, जब इस प्रकार की संलग्नता होती है, इस प्रकार की तत्परता होती है, तब दक्षिणा की प्राप्ति होती है। अब दक्षिणा ये नहीं, हमने कथा कराई, यज्ञ कराई, तो पंडित जी को दक्षिणा दे, वो दक्षिणा नहीं। यहां दक्षिणा शब्द का अर्थ है, पाणिनी व्याकरण में एक प्रयोग आता है, दक्षिणा गाथका कुशला इत्यर्थ, ये गायक बड़ा दक्षिण है, तो क्या है, विवेक, प्रबोध, निपुणता। तो दक्षिणा शब्द का अर्थ वहां है विवेक, प्रबोध। समय हो गया, आप कल चर्चा कर देंगे इस पर।
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इसमें है जो है ना संवाद है जग्गावल्का का और मैत्रेय्या गार्गी का तो योग के विषय में है। अभी आपको करना तो है नहीं किसी को आने बार इसका प्रयोजन भी नहीं है। जितना प्रयोजन है उतना श्लोक में है। जितना प्रयोजन है ना आपने उतना श्लोक में ही है। हाँ देखिए प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तं ब्रह्मणि स्थितं भवति इति प्राणायामो निर्दिश्यते। देखो प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य मन के जो मल है ये मल का धो डाला आपने। किससे धो डाला? प्राणायाम प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य तब जब मल मल से रहित हो गया मन तो क्या हुआ? चित्तम ब्रह्मण स्थितम। तो मन को चित्त कहो मन का बात है कि है चित्त हो गया तो ब्रह्म हो गया है ना। चित्तम ब्रह्मण स्थितम चित्त को आपने कहाँ लगा दिया? कहाँ स्थिर कर दिया? वो जो कल के प्रसंग में बतलाया ख्याल है कि नहीं? तत्र योनिम कृणवसे सातवां मंत्र देखो सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वियम तत्र जने क्रीडवसे नहिते पूर्वम अक्षिपतः पूर्तम अक्षिपतः आया ना। पूर्वियम पूर्वम ब्रह्म जुषेतः पहले ब्रह्म का सेवन करना चाहिए फिर उसी ब्रह्म में मन को स्थित कर देना चाहिए ब्रह्म में निष्ठा कर देना चाहिए। आप उसी बात को यहां बतला रहे हैं। प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तम ब्रह्मण स्थितम भवती थी। हाँ पेज नंबर 148 पेज नंबर वहां श्लोक रहे या भाष्य बतला रहे हैं। प्राणायाम का क्रम और उनकी जो है ना महत्व बतला रहे हैं। चित्त शुद्ध आपका कैसे होगा? को प्राणायाम के द्वारा। जो प्राणायाम का मतलब क्या? वो जोगीराज रामदेव बोलता है कि नहीं प्राणायाम करो? प्राणायाम का मतलब क्या बतलाते हैं? नाड़ी नहीं क्या बतलाते हैं प्राणायाम? अरे इतना दिन सुनते हैं जोगीराज से रोज देखते हो है ना। ऊपर खींचने का नाम क्या है? पूरक। फेंकने का नाम रेशक। रोकने का नाम कुंभक। ये तीन बातें बताते हो पूरक रेशक कुंभक। और पूरा का ऐसा करो, करते हैं कि नहीं? हाँ, और तीसरा कपाल भाती भस्त्री का, ये चार बात पर जोर देता है। लालू प्रसाद कहता है उनका प्रणाम क्या, पेट को धक्का दे करके भीतर ले जाओ, धक्का दे करके बस यही उनका जोग है, धक्का देकर भीतर लाओ और बाहर लाओ, यही उनका जोग। एक ही बार वो बैठा था, सीख गया जोग। भस्त्रिका प्राणायाम, उड्डयन प्राणायाम, हाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम भी। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात बतला रहा है, नाड़ी शोधन कैसे होगा? तो प्राणायाम आने बात, तो प्राणायाम माता प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम है ना, प्राणायाम के द्वारा क्षपित मनमल क्षय कर दिया, मन का मल जिसने, मन का मल जिसने क्षय कर दिया। यद्यपि योग दर्शन में ऐसा है तो मन का मल प्राणायाम से नाश नहीं होता, याद रखना। मनोमल क्या है? राग द्वेष, हाँ राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश, पंच क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। क्लेश का नाश होता है कैसे? अविद्या के नाश होने से। अविद्या का नाश जब तक नहीं होगा पंच क्लेश का नाश नहीं होगा। प्राणायाम केवल प्राणवायु को स्थिर करने के, मन को स्थिर करने के लिए आनी बात। तो पर यहां भी लिखते हैं प्राणायाम क्षपित मनमलस्य चित्तम ब्रह्मण स्थितम। चित्त को आपने कहां लगाया? ब्रह्म निष्ठ कर दिया, हाँ समाधि, हाँ ध्यान में लगाया। चित्तम ब्रह्मण स्थितम भवति इति प्राणायाम निर्दिश्यते है, इसीलिए यहां प्राणायाम का निर्देश करते हैं। प्राणायाम प्रथमम नाड़ी शोधनम, आप प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपका नाड़ी शोधन चाहिए। नाड़ी, नाड़ी शोधन, शोधन समझ में ना, औषधि का शोधन, धातु शोधन, सुवर्ण का शोधन, शोधन करते कि नहीं? सुवर्ण को जो शोधन करते हैं, औषधि का शोधन करते हैं, माने दोष निकाल देते हैं। शोधन का मतलब दोष निकाल देना। तो नाड़ी शोधन माने नाड़ियों में जो है जो दोष है वो दोष को दूर कर देने का नाम नाड़ी शोधन। शोधन किया, औषधि शोधन करें ना, वैद्य लोग शोधन करते हैं। ऐसे प्राणायाम के द्वारा प्राण का शोधन किया जाए, नाड़ी शोधन किया जाए। हाँ वो कहते ना आन पान, आन पान और आन बान प्राण, ऊपर नीचे ऊपर ले जाना, बाहर निकलना और रोकना, ये तीन बात है। तो ध्यान देने से इसलिए किस लिए ध्यान दिया जाता है? ये यदि तुमने वायु के ऊपर नीचे भीतर बाहर रुकने से होता क्या, तुम्हारे दृष्टि वहां लग जाएगी। उन लोग कहते हैं कितने बार तुमने प्राणवायु को भीतर ले गया, पूरक किया, ध्यान रखो, और कितने बार रेशक किया उसको ध्यान रखो। ब्रह्म में ध्यान नहीं, आत्मा में ध्यान नहीं, ईश्वर में ध्यान नहीं, ध्यान कहाँ रखो? वायु में, वायु में, श्वास में, श्वास को भीतर ले जाना, पूरक वायु फेंकना, रेशक भीतर रोकना, अभ्यंतर कुंभक बाहर रुकना, बाह्य कुंभक। तो ऐसा करते रहोगे तुम्हारी वृत्ति तदाकार हो जाएगी, तो तुम्हारे जो मन में जो आने वाला जो राग द्वेष आदि वो सब आएगा नहीं, यही शोधन है। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम, भाष्यकार कहते सबसे पहले प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करो। नाड़ी समझ ना, नाड़ी नस, नासों को नाड़ी शोधन कहेंगे ना। तथा प्राणायाम है अधिकार। आप तुमको प्राणायाम का नाड़ी शोधन किया नहीं, प्राणायाम में बैठ जाते हो तो प्राणायाम होगा कैसे? क्रम है ना, हर एक वस्तु का क्रम होते। अभी तुम भाजी बनाते हो, हाँ भाजी बनाने शीरा बनाने में वो भी एक क्रम होता है कि नहीं? कौन से वस्तु कब डालना चाहिए, कौन से वस्तु कब डालना चाहिए? हाँ, वो आगे बताएगा सब। नाड़ी शोधन करने के लिए तरीका बताएगा सब। जब बतलाया नाड़ी शोधन करो, नाड़ी शोधन किए बिना प्राणायाम में अधिकार नहीं है, तो आपको बतलाना पड़ेगा नाड़ी शोधन क्या चीज है, बतलाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तथा प्राणायाम में अधिकार है। तथा माने इसके बाद प्राणायाम में अधिकार है। किसके बाद? नाड़ी शोधन के बाद। ये अभी देखो बता रहा है, दक्षिणा नासिका पुटम अंगुल्य अवस्तंभ्य बामे न वायु पुरेत यथाशक्ति। अभी देखो, अभी प्राणायाम करते, कोई कैसे बोलता, कोई कैसे बोलता, कोई भी प्राणायाम सिखा देते। अभी ये शास्त्र का देख लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूरक कैसे करना चाहिए, कुंभक कैसे करना चाहिए, रेशक किन्नक कैसे करना चाहिए, भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जी स्वयं बतला रहे हैं। दक्षिणा नाड़िका नासिका पुटम अंगुल्य अवस्तभ्य। ये दक्षिण कौन सा है? ये दायना आनी बात, इसको दावा देना अंगुष्ठा, अंगुष्ठा के द्वारा क्या राइट राइट लेफ्ट राइट करना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट हाँ ठीक है, जो जैसी भाषा से समझे, क्योंकि हमारे यहाँ समझने की या समझाने की भाषा बहुत सा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी लिखते हैं, पशु को समझाना दंड की भाषा है, अरे बात, मूर्खों को समझाना गाली की भाषा है, मूर्खों को गाली से समझाओ तो जल्दी समझ जाता है, और सज्जनों को हाथ जोड़ करके समझाओ, हाथ जोड़ते समझ जाएगा। तो सबकी भाषा अलग अलग है। साहित्यिकों को साहित्य की भाषा से समझाओ, दार्शनिकों को दर्शन की भाषा से समझाओ, यानी नाटककारों को नाट्य भाषा से समझाओ। हर एक की समझने की समझाने की शैली अलग अलग होते हैं। और अंग्रेजी में राइट या लेफ्ट करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आगे बढ़ो पीछे खिसको, एवर टर्न करो। दक्षिणा नासिका पुटम, दक्षिण माने दाएं नासिका को क्या करना चाहिए, अंगुल्या अवस्तभ्य, अवस्तभ्य माने दबा करके, अंगुष्ठम आपका हाथ के जो अंगुलियां है, इसका नाम क्या है किसका मालूम है? अरे अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मध्यमाभ्याम नमः, ओम अनामिकाभ्याम, ओम ओम कनिष्ठ भाई कनिष्ठ, ओम करतला करपृष्ठाभ्याम नमः। जो संध्या वंदना करेगा उसको याद होगा, उसको मालूम होगा, नहीं तो अंगुष्ठ हमने अंगुली है, कौन सा अंगुली का क्या नाम है ये भी हमको पता नहीं, पता है क्यों? अभ्यास नहीं है। ये अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये करतल, ये करतल, ये करपृष्ठ, हाँ वो तो नमस्कार लक्ष्मी के करोगे ना, मालूम है कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेश ब्रह्मा प्रभा दे कर दर्शन लक्ष्मी पहले ऐसे ही पहले उठते ही लक्ष्मी को नमस्कार करो, कराग्रे बसते लक्ष्मी बस। और सबसे पहले लक्ष्मी का नमस्कार है। यही बात है ना। नहीं, अर्थ का महत्व तो हर युग में होता है, ऐसा कोई युग नहीं है नहीं होता। तो दुर्योधन अगर लक्ष्मी का प्रयोग नहीं करते हैं तो इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दुर्योधन महाभारत की लड़ाई तो लक्ष्मी के लिए ही हुआ। तथा प्राणायामादि का दक्षिणा नासिका पुटम, नासिका पुट समझे ना, नासिका के छिद्र को अंगुल्य अवस्तभ्य अंगुली के द्वारा दबा करके बामे न वायुम पुरेत बाएं लेफ्ट दाएं से दबा दिया, दाएं को तो दबा दिया तो ये खाली है ना, ये खाली है वो लेफ्ट है, उसके द्वारा वायु को भीतर ले जाओ, उसका नाम पूरक, पूर्णा करने के लिए पूरक हुआ। वायु पूरे कितना लेने का यथाशक्ति, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतना लो, है नहीं बात, यथाशक्ति। ततो अनंतरम उत्सिज्य एवं, इसके बाद उत्सृज्य निकाल करके एवं दक्षिण न पूरे न समुत्सिजेत, इसका दक्षिण इसको दावा करके दक्षिणासिका के द्वारा उसको निकालना, किसका यथाशक्ति अच्छा समुत्सिजेत सभ्यम अभी धारे। इसके बाद सभ्य कहते किसको, बाएं को देखो धारयेत धारण करो, माने बाहर तो आपने निकाल दिया तो कब तक निकाल करके रखेंगे, यथाशक्ति ही अपने सामर्थ्य के अनुसार कुंभक करना हो भीतर धारण करो, अनिवार्य उसको कहते अभ्यंतर कुंभक। उसमें तो लिखता है इतना इतना अक्षर तक, मतलब है तुम प्राणायाम करते हो एक प्राणायाम, गायत्री जप करते हो एक गायत्री दो गायत्री तीन गायत्री, दो गायत्री से पूर्ण करो चार गायत्री तक रोको आठ गायत्री तक निकालो, और अथवा तुम एक से लेकर दस तक पूर्ण किया, दस से लेकर बीस तक धारण किया और बीस से लेकर चालीस तक निकालो पूरे सक करो। दो चार आठ बोलते हैं तो मतलब है दो चार आठ डबल डबल करना, दो का चार हुआ चार का आठ, अभ्यास से होगा ना, एक दिन में थोड़े होगा, कह दिया था देखा देखी करे जो सीजे काया बाड़े रोग, देखा देखी जो करोगे रोगी बन जाओगे, ऐसा नहीं करने का। उसने ऐसा किया रामदेव के पेट धक्का देकर भीतर ले लिया बाहर लिया, तुम भी ऐसा धक्का देना शुरू करोगे तुम्हारे हाथोड़ी फट जाएगा, समझे कि नहीं, ऐसा नहीं करने का। योग कभी ऐसा नहीं करना, योग किसी योगी के पास रह करके सीखना पड़ता है, अच्छी बात, बिना सीखे कभी योग का अभ्यास नहीं गया। पूरक ऐसा कुमार एक करो साधारण है, इसके करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाह्य कुंभक इसका नाम, तो उनको देख करके आप आठ सेकंड करो। पुनर्दक्षिणेन पुरयित्वा सभ्येन समुत्सिजेत, फिर क्या करना चाहिए, छूट गया क्या, पुनः दक्षिणेना पुरैत्वा पे दक्षिणनाशिका के द्वारा दाय के द्वारा पूरण करके सभ्येन बाह्येन समुत्सृजेत बाह्य नाक से नासिका से रेशक करें।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
5: shaivam.org இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்க இருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். இதில் பாடியிருப்பவர் திரு வெண்காடு ஜெயராமன் அவர்கள். ஓம் நமச்சிவாயம்.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

देवां एह वक्षति वक्षति हा देवां देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षति हेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिम् रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवदश्नवद् रयिम् अग्निना अग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद् रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद् रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे

उपायनो भव सूपायन इति सु उपायनः भवेति भव सचस्वानो नस्सचस्व सचस्वान स्वस्तये स्वस्तये नस्सचस्व सचस्वान स्वस्तये।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

सदुग्रहा ओजिष्ठेभिर्नृपतिर्वज्राबाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वाणिःस्पृतन्योन् आ न इन्द्रो हरिभिर्या त्वच्छार्वाचीनो वासे राधासे च तिष्ठातिवज्रीमघवाविरप्सीमञ्यज्ञमनूनो वाजासातौ।

आसुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीला तीव्रं पारिश्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम् अश्विनाभेषजं मधुभेषजन्नः सरस्वती इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञेरूपज्ञेरूपमधुःसुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिशशमानः पारिश्रुता कीलालामश्विभ्यां मधुदुहे धेनुः सरस्वती

श्रीरामवक्षत्सद्योमहि दूत्याहं शरण्य ईदन्तयेकं परभूतयेकं तृतीयेण ज्योतिषा संविशस्व।

त्वङ्क्षयितावद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यासे त्वं विचर्षणे श्रावो वसो पुष्टिर्न पोष्यसि प्रातरग्निः पुरप्रि

0: प्रातिरक्षांसिसेधति।
1: ओम ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: यदा विद्वान, यदा पश्य विद्वान, पश्यतीति पश्य। जो देखता है मानी क्या, समझता है। ये गम धातु जो है ना, हमेशा किसी गति के रूप में उसका उपयोग होता है।

0: I understand. I got it. है ना? I got it. ऐसे होता है. आपकी बुद्धि में प्रवेश किया कि नहीं इस बात ने? हाँ, मुझे अंदर घुस गया. ऐसे कहते ना, अंदर आ गया. इसलिए पश्यति, जानता है, समझता है. किसको? यदा पश्य पश्यते, देखता है. किसको? पुरुषम. यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम. रुक्म वर्णम होता है सुवर्ण का. सुवर्ण में तीन गुण है. एक तो उसको कभी झंक नहीं लगता है, डज नॉट गेट रस्टेड, मैलिएबल. और तीसरा है, उसका जो चमाचम चमक है वो कभी जाती नहीं है. पित्तल की जाएगी, सबकी जाएगी, चांदी की जाएगी, पर ऑलवेज शाइनिंग. कर्ण सुवर्ण. अव्यय. इसी प्रकार से आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा कभी विकृत होता नहीं है. जंक नहीं लगता है, विकृत नहीं होता है. और उसका जो चैतन्य स्वभाव है उसमें कभी आगे पीछे नहीं होता है. वो समान चैतन्य रूप ही देता है. जागृत हो चैतन्य रूप, स्वप्न हो चैतन्य रूप, सुषुप्ति हो चैतन्य रूप. कभी जड़ नहीं होता है, चित अचित नहीं होता है. स्वप्रकाश सर्वावभासक है, अन्य प्रकाश निरपेक्ष है. ये तीन लक्षण सिर्फ चैतन्य आत्मा में ही होता है. तो यहां कहा, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम. जो स्वयं ज्योति है. अब आप देखिए, हम लोग को जो ये रंग दिया गया है ना, पहनते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑरेंज. इस रंग का नाम है. अमेरिका गया, पहली बार देखा, एक पूरी ट्रक भर के कई लोग एक कपड़े पहन के जा रहे थे. हमको लगा सब साधु लोग होंगे इतने, कि नहीं, रोड पे काम करने वाले जितने मजदूर हैं इनको ये रंग का कपड़ा पहनाया जाता है. क्यों? ये जितने रंग है इसमें सबसे पहला अपनी आंख को कौन सा रंग मालूम पड़ता है? ये गेरुआ रंग ऐसा है. फर्स्ट यू साइट दैट. इसलिए कहीं अकस्मात ना हो जाए, लोग पहले से देख ले, इसलिए उनको पहनाया जाता है कैची कलर, इंटरनेशनल ऑरेंज. इसी प्रकार से कोई भी अनुभव हो, सबसे पहला कौन होता है? चैतन्य. मैंने देखा, मैं चैतन्य ने देखा, सुना चैतन्य ने सुना. सभी अनुभव में अनुगत अनुसूत है स्वप्रकाश. एक लक्षण सुन लेना, व्याप्ति है इसे. यत्र यत्र व्यवहार तत् तत् व्यवहार तद् व्यतिरिक्त, तद् व्यतिरिक्त ज्योतिर अधीन. यत्र व्यवहार तद् व्यवहार तद व्यतिरिक्त ज्योति ही अधीन. इसको कहते व्याप्ति. कुछ प्रत्यक्ष में देख के हम उसका नियम बना लेते हैं. जहां जहां धुआं होता है वहां वहां क्या होता है? अग्नि. ये क्या होगा? व्याप्ति. यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः. इसी प्रकार के जहां भी व्यवहार होगा वो व्यवहार चैतन्य के अधीन ही होगा. चैतन्य के बिना व्यवहार की सिद्धि होती नहीं है। फिर पूछा व्यवहार क्या होता है, शब्द उच्चारण तत्पूर्णम व्यवहार है, आदान प्रदान व्यवहार है ना? शब्द को उच्चारण करो और मन में वो शब्द का अर्थ दिखे, इसी का नाम भी व्यवहार है। घड़ा तो मन में घड़ा दिखता है, गैया मन में गैया दिखती है, या कुछ लेन देन, आंख से देखा हाथ से पकड़ा लेन देन। तो जागृत में व्यवहार है, लेन देन है, स्वप्न में भी लेन देन है, तो वो व्यवहार किसके अधीन है, चैतन्य ज्योति के अधीन है। सुषुप्ति में भी व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जगने पे मैं कहता हूं मैं कुछ जानता नहीं था, खूब सुखी था, इसलिए वहां भी कुछ है व्यवहार, वो भी किसके अधीन है, चैतन्य ज्योति के अधीन है। और दूसरा, वो चैतन्य ज्योति उस व्यवहार से बिल्कुल निराली है, स्वतंत्र है। तो यहां का यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, और देखो बहुत बढ़िया बात है, कर्तारम। कर्तारम का अर्थ क्या होता है, अपनी कर्मेंद्रियों में विषय रूप फल की प्राप्ति के लिए संकल्प पूर्वक जो कर्म अहंकार करता है उसको क्या कहते हैं, कर्तृत्व, डूअरशिप। हमको फल चाहिए, आम चाहिए, तो आम के लिए क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और आम ले आएंगे खरीद के, इसको क्या कहते हैं, कर्तृत्व पूर्वक मुझे आम चाहिए इसके लिए मैं आम खरीद के ले आया, ये हो गया तृच्छ प्रत्यय कर्तृत्व। और मैं अपने को क्या मानता हूं, मैंने ही पौधा लगाया था, मैंने ही आम तोड़ा, मैंने ही आम बेचा, ये मेरे आम है, ये सब क्या है, कर्तृत्व, कर्तृत्व, कर्तारम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढात्मा अहं कर्ता इति मन्यते, ठीक है, गीता में अहं कर्ता, कर्तारम। अब देखो यहां उपनिषद में क्या बढ़िया बात बता दी, कर्तारम ईशम, ये कर्ता ही परब्रह्म है, ईश्वर है, इसको कहते हैं वेदांत की भाषा में बाध सामानाधिकरण्य, बाधायाम सामानाधिकरण्यम। जब मैं कहता हूं अरे भाई ये भूत नहीं है, ये तो लकड़ी का खंभा है, भूत लकड़ी का खंभा है, इसका अर्थ क्या हो गया, भूत का बाध हो गया और कौन बचा, लकड़ी का खंभा। तो इसमें एक का निवृत्ति हो जाती, दूसरे की सिद्धि हो जाती है। कर्तारम ईशम, ये कर्ता जो आपको अनुभव में आ रहा है वो कर्ता ही परब्रह्म है, तो किसका बाध हो गया, कर्तृत्व का बाध हो गया, क्योंकि कर्तृत्व परब्रह्म है, कर्ता रमीशम। और क्या उसका स्वरूप है, पुरुषम। संस्कृत में पुरुष शब्द का अर्थ एक है और भाषा में दूसरा होता है, स्त्री पुरुष ये लिंग भेद है, पर यहां पारिभाषिक रूप में पुरुष शब्द का होता है पुरी पुरो उषति वसति इति पुरुषः। ये नगरी है जगन्नाथपुरी, इस प्रकार से इस नगरी में जो निवास करता है, जिसके कारण ये नगरी काम कर रही है, उसको कहते हैं पुरुषः। दूसरा अर्थ किया गया है पूर्णत्वात् पुरुषः, पुरुषोत्तम है, गीता में भी आया है। पूर्ण जो है उसी का नाम है पुरुषः। यदा पश्य यदा विद्वान पश्यते, किसको? रुक्म वर्णम स्वयं ज्योति कर्तारमीशम। कर्तार को छोड़ के क्या है, कर्तार का रूप छोड़ के क्या है, वो कर्ता का सच्चा रूप क्या है, ईश है, ईशनशील है और पूर्ण है। ब्रह्म योनि बहुत स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मणश्च योनि ही, जिससे ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ भी प्रकट हुआ वो ब्रह्म, या जो ब्रह्म भी है ब्रह्मश्च योनिश्च। योनि मणि कारण, जो परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भी है और जगत की उत्पत्ति का हेतु भी वही ब्रह्म है। ब्रह्मश्च योनिश्च ब्रह्म योनिम। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। अब पराविद्या तो आ गई, अब पराविद्या का फल बताते हैं। वेद मुक्ति का वर्णन स्वयं करता है, उपनिषद। सभी जीव बद्ध है, जहां जीवत्व है वहां बंधन है। बंध का नाम होता है जिससे हम छूटना चाहते हैं उसी को बंधन कहते हैं। ये बात समझ लो, फ्रॉम व्हाट यू वांट टू गेट रीड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। जिससे हमेशा हम प्रयत्न करते कैसे छूटे, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। अगर आप जेल में हैं तो क्या चाहते हैं? अच्छा, श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? बोलो भाई, इतना तो मालूम होना चाहिए। काराकार जेल में हुआ था। एक महात्मा जा रहे थे ट्रेन में बिना टिकट, किसी ने पूछा महाराज कहां जाना है, टिकट नहीं है कि नहीं है, कहां जाना है? राम जन्मभूमि। तो टिकट चेकर ने बताया आपको कृष्ण जन्मभूमि ले जाएंगे। बोली क्या, जेल में ले जाएंगे आपको? जेल में सर, जेल से हम छूटना चाहते हैं, बंधन रोग से छूटना चाहते हैं, बंधन कन्या राशि वाले शनि दशा से छूटना आजकल चाहते हैं। क्यों? उनको शनि दशा बता रही है। तो जिससे हम छूटना चाहते हैं वो क्या है? बंधन। कभी कभी हम अमुक आदमी से भी छूटना चाहते हैं, भैया ये जाए तो बहुत अच्छा। कहीं मेहमान घर में आते तो यही प्रार्थना करते, भगवान ये लोग कब जाए, है ना। अपने बॉस से भी छूटना चाहते हैं, इनका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, आसाम उसको भेज दो आसाम में। क्यों? इसको कहते हैं जिस जो दुखदाई है उससे छूटना चाहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता है प्रेमपुरी में आके हम स्वामी जी अपने पैसे से छूटना चाहता है, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक। पैसा तो हमको चाहिए, उससे छूटना नहीं है। तो दैट विच इज अ प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ। बट बंधन वेदांत में क्या है? अपने आपा के विषय में आपकी जो मान्यता है उससे ही आप छूटना चाहते हैं। आपने अपने आप विषय में कुछ धारणा बना ली है कि मैं मरने वाला हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, दुख से छूटना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, ये दुखी पना से छूटना चाहता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, छोटे जी हूं, छोटे जी नहीं रहना है, पर छोटे जी हूं क्या करूं, दुख एक बंधन, स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। तो ये बंधन की निवृत्ति जो आत्ममूलक है, आत्मा में अधिकृत है, आत्मा में है, मैं बद्ध हूं, मैं दुखी हूं, तो इसकी निवृत्ति होती है इस ज्ञान से, अपने स्वरूप को पहचानने से। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, देखो भाई, न किसी ने पाप को देखा है, न किसी ने पुण्य को देखा है। क्या रंग है पाप का, क्या स्वाद है पाप का, पाप की आवाज कैसी आती है, कुछ नहीं देखा नहीं है, बिल्कुल शास्त्रोक्त है। इस कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होगी, ये बात शास्त्र के सिवाय कोई नहीं जान सकता है। गो हत्या से पाप की उत्पत्ति होगी और गोदान से पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भोजन खिलाएंगे, विद्या प्रदान करेंगे, पुण्य की उत्पत्ति होगी। किसी को भूखा रखेंगे, घर में आए को खिलाएंगे नहीं, तो क्या होगी, पाप की उत्पत्ति होगी। तो शास्त्र के द्वारा किस कर्म से पाप पुण्य नाम का अदृष्ट उत्पन्न होता है, उसके लिए वही प्रमाण है। पाप पुण्य को अदृष्ट का है, क्यों, न दृश्यते, दिखता नहीं है, इसलिए क्यों नहीं दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अदृष्ट। क्यों अदृष्ट है, क्योंकि दिखता नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, पूछना है अभी और आगे, अदृष्ट है। अभी पर उसका जो पर्यवसान फल है वो दिखता है। जीवन में ऐसी परिस्थिति, अनकंडीशन सिचुएशन, प्रतिकूल संयोग, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति से मालूम पड़ता है ये किसका फल है। हाँ, कई लोग का पैसा किसी ने ले लिया, वापिस देने का नाम नहीं है, और हमारा पैसा होने पर भी घर में क्या है, पैसा नहीं है खर्च करने को, ये स्थिति कौन सी हो गई, प्रतिकूल। किसका फल है, मानना पड़ेगा पाप का फल है। जिस ट्रेन में मैं बैठा उसी को अकस्मात हो गया, ये क्या है, प्रतिकूल। हाँ, अनुकूल, ठीक है, सब बहुत सब लोग जानते, सुख दुख तो को बहुत मालूम है, पर इस किसका फल है, पाप पुण्य का। कभी कभी दोनों का मिक्सचर भी आता है, इसको मिश्र फल कहते हैं। बहुत बढ़िया चावल खाने को मिला, आहा बासमती चावल, खाते खाते बीच में कंकड़ आ गया, ये क्या है, और 3 फुट का बड़ा लंबा बाल भी निकला उसमें से, ये सब क्या है, पाप मिश्र। जीवन में दोनों होता है, कभी कभी पुण्य, कभी कभी पाप, दोनों चलता है। तो कार्य से अनुमान करते हैं कि ये पाप का फल होगा, ये पुण्य का फल होगा। और एक दूसरी बात देखिए, हमारे अकाउंट में पाप पुण्य कितने हैं, है? चित्रकूप भी पागल हो जाएगा, इतना है, अनंत है। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे भगवान, मेरी मुक्ति करिए संसार से, कि मैंने एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है। कि क्या पुण्य कर्म किया है गोस्वामी जी आपने, कि मेरे पाप पुण्य का हिसाब इतना लंबा था कि चित्रगुप्त देखते देखते इतने उलझ गए उसमें कि उस समय भव रोग से कई जीव छूट के भाग गए, तो मेरे कारण इन लोग की मुक्ति हो गई, उसका फल के रूप में आप मुझे मुक्त करो, देखो। इतना बड़ा अकाउंट है, इन्फिनिट। ओके, पाप पुण्य के जीव अनादिकाल से, पाप पुण्य भी कितने हैं उसको देखना, ये ज्योतिष लोग क्या जानते हैं, एक जीवन का थोड़ा फलादेश कर देते, बड़ी बड़ी बात करते, कुछ नहीं है, इन्फिनिट। और इसको भोगना है तो कितना जन्म लेना पड़ेगा, अनंत जन्म तक। देखो आप लोग, मैं मानता हूं सब जो यहां थे भले लाल पीले कपड़े न पहनते हो, यहां के रोज आके बैठते हो, आप लोग साधु है, साधु माने जिज्ञासु है, सब कुछ छोड़ के सीधे साधे लोग हैं। कोई भी कपड़ा हो मैं उसको देखता हूं, मैं साधु मानता हूं आपको। तभी ये पाप पुण्य के चक्र में ज्यादा न पड़े, ये पुण्य करिए, सब छोड़ो। सबसे बड़ा है ये पाप पुण्य, सब प्रकार के पाप पुण्य हर हमेशा के लिए कैसे छूटे, इसका उपाय है ये ब्रह्म विद्या। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा अस्त्र कौन सा माना जाता है, ब्रह्म विद्या, पराविद्या, इसकी सेवा करो और किसी की नहीं। अभी ये पाप पुण्य को जमेरा को छोड़ो, जो कि त्यों दर्दी चदरिया। तदा विद्वान पुण्य पापे विदूय, विदुन होती, सब पाप पुण्य से वो मुक्त हो जाता है, अनंत कोटि के पाप पुण्य से। अभी एक बात और है, कोई प्रायश्चित कर्म करके पाप से छूट सकता है, पर प्रायश्चित कर्म करके पुण्य से छूट सकता है, वो तो धरे रहेंगे। इसलिए इसका बहुत चिंतन करना है। तो गीता के 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य के भाष्य में शंकराचार्य ने बहुत भारी चर्चा की है, वो देख लेना, समय अभाव से मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तदा विद्वान पुण्य पापे विदुह्य, सब पाप पुण्य उसका जल गया, जल गया थे ही नहीं। एक दिन मुझे महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज ने, महाराज ने बताया, बेटा महात्मा का आगे जन्म नहीं होता ये तो ठीक है, पर उसका पूर्व जन्म भी नहीं था ये महात्मा जानता है। आत्मा की दृष्टि से न उसका पूर्व है न अपर है, दोनों से मुक्त है वो तो। तदा विद्वान पुण्य पापे विदुह्य निरंजन है, जिसमें माया विद्या का लेश नहीं है, ऐसे आत्मा को साम्यम उपैति प्राप्त करता है, न भी उसको माया छू सकती है, न विद्या छू सकती है, न कर्म छू सकते हैं, न जन्म छू सकते हैं, न गति आगति छू सकते हैं। इस प्रकार की पूर्ण मुक्ति किसको प्राप्त होती है, विद्वान को। और अविद्वान का क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और उपनिषद बहुत बढ़िया बताती है, मृत्यु से मृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। जन्म से जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु की। मृत्यु दुखदाई है, बारंबार जाता है एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, क्या है इससे छूट जाता है कौन, विद्वान। अविद्वान वही चक्कर काटता रहता है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि आप भी विद्वान बनो। एक बात याद रखना, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई मुझ वासुदेव के स्वरूप को आत्मा के रूप में पहचानता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। जब भी कोई ये वाक्य सुनता है तो मन में क्या होता है, मैं तो अभी तक हुआ नहीं हूं, कब मैं वासुदेव को पहचानूंगा, कब मेरा ऐसा जन्म होगा। अरे भाई, ये जो वाक्य सुनने वाला है उसके बहुत जन्म हो चुके हैं, ये सुनने वाले का अंतिम जन्म ही होना चाहिए, नहीं तो कहां से सुनेगा ये। नहीं तो बिग प्रॉब्लम इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ऐसे होता है, हमको अपने को शुद्ध करना है, इस जन्म में हमको बोधिसत्व नहीं प्राप्त है, जब हम शुद्ध होंगे तब। हर जन्म में क्या सोचते हैं, हम शुद्ध होंगे तब। तब कब शुद्ध होगे भाई, वेदांत ये नहीं है, नगद ये सुनने वाला का ये अंतिम जन्म है क्योंकि ये सुन रहा है। आप ये सब सुन के ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, मानिए अभी आपके बहुत जन्मों का फल मिल चुका है। यू मेड इट, बहुनाम जन्मनामंते, इसका फल ये है। इस प्रकार से यहां मुझे दो दिन प्राप्त थे और दो क्लास में एक दिन अपराविद्या पराविद्या दोनों का वर्णन हो गया। ओम शांति शांति शांति।
1: हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य चरणों में वंदन करते हैं। जभी जभी पधारते हैं आनंद लेके आते हैं, दुनिया भर में घूमे और यही आनंद, खाली प्रेमपुरी, इतने हम सेल्फिश न बने, स्वार्थी न बने कि खाली प्रेमपुरी। प्रेमपुरी में से कई संत इसी तरह से जाए और बहुत अच्छा कार्य करे और उसी के साथ प्रेमपुरी का विनाम हो और संत लोग का जो भी ज्ञान विद्या है दुनिया भर को मिले, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो महाराज जी को फिर से आप सबकी तरफ से हम प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह जो आखिरी एक वाक्य आपने सुना हो तो उस एक वाक्य में उन्होंने अपने आशीर्वाद बहुत ही अच्छी तरह दे दिया है। तो फिर से महाराज जी को प्रणाम करते हैं।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम .org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
3: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Viranminda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. भक्तों, आज हम सुनेंगे तमिलनाडु के और एक नायनमार या संत की कहानी। इनका नाम है वीरुण मेंडर। तमिलनाडु के चेर प्रदेश में सेन्नगर नाम के एक कृषक परिवार में महान संत वीरुण मेंडर का जन्म हुआ था। यह नगर आधुनिक केरल से कुछ दूरी पर है। पेरियपुराण के रचयिता, वैसे बता दूं पेरियपुराण शिव की महिमा का गुणगान है। इनमें शिव के संतों का वर्णन है जो कि तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत के प्रदेश से हैं। पेरियपुराण के रचयिता चिक्किलर ने वीरमंडल की विशेषता का वर्णन इस प्रकार किया है। विख्यात संत हैं वीरमंडल, जिनकी शिव के पद कमलों पर दृढ़ आस्था थी। माया ममता के समस्त बंधनों को वे कठोरता से तोड़ चुके थे। प्रभु के भक्तों के प्रति उनकी प्रबल स्नेह वंदना थी। संत वीरमंडल तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। अनेक मंदिरों में प्रभु की अनंत कीर्ति का गुणगान उन्होंने किया और अंत में तिरुवारूर में आकर बस गए। तिरुवारूर तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। तिरुवारूर के त्यागराज शिव मंदिर में एक देवाचार्य मंडप है जहां शिव भक्त संत रहते थे। वीरन मिंडर उन्हीं के साथ रहने लगे। उस काल की परंपरा के अनुसार तिरुवारूर के मंदिर में प्रवेश करने वालों को सर्वप्रथम मंडप में रहने वाले इन शिव भक्तों की वंदना करनी थी। उसके तत्पश्चात ही भगवान के दर्शन के लिए वो भीतर प्रवेश कर पाते थे। विख्यात भक्त कवि सुंदरमूर्ति संत या नायनमार वीरन मिंडर के समकालीन थे और उन्होंने अज्ञातवश शिव भक्तों की वंदना किए बिना ही शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। भक्तों की अवहेलना देखकर सुंदर वीरन मिंडर से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा और उन्होंने घोषणा कर दी। भक्तों की अवहेलना करने वाले सुंदरमूर्ति को और उन्हें परश और उनके भगवान त्रिपुरदाह सर्प को धारण करने वाले प्रभु शिव को भी संतों की मंडली से निष्कर्षित किया जाता है। ऐसे अद्भुत साहस से युक्त वीरन मिंडल धन्य हैं। सुंदरमूर्ति नायनार ये मानते थे कि वे शिव भक्तों के सानिध्य के योग्य नहीं हैं और इसी कारण वो प्रभु के प्रति अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी अयोग्यता का वर्णन किया। शिव ने उनके अनुग्रह का स्वीकार किया और उन्हें देवाचार्य मंडप के संतों के समक्ष प्रस्तुत होकर कहने का साहस दिया, मैं तिल्लय चिदंबरम के निवासी भक्तों के दासों का भी दास हूं से प्रारंभ होने वाली 10 पदों की कविता उन्होंने सुंदरमूर्ति से वर्णन करवाया। इन पदों में सुंदरमूर्ति ने भक्तों की नामावली की और उनके गुणों का वर्णन किया है। इन्हीं 10 पदों के आधार बनाकर चकेला ने पेरिय पुराण की रचना की। वीरन मंडल के जीवन की इस घटना से एक सत्य उभरता है। वीरन मंडल आदि महान संत थे, किसी एक बात को जीवन का लक्ष्य बनाकर मार्ग में आने वाली बाधाओं विपदाओं की चिंता न किए हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। यदि प्रभु स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने लक्ष्य को त्याग करने को कहें तो भी ये ईश्वर का त्याग चाहे कर दें पर अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। इन संतों के विषय में यह विचारना निरर्थक है कि इन्होंने किस बात को अपना लक्ष्य बनाया। युग बोध और जीवन दृष्टि में परिवर्तन हो गया है। जिस सिद्धांत को हम आज अत्यंत साधारण मानते हैं, हो सकता है कि कोई संत उसी को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाए और उसके लिए जिए या मरे। अतः लक्ष्य कौन सा है यह देखना विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, लक्ष्य सत होना चाहिए। सत यानी कि अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए। संत की पहचान इसी में है कि क्या उसने अपने लक्ष्य का अंत काल तक पालन किया है या नहीं। पेरिय पुराण के संतों के पुण्य चरित्रों का यह संकलन लक्ष्य के लिए जीने और प्राण उत्सर्ग करने के आधार पर किया गया है। ओम नमः शिवाय।
5: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Tab kya hoga? Vranti. Jo Narayan nahi hai, usme Narayan buddhi hona vranti hai ki nahi? लेकिन प्रस्तर आदि में नारायण बुद्धि होने पर, यह भ्रांति होने पर भी उसकी उपासना का फल क्या हुआ? नारायण भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यह उपासना संवादी भ्रम है। और अन्यत्र तुम यदि नारायण बुद्धि करोगे हैं, तो फिर वो उससे तुम प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो शास्त्र, इसीलिए शास्त्र प्रमाणित आलंबन में नारायण बुद्धि करोगे तो वह संवादी ब्रह्म होगा, उससे प्रयोजन सिद्ध होगा। और जो शास्त्र ने नहीं कहा है उन वस्तुओं में नारायण बुद्धि करोगे तो वह विसंवादी ब्रह्म होने के कारण प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब सोने का जो मूर्ति बनाए भगवान नारायण की, तुम उस मूर्ति को बनाकर घर में रखकर नारायण बुद्धि करके पूजा करोगे तो वह संवादी ब्रह्म होने पर भी तुमको नारायण भाव का भाव की प्राप्ति होगी, चित्त शुद्ध होगा और भगवत भाव की प्राप्ति तुम्हें अनुभूति होगी। लेकिन उसी सोने का तुम एक चेन बनाकर, लॉकेट बनाकर गले में लगाओगे, लगा रखे होगे नहीं हैं? और उस गले में जो लटका हुआ है उसमें नारायण बुद्धि करोगे तो क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो चूड़ी है, सोने की बांगड़ी बोलते हो ना, हाथ में पहन रखा है और तुम कहोगे कि नारायण बुद्धि कर लो, क्या तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी, क्योंकि शास्त्र ने हाथ में पहनी हुई चूड़ी में भगवान नारायण की बुद्धि करके पूजा करो ये कहा है, है? नहीं है, शास्त्र ने नहीं कहा, इसलिए तुम भले ही पूजा करो बंगड़ी को नारायण मानते हुए, है? तुमको भगवान नारायण भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्यों? वह विषमवादी ब्रह्म है। और इधर वास्तव में सोने की नारायण की प्रतिमा बनाकर यदि तुम स्थापना करके आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पंचोपचार षोडशोपचार बत्तीसोपचार पूजा करोगे तो निश्चित है कि तुम्हें नारायण भाव की प्राप्ति होगी। है दोनों सोने, है? दोनों में भावना करनी है, एक में शास्त्र प्रमाण के अनुरूप भावना करनी है और दूसरे में शास्त्र ने नहीं कहा फिर भी भावना करनी है, तब दूसरा शास्त्र के द्वारा न कहे होने के कारण यदि तुम भावना करोगे तो उससे तुम्हारे भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी, और पहले में शास्त्र ने कहा है उसी अनुसार जो तुम भावना करोगे तो तुम्हारे के भावना के अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए ब्रह्म दो प्रकार के हो गए, एक संवादी ब्रह्म दूसरा विषमवादी ब्रह्म। ये बात हम क्यों उठा रहे हैं? यहां शंकराचार्य जी, लोग जड़ जना कितने भ्रांति ब्रह्म में हैं और क्या क्या करते हैं भ्रांति के चलते ब्रह्म के चलते, ये बताने जा रहे हैं। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम, एक भ्रांति का लक्षण ये हो गया कि सुक्तौ रजतम, रजत बुद्धि, सीपी में रजत की जाने चांदी की बुद्धि होना। दूसरा उदाहरण, कांचास्मनि मणि, कांच अस्मनि, कांचास्मनि माने शीशा, कांच बोलते हो ना, संस्कृत शब्द है कांच, शीशा, अस्मनि माने पत्थर, क्योंकि शीशा भी प्रस्तर है, पार्थिव है शीशा, इसलिए कांचास्मनि कांच के टुकड़ों में मणि बुद्धि हो गई, किसी को कांच का टुकड़े में मणि बुद्धि हो गई, हाँ, और किसी को मणि में कांच बुद्धि हो जाती है, ये क्या है? भ्रांति। मणि में कांच बुद्धि होना और कांच में मणि बुद्धि होना दोनों भ्रांति हैं। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना, न जानने का फल कभी कभी सुख होता है, न जानने का बल फल कभी कभी सुख होता है, और कभी कभी जानने का फल बड़ा भारी दुख होता है, होता है कि नहीं? नहीं जानोगे तो सुख है और जानोगे तो दुख है, और कभी कभी नहीं जानोगे तो दुख है और जानोगे तो सुख है, ये विपरीत है, ये दोनों भ्रांति है। न जानने से सुख होगा और जानने पे दुख होगा, और कहीं कहीं जानने पर दुख होगा न जानने पर सुख होगा, इस सुख दुख का कोई ठिकाना नहीं है। वो जानने से सुख होता है कि न जानने से सुख होता है, जानने से दुख होता है कि न जानने से दुख होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई, तब वह उसको दुख होगा कि नहीं, डरेगा कि नहीं, भयभीत होगा कि नहीं? वो यदि डर गया भयभीत हुआ तो उसका कारण क्या हुआ? न जानना। ये सिद्ध हुआ कि नहीं बोलो? रस्सी के स्वरूप को न जानना उसके लिए भय का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया, है? फिर से आगे उसने देख लिया भ्रांति हो गई सर्प है, तुरंत उस पीछे मुड़ गया और दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते उसको नीचे गिर गया किसी गड्ढे में और टांग टूट गई। बोलो अब सुख होगा या दुख होगा? है? और वो जो दुख है किस कारण से हुआ है? न जानने से। किसको न जानने से? रस्सी को न जानने से। और दूसरा, कोई व्यक्ति को कांच के टुकड़े में हीरे की बुद्धि हुई, अब उसने उस हीरे समझकर उस कांच के टुकड़े को घर में लाकर तिजोरी में रख ली और मन ही मन प्रसन्न हो गया कि भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ कर दिया। महात्मा लोग कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और जब लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। ये महात्माओं की भाषा है ये सब, ये भगवान का कोई भरोसा नहीं है। देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है, है? कोई भरोसा नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या निश्चय किया? इतना बड़ा कांच का टुकड़ा था, बड़ा चमकीला था, अब उसको कांच में हीरे की बुद्धि हुई तो ये भ्रांति हुई कि नहीं उसको? और उसको उठाया लाया, प्रसन्न हो गया, वाह इतना बड़ा हीरा कितना कैरेट का होगा, ओहो इसका मूल्य बाजार में बेचूंगा, तो क्या भगवान प्रसन्न हो गए आज तो, बड़े खुशी से लाया और तिजोरी में रखा और बार बार सबसे कहता रहा भगवान की बड़ी कृपा है। क्या है भाई? अरे हमको बढ़िया हीरा मिल गया है, अब हमारे पास कोई दरिद्र फटके नहीं आ सकता है, गरीबी नहीं रह सकती, दरिद्री। एक दिन बेचूंगा करोड़ों रुपया मिलेगा, करोड़ों रुपया का हीरा मेरे पास है, मुझे लगता है दुनिया में किसी के पास नहीं, अब तो मैं माल माल हो गया। अब क्या प्रसन्न है, भगवान को धन्यवाद दे रहा है, सबको प्रसन्न है, खुश है, है? घर में जाकर श्रीमती का आज खिचड़ी और कड़ी नहीं पकाना। बोले क्यों? अरे आज तो भगवान ने इतना दिया है कि आज खुशी का दिन है, बढ़िया लापसी का लापसी पकाओ, मूंग की दाल का हलवा बनाओ, बादाम काजू डालना उसमें, खूब हलवा पकाओ, आज तो खुशी का दिन है, प्रसन्नता के दिन है। क्या खुश हो गया वो, किसके चलते? अज्ञान के चलते खुश हुआ कि नहीं? अब उसने विचार किया कि एक दिन तो इसको बेचना ही पड़ेगा, रख रखने से क्या फायदा है, है? तो गया जब जौहरी का है बेचने के लिए लेकर गया, कहा मेरे पास एक हीरा है, कितनी कीमत का है, कितना पैसा दोगे तुम? बोले दिखाओ, पहले हम देखेंगे तब पैसे की बात करेंगे, भाई बिना देखे नहीं करेंगे, दिखाओ। तो उसने दिखा दिया, ले ये हीरा है। उस जौहरी ने कह दिया कि अरे हीरा नहीं, इसका एक पैसा भी नहीं देंगे, जाओ लेके जाओ, तुम फोकड़ में दोगे तो भी हम नहीं रखेंगे, ये हीरा किसने कह दिया तुमको, ये तो कांच का टुकड़ा है। बोलो उसको ये प्रमा ज्ञान हुई कि नहीं, ये कांच का टुकड़ा है ये ज्ञान प्रमाण से सिद्ध हुआ कि नहीं? इसको प्रमा ज्ञान बोलते हैं, प्रमाण से सिद्ध हुआ। अब ये ज्ञान होने पर उसको दुख हुआ कि नहीं? अरे ये तो कांच का टुकड़ा निकला, क्या करें भाई, मेरा भाग्य ही ऐसा। दुखी हुआ कि नहीं बोलो? हैं? ज्ञान से दुखी हुआ? वो ज्ञान से सुखी हुआ कौन? रस्सी में सर्प मानने वाला जब प्रकाश आ गया तो ये तो रस्सी है, तो अब प्रसन्न हो गया कि नहीं? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं कैसा मूर्ख हूं, ये तो रस्सी निकली। पहले अज्ञान से दुखी हुआ था, ज्ञान से सुखी हुआ, और यहां अज्ञान से सुखी हुआ था, ज्ञान से दुखी हुआ। ये सुख दुख का कोई भरोसा नहीं है वो, हा? तो यहां शंकराचार्य जी इसी प्रकार के भ्रांति से लोग किस तरह भ्रमित हैं पहला उसका प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा बुद्धि सुक्तौ रजतम इति, यथा कांचास्मनि मणि इति, मणि बुद्धि इति। इसी तरह यथा जले पेष्टे क्षीरम बुद्धि इति है, ये शब्द आप लोग समझ पाए? जले पेष्टे क्षीरम, जल में, जलन में आटा घोलकर पतला बनाकर रखो, मैदा अरारोट कुछ डाल के घोल दो और पतला, तो देखने में कैसे लगेगा? क्षीर दूध लगेगा कि नहीं? यथा पेस्टे क्षीर, पेस्ट माने पीठा, पीठो, पीठ शब्द बोलते हैं वो आटे को, ये संस्कृत भाषा है, पिष्ट पिष्ट, गुजराती में तुम लोग लोट कहो छो अपने शू कहवाए पिष्ट, पीसकर जो तैयार हुआ है उसको पिष्ट, तो पिष्ट द्वारा जो बना उसको पेस्ट, पेस्ट हो गया, पिष्ट द्वारा जो बनेगा वो क्या होगा? पेस्ट होगा। हाँ, तो उस पेस्ट छीर पानी में वो पिष्ट डालोगे तो जो सफेद पानी बनेगा वो क्या होगा? पेस्ट होगा। वो पेस्ट में छीर बुद्धि हो गई। तुम लोगों ने सुना है कि नहीं पुराण की कई कथाएं हैं, अश्वत्थामा का है, उपमन्यु का भी है। अश्वत्थामा का भी वही प्रसंग है, एक बार अश्वत्थामा बेचारे द्रोणाचार्य तो गरीब ही थे, हैं? द्रोणाचार्य तो गरीब थे, अब गरीब होने के कारण उनकी पत्नी भी गरीब रही होगी। पति यदि गरीब होगा पत्नी अमर होती है कि नहीं, अमीर होती है कि नहीं? यहां तो होते हैं वो, हाँ हो जाते, पत्नी धनवान होगी पति बेचारा गरीब हो सकता है। अरे मायके का संपत्ति लाई होगी तो पत्नी क्या कहती है पता है? पति को क्या बोलती है? ये मेरा संपत्ति है, तेरा थोड़ी है, ये सारा संपत्ति मेरा, मेरा संपत्ति खाकर तुम बचा हुआ है, ये सारी संपत्ति किसकी? मेरी है। तो क्या हुआ? पत्नी धनवान हो गई, पति बेचारा गरीब का गरीब ही रह गया। हाँ, तो ऐसा कृपी के पास ऐसा नहीं था, है ना? बेचारा कृपाचार्य के पास क्या था और क्या देते दहेज में द्रोणाचार्य को, है? तो द्रोणाचार्य और कृपी, उनका पुत्र अश्वत्थामा, घर में तो कुछ था नहीं बेचारा। एक बार वो मामा के यहां चले गए अश्वत्थामा, तो वहां बढ़िया गाय का दूध है उनको पीने को मिला, तो क्या आनंद आया, पहली बार जीवन में मुख में उनको गाय का दूध मिला। तो पूछा कि ये क्या है? ये गाय का दूध है बेटा, खूब पियो, बड़ा गुणकारी है, बड़ा फायदा करता है। तो दो चार दिन मामा के यहां बैठा तो वो गाय का दूध रोज पीता था, बड़ा स्वादिष्ट था। उसके बाद घर आ गया, अब अपनी मां से अश्वत्थामा कहने लगे कि मां मुझे दूध पिला, मां मुझे दूध चाहिए। बार बार दूध पर वह हट करने लग गए अश्वत्थामा। मां ने कहा कि ये बेचारा वहां दूध पी के आया है और यह दूध मांग रहा है, अपने पास दूध तो है ही नहीं। बड़ा होशियारी कर लिया उसको। हम लोग कभी कभी बच्चों को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिह्वा जो है चाहे बच्चे का हो चाहे बड़े का हो बराबर काम करता है, करता है कि नहीं? जुवा तो चाहे बच्चे का हो चाहे बूढ़े का हो, जुवा बराबर काम करता है। उन्होंने आटा घोल दिया पानी में और थोड़ा घोल घाल के ले बेटा गिलास में तैयार कर दिया, ले बेटा दूध पी ले। अब अश्वत्थामा ने जब दूध के नाम पर वो पिया तो जुवा ने उसको रिजेक्ट कर दी। मां ने दूध कहा लेकिन अश्वत्थामा के जुवा ने तो कहा नहीं ना, कहा? जुवा भी यदि मान लेता मां का कहना, जैसे मां ने कहा वैसे जुवा भी कह देता तो अश्वत्थामा को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। जुवा ने रिजेक्ट कर दिया, बोले थू थू कर दिया, ये तो नहीं है दूध, मुझे दूध दो। बड़ा हट करने लगा तो कृपी ने कहा जब द्रोणाचार्य जी आए, अरे सुनो जी ये जो लड़का है हमारा बेटा है वो बहुत हट कर रहा है, बहुत जिद कर रहा है। क्यों? बोले दूध के लिए हट कर रहा है, वो और कुछ खा ही नहीं रहा है, मुझे वही चाहिए बोलता है। अब क्या करें भाई? बोले क्या करें, हमारे पास गाय खरीद के लाने का कोई क्षमता नहीं है, संपत्ति पैसा नहीं है, और आजकल तो श्राद्ध पक्ष भी नहीं है, जजमानी भी नहीं चल रही है, कोई जजमानी नहीं चल रही है। नवरात्रि होती तो कोई अनुष्ठान आदि कर लेते, चंडी का पाठ वो भी नहीं है, श्राद्ध पक्ष होता तो किसी के यहां श्राद्ध तर्पण कराने चले जाते, वो भी नहीं है, क्या करें, जजमानी भी नहीं चल रही है। फिर कृपी ने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम्हारा जो एक मित्र है ना पढ़ते समय गुरुकुल का साथी, कौन था? द्रुपद। हा, वो आजकल राजा बना है, कह रहे हो ना तुम, पहले जो तुम्हारे गुरुकुल का साथी है वो अभी राजा बना है, तुमने ही तो कहा है, तो उसके यहां चले जाओ मित्रता के नाते, उसके राजा है, उसके यहां तो बहुत गाय है, बहुत संपत्ति है, तो थोड़ा सा संपत्ति या जाने दो, संपत्ति छोड़ दो, एक गाय तो ले आओ, मांग लो एक गाय मांग के ले आओ, तो उसी के दूध पिला देंगे, ये संतुष्ट हो जाएगा। तो बेचारे अश्वत्थामा चले गए, है ना? मानना ही पड़ता है, तुम लोग मानते हो कि नहीं पत्नी का कहा है? सारे उदाहरण है, वो पत्नी का कहा मानते हैं, सब मानते हैं। देखो सुदामा माने कि नहीं, किसने भेजा कृष्ण के पास सुदामा को? है जाओ, सुदामा जाना नहीं चाहते थे, जाओ कहा और मान नहीं पड़ा, होम मिनिस्टर का कहा कौन नहीं मानेगा बेचारा। अब यहां कृपी ने भी अश्वत्थामा को कहा जाओ जाओ, द्रोणाचार्य सॉरी द्रोणाचार्य को कहा जाओ जाओ, बेचारे वो चले गए, और बेचारा वो फिर राजा बनने के बाद वो उसका अहंकार तो साथ में आसन को छू चुका था है? जब वो पढ़ता था परशुराम जी के यहां तब एक अक्षर उसको नहीं आता था, थोड़ा बहुत जो है यही द्रोणाचार्य जी उसको सिखाते थे, अतिरिक्त पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पास मार्क लाता था, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होता था, वो डिक्टेंशन की तो बात ही छोड़ दो, और द्रोणाचार्य जी डिक्टेंशन लाते थे ना, केवल पास की बात नहीं है, फर्स्ट डिवीजन नहीं, डिक्टेंशन मेरिट हो जाते थे वो, और ये बड़े मुश्किल से वो भी द्रोणाचार्य जी के कृपा से पास मार्क लाता था, और कहता था मित्र तुम मुझे सिखाना, मुझे पढ़ाना, मैं युवराज हूं, तो बाद में मैं राजा बनूंगा, तो तुम्हारे ये सारे चीज का मैं, हमारे साथ रहेंगे, मैं मदद करूंगा तुमको, राजा बनूंगा, तो मित्र तो है, इस संस्कार के चलते चले गए द्रोणाचार्य जी है? लेकिन उसने जवाब दे दिया, कौन मित्र, किस बात का मित्र, जवाब दे दिया, ये गाय देने को तैयार नहीं हुआ द्रोणाचार्य जी को, तो बड़ा गुस्सा आ गया बेचारे द्रोणाचार्य जी, कामात क्रोधो अभी जाए थे, पढ़ा है कि नहीं किताब में, गाय की कामना से गए थे कौन, द्रोणाचार्य जी, किसके यहां, राजा द्रुपद के यहां है। लेकिन जब वो कामना में प्रतिबंधित हो गया, रुकावट आ गया, उसने दिया नहीं, तो क्या हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, बस क्या था, तब दुश्मनी शुरू हो गई। तब गाय तो नहीं मिली, अब क्या करें, बड़े समझा समझा के उसको किसी तरह खिचड़ी खिचड़ी से अश्वत्थामा को बड़ा किया, भाई दूध तो है ही नहीं, संपत्ति तो है ही नहीं, इसी तरह उपमन्यु का भी ये बात है, भगवान शिव के शिष्य है ना भक्त उपमन्यु की कथा आपने सुना, 5 साल के बालक हैं, उनको भी कहानी वही है, उसी तरह मामा के यहां गए तो उनको दूध पीने को मिला, घर में आए तो उन्होंने मां से कहा

होती एक गाय के दूध की कामना से, और होते होते ऐसा हो गया कि शिव जी के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे शिव भक्त हुए अनन्य के इतिहास में, उसका उल्लेख हमने परसों किया ही था। तो ये क्या है, ये सारा प्रसंग किस वाक्य से चल पड़ा? जले पेस्टे क्षीरम, ये क्या है? भ्रांति, ये भी भ्रांति का लक्षण है। भवति मृग तृष्णा सुसलिलम, दूसरा मृग मरीचिका, मरुभूमि में दिखने वाला जो जल, तो मरुभूमि में जल की जो भ्रांति है उसको मृग तृष्णा कहते हैं, मृग की तृष्णा। वो क्या है? वो भी एक भ्रांति है। तथा देव भ्रांता भ्रांत्या, इसी प्रकार से जड़ धिया, बहुत से जड़ बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वह भ्रांति से, जो वास्तव में महादेव नहीं, जो वास्तव में परमात्मा नहीं, उन सब में भी थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध होता हुआ देखा कि उसी को परमात्मा समझकर उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की ही सेवा करने लग जाते हैं सभी लोग भ्रांति से। दरगाह पूजने लग जाते हैं किसे, बोलो, किसी से थोड़ा सा उनका प्रयोजन पूरा कर दिया है? एक सज्जन आके कह रहे थे हमको, एक महिला का शरीर में बहुत दर्द होता था, उसकी पत्नी का, औषधि किया, दवाई किया, यूं किया त्यों किया, किसी से कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा कि इसमें कोई मृतात्मा किसी का घुस गया है, इसके कारण से इसको तकलीफ हो रहा है। तुम ऐसा करो कि फलाना दरगाह है वहां, वहां उस दरगाह में जाओ तो बस वो सब खत्म हो जाएगा। देखो मेरा भी ऐसे ही था, मैं एक बार दरगाह में किसी ने कहा, मैं गया वहां जाकर फूल चढ़ाया, गुलाब के फूल, मैं अब ठीक हूं। तो रोज शिवजी के जल चढ़ा था तो उससे तो कमर ठीक नहीं हुआ, लेकिन दरगाह में जाकर एक गुलाब का फूल चढ़ाया तो कमर ठीक हो गया, मेरा दर्द सब खत्म हो गया। तब से मैं नियमित दरगाह जाता हूं। अब क्या हुआ बोलो? एक छोटा सा लौकिक फल मिल गया, इतनी मात्र से वो दरगाह ही प्रधानता हो गई, उसी को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानने लग गया। अब वो भ्रांत है कि नहीं बोलो? शिव जी को छोड़ दिया जल चढ़ाना, उनको क्या कहेंगे? कब्र पूजने वाला तो क्या है, जड़मती, जड़ दिया और क्या। अब ये बात अलग चीज है, दरगाह भी जो परमात्मा है सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, तो दरगाह में भी है कि नहीं बोलो? सर्वव्यापक होने के कारण दरगाह में है। अब कोई सुनेगा तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा, है मुसलमान, आप लोग तो मुसलमान नहीं हो, आप लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा, तो मुसलमान कदाचित तो सुन लेगा, है तो वो लोग भी कम नहीं है, हमारी धज्जी उड़ा देते हैं वो लोग भी, है ये सब बूथ परस्त। हम लोगों को क्या बोलते हैं? बूथ परस्त, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक हैं। अब वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते तो मूर्ति पूजकों की वो धज्जी उड़ाते थे, लेकिन वो कब्र पूजा करते हैं, है ना? कब्र पूजते हैं कि नहीं बोलो? दरगाह में क्या करते हैं? कब्र पूजते हैं। अब मान लो वही तो मूर्ति है, उसमें हमने नाक कान आंख बना दी, हाथ पांव बना दिया, उन्होंने नहीं बनाया, मिट्टी तो दोनों में बराबर है कि नहीं है?

0: ये तो वही है कि नहीं? पत्थर तो वही है, मिट्टी तो वही है, उसी में जरा आंख कान नाक बना दिया हमने, वो तुमने नहीं बनाया, बस इतना ही तो अंतर है। आखिर किसी न किसी मूर्त वस्तु में अमूर्त वस्तु की भावना करना, यही तो हम कर रहे हैं और यही तुम कर रहे हो। फिर हमारी क्यों धज्जी उड़ाते हो मूर्ति पूजकों की? श्रद्धा भाव से तुमको जिसमें प्रतीक मानकर करते हो, क्योंकि हमारे वेदांत परमात्मा को सर्वव्यापक मानता है। सर्वव्यापक मानने के कारण भैंस के गोबर में भी है कि नहीं, गाय के गोबर में भी है कि नहीं, वो तो है ना। इसीलिए तो हमने उसमें गोवर्धन पूजा करना शुरू कर दी। हम गोबर की पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? गोबरावच्छिन्न चैतन्य की। वेदांत की भाषा बोल दिया वो हमने, ये वेदांत की भाषा है। हम गोबर की पूजा नहीं करते हैं। यदि गोबर की पूजा करके भी हमको फल मिल रहा है, हमारा मनोकामना हमारा मनोरथ पूरा हो रहा है, तो मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं है, गोबरावच्छिन्न चैतन्य है। जो शिव सर्वव्यापक है, वही शिव सर्वव्यापक होने के कारण गोबरावच्छिन्न भी है, गोबर में भी है। तो हमको फल देने वाला कौन है बोलो? गोबर की, गोवर्धन की पूजा करके हमारे मनोरथ पूरा करने वाला कौन है? गोबर है कि गोबरावच्छिन्न शिव है? ये वेदांत की भाषा जो जानता है वो समझेगा इस बात को। क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापक होने के कारण जो जो वस्तु हैं उस वस्तु में तद वस्तु अवच्छिन्न होके रहेंगे। हाँ, जैसे आकाश सर्वव्यापक होने पर, आकाश सर्वव्यापक होने पर सीधा आकाश में हम पानी नहीं भर सकते हैं, किसमें भरते हैं? घड़े में नहीं भरते, घड़े में पानी नहीं भरते हम, किसमें भरते हैं? घटाकाश में। पानी किसमें भरते हैं? स्पेस में भरते हैं कि घड़े में भरते हैं? घड़ा कोई स्पेस नहीं है, घड़ा कोई स्पेस है? घट तो घट है, स्पेस अलग है, घट अलग है, घटाकाश अलग है, घट अलग है, पानी कहां भरते हैं? घटाकाश में। लेकिन सब लोग कहते हैं घड़े में भरते, घड़े में भरते, घड़े में तो घड़ा है, घड़े में कहीं अवकाश है पानी के लिए? हैं? घड़े में तो घड़ा ही है, पानी के लिए अवकाश तो है ही नहीं। पानी के लिए अवकाश तो घड़ाकाश में है, चले पानी भरते कहां? अब देखो, आकाश सर्वव्यापक होने के कारण घड़े के अंदर भी है कि नहीं? तो पानी हमने कहां भरा? घटाकाश में। इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है कि नहीं? है? सर्वव्यापक होने के कारण गोबर में भी है। अब वही शिव सर्वव्यापक है तो गोबर में भी है, तो गोबरावच्छिन्न चैतन्य की हम पूजा कर रहे हैं, गोबर की नहीं। और हमारे मनोरथ पूरा करने वाला गोबर नहीं, क्या है? गोबरावच्छिन्न चैतन्य, वही शिव है। ये बुद्धि होना अलग चीज है, और गोबर में गोबर बुद्धि होना अलग चीज है, गोबर में सर्वव्यापक परमात्मा बुद्धि होना अलग चीज है। तो लोग कहते हैं हमने गोबर लाके गोवर्धन की पूजा की तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया। तो दूसरे ने सुन लिया तो कहीं सड़क में से गोबर भैंस का उठा लिया, घर में रख लिया और उसको पूजा करने शुरू कर दिया। ये क्या है बोलो? उसकी वो सर्वव्यापक चैतन्यता की बुद्धि नहीं हो रही है, है? उसकी तो सर्वव्यापकता की बुद्धि हो गई, तब उस गोबर में भी उसी भगवान बुद्धि करके पूजा कर रहा है, और उसमें सर्वव्यापकता की बुद्धि तो है ही नहीं। उसने क्या देखा? इसने गोबर की पूजा करके इसका मनोरथ हो गया पूरा, तो हम भी गोबर की पूजा करते हैं। तो बोले गोबर लाया और गोबर का एक टीला बना लिया और पूजा करने शुरू कर दिया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इतनी पढ़ाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो कहते हैं कि ब्राह्मण अभी अमुक ब्राह्मण है, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर है, उसको ऐसा विद्या पढ़ाते हैं कि पढ़ते पढ़ते इतना साक्षर हो जाता है कि कहता है बस मैं तो अमुक का बेटा हूं। दूसरा आता है कहता है बिल्कुल झूठ बोला, कोरा झूठ, तू बेटा नहीं, तू हमारा भतीजा है। मैं जब आऊ पूछू तो कहना कि मैं आपका भतीजा और आप हमारे चाचा। ये जितने लोग आते हैं ना, इसके बाद मामा आया, उसने कहा कि सब झूठ बोल रहे, तू ना जो है किसी का भतीजा है न तू बेटा है, तू मेरा शुद्ध भांजा लगता है, मैं तेरा मामा हूं। महाराज दुनिया वाले इतने पढ़ाई पढ़ा देते हैं ना कि हम जो है निशेष हो करके भी सविशेष हो जाते हैं और फिर जीवन भर नाचते रहते ही नचाते हैं। मामा ये भांजे की रस्सी से नचा रहा है तो चाचा भतीजे के, तो दुश्मन भी आता है कहता देख मैं तेरा दुश्मन हूं। इतने गले में ये रस्सियां बंध जाती है, हम जीवन भर नाचते रहते और दिन पर दिन बढ़ती जाती है रस्सियां, घटती नहीं है। एक केवल वेदांत ऐसा है जो आपको साफ साफ कहता है कि तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विशेष चैतन्य हो। ये तो मतलब के लिए उपाधियों को लोगों ने जोड़ दिया है, मतलब जानते हैं ना, जिसे किसी से काम निकालना हो तो हम लोग जो है उसकी बड़ी तारीफ कर देते हैं। तो यहां पर निर्विशेष चैतन्य है, उस पर हलाहल विषमल विद्या का आरोप। ऐसे जीव निर्विशेष चैतन्य है, इसके ऊपर नाम रूप आदियों का आरोप हो गया। आरोप होने के बाद कामना होती है और काम का दान भी भगवान शंकर ही करते हैं, जिस 15वें श्लोक में बतलाया गया है कि सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुर नरे। यह जो कामना है वह कामना चाहे देवता हो या असुर हो या नर, कहीं पर भी इसकी अबाध गति है। जब तारकासुर पूरे ब्रह्मांड को पीड़ा पहुंचाने लगा और भगवान शंकर से वरदान प्राप्त होके अमर के समान हो गया था, ब्रह्मा जी ने वरदान में एक बात कही थी कि तुझे केवल शंकर पुत्र ही मार सकते हैं, और उदंड हो गया। उसे पता था कि सती का दाह होने के बाद भगवान शंकर हिमालय पर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, न भगवान शंकर के जल्दी समाधि खुलेगी, न ब्याह होना है न पुत्र होना है, निश्चिंत रूप से वह संसार में उत्पात मचा रहा था। सारे देवता पीड़ित होकर के भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, अपने स्वरूप चिंतन में तल्लीन है। देवताओं ने कामदेव को पुकारा, बहुत तारीफ किया। राजस्थान में चंग चढ़ाना बोलते हैं ना, किसी काम निकलना तो चंग चढ़ाते हैं। खूब तारीफ किया कि देखो भाई इस समय तुम ही यह काम कर सकते हो, तुम्हें हम लोग बहुत इनाम देंगे। अब कामदेव भी देवताओं की बात में आ गया, पहले तो मना किया कि भगवान शंकर के समाधि को खोलना अर्थात सीधा अपनी मौत को पुकारना है। पर जब सबने कहा, भगवान विष्णु ने भी कह दिया कि ये तो केवल तू ही कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, हम लोग तेरे सहायक बनेंगे, तू जो हमारा नेता है, किसी को नेता बना दो ना, जो नेता बनता उसको मालूम है, गिरीश भाई को मालूम है कि व्यवस्था में स्वर्ण रथ महोत्सव मनाने में कितनी तकलीफ पापड़ बेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में बोलते हैं पापड़ बेलना, पापड़ बेलने में बहुत मुसीबत होती, लोग तो आराम से एक सेकंड में अग्नि पर रख के पापड़ सेक के खा लिए, सबसे आसानी से पापड़ खाना होता है, परंतु बेलने में कितनी परेशानी। वैसे महोत्सव को मनाने में कितनी परेशानी, पर किसी को नेता बना दो ना, खुद आनंद से वो मनाता है, उत्साह रहता है। हमारे यहाँ जब किसी महात्मा से काम लेना हो तो उसको मंत्री महामंत्री बनाते हैं। ये कुठारी शब्द पुराना हो गया ना, तो कुठारी से उसको बुरा लगता है, हीन भावना होती है। काम तो पूरा कुठारी का ही है, वही जो व्यवस्था है, नमक मिर्च दाल चेल देख रेख वही काम है, परंतु कुठारी शब्द को विकसित करके उसको मंत्री महामंत्री से पुकार तो खुश होता है, मैं मंत्री हो गया महामंत्री हो गया, काम निकालना है। ऐसे ही जो यहाँ पर भी कामदेव से काम निकालना था, तो देवताओं ने कहा कि देखो तुम हमारे नेता हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सब जो है हिमालय पहुंचे, वहां भगवान शंकर समाधि लगाए हुए हैं। तुरंत काम बाण का अनुसंधान किया, अनुसंधान करते ही भगवान शंकर की आंख खुली। जैसे हम लोग नींद से जब जगते हैं तो नींद में हमारे आंख में खुमारी होती है, खुमारी मतलब की आधी नींद होती है, थोड़ा बंद होता है, थोड़ा नींद का असर होता है, तो समाधि का असर दाहिने आंख में है और काम बाण के कारण से बाएं आंख में भगवान शंकर के श्रृंगार रस है, बाजू में पार्वती जी सेवा कर रहे उनको भी देख रहे, और तीसरे नेत्र से विचार किए, तीसरा मतलब ज्ञान नेत्र। इतने दिन से पार्वती हमारी सेवा कर रही परंतु कभी भी कामना नहीं हुआ, आज अचानक कैसे हुआ? क्योंकि तो इसके मन में कोई कामना नहीं हो सकता ना, मेरे मन में हो न हो किसी तीसरे व्यक्ति का काम होगा। भगवान जब दृष्टि दौड़ाए तो बस कामदेव धनुष बाण फेंक दिया, ताकि हमने नहीं किया है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया था, जैसे देवता लोग खड़े पंक्ति वैसे मैं भी दर्शन कर रहा हूं। पर भगवान शंकर समझ गए कि कामदेव का ही काम है, बस तत्काल उस ज्ञानाग्नि से कामदेव भस्म हो गया, तब से कामदेव अनंग हो गया। तो देखो भगवान शंकर के पास यदि काम पहुंचा तो उसका नाश हुआ, तो हमारे जीवन में भी जब अविद्या के बाद जब काम हो और कामना से जब परेशान हो तो एक ही सहारे हैं भगवान शंकर। इसी बात को उपनिषद के मंत्रों में बदलाया है कि आत्मकामः, सबसे पहले आत्मकाम होना चाहिए, फिर अकामः आप्तकामः शोकानंतरम। जीवन में कामनाओं से शोक हो रहा हो, विषाद संतप्त हो रहे हो, तो सबसे पहले आत्मा की शिव की कामना करें। जैसे कामदेव भगवान शंकर के पास गया तो पहुंचते ही काम का नाश, और नाश होने के बाद भी 15वें-16वें श्लोक में ज्ञान गंगा का अवतरण वर्णन है। तो हमारे जीवन में भी ये जो कामदेव की बाणे है ना, विशिखा, विशिखा शब्द का अर्थ होता है विविध प्रकारेण शिखा विशिखा। एक दीपक की शिखा होती है, मोमबत्ती की शिखा होती है, और ये कामदेव की ऐसी ही विशिखा है कि संसार में सर्वत्र विजयी होती है। कहीं पर भी जाए देवलोक, जब ब्रह्मा के पास कामदेव गया जमाने के लिए, बेचारे ब्रह्मा ही मुग्ध हो गए, इंद्र ही मुग्ध हो गए, अहिल्या के सतीत्व का भंग किया, वैसे ही भगवान शंकर को समझा कि जैसे ब्रह्मा है इंद्र है, ऐसे जो है इनको भी हम वश में कर लेंगे। उपनिषद में जहां प्राणोपासना है वहां पर कहा है प्राणी ब्रह्म, तो वहां पर जब उद्गीत कर्म प्रारंभ होता है तो जैसे उद्गीत कर्म प्रारंभ वैसे ही असुर लोग आक्रमण करते थे। पहले उद्गान वाणी ने किया तो वाणी को असुरों ने विद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, इसके बाद आंख ने किया, कान ने किया, सब ने किया, अंत में प्राण ने उद्गीत कर्म प्रारंभ किया। तो जिस प्रकार से पत्थर के पास मिट्टी के ढेले जाते हैं चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्राण के पास जब असुर गए तो वहां जाते ही समाप्त हो गए। ऐसी कामदेव ने सोचा कि अन्य देव असुर मनुष्य के समान ये हमारे बाण भगवान शंकर को भी बस में कर लेंगे, पर हो गया विपरीत। कल हमने आपको सुंदर का चरित्र सुनाया था, शेष था ना, तो सुंदर के जीवन में यही घटना घटती है कि एक बार तो भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन भी थे, उद्धव जी भी थे, कई थे, ऐसे ही सुंदर को भगवान शंकर ने शिव मित्र नाम दिया। तो हमारे मित्र हो, जब चाहे तब तो हमारे सामने आ सकते हो, क्यों मित्र के लिए कोई नियम नहीं होता है, वह नहा धोकर आए, बिना नहाए आए, कैसे भी आ जाए। भक्त के लिए नियम होता है, शिष्य के लिए नियम होता है कि नहा धोकर आए गुरु के पास। परंतु भगवान ने सुंदर को सीमित नाम दिया कि तुम हमारे मित्र हो और कभी भी आ सकते हो। तो सुंदर जब जवान हुआ तो एक दिन पुष्प वाटिका में पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गया। उधर से एक परवा नामक गणिका की कन्या भी पुष्प लेने आई थी। संयोग से जैसे ही सुंदर ने उस परवा नामक वेश्या कन्या को देखा, मुग्ध हो गया। उसका सौंदर्य इतना सुंदर था कि अपने आप को रोक न सका। उधर परवा भी इसको देखकर मुग्ध हो गई। इसके बाद वहां से दोनों अपने अपने घर गए। इधर सुंदर के मन में उसका सौंदर्य इतना हलचल उत्पन्न कर दिया कि वह भगवान शंकर के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया, पूजा भी छूट गया। तीन चार रोज से उसी का चिंतन करते रहा। ये काम ऐसी है ना कि बड़े बड़े को मुग्ध कर देती है। मुग्ध का मतलब कि मुह धातु वैचित्र्य अर्थ में है। जब काम जीवन में आता है तो हमारा चित्त वैचित्र्य, वैचित्र मतलब विविध प्रकार के उसी के रूप का श्रृंगार के आकार प्रकार के चिंतन में डूब जाता है। भगवान शंकर ने देखा चार रोज हो गए अभी तक सुंदर नहीं पधारा, क्या कारण है। स्वयं ही भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके घर जाते हैं। भगवान शंकर के आते चरणों में गिर जाता है। उसने कहा यदि मुझे परवा नहीं मिलेगी तो मैं भूखे प्यासे शरीर को छोड़ दूंगा। अब क्या करे, जैसे अर्जुन ने कहा ना कि हमें अभिमन्यु का दर्शन कराओ, मेरा बहुत प्यारा पुत्र है। पूरा गीता ज्ञान सुनने के बाद भी जैसे कभी कभी आकाश में बादल सूर्य को ढक देते हैं, अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। फिर भी महाभारत के बाद अर्जुन एक बार प्रार्थना किया, आप कृपा करके एक बार मेरे लाडले अभिमन्यु का दर्शन करा दो, उससे कुछ बात कर लो। जब वहां गए तो अभिमन्यु ने कैसा सत्कार किया, एक तमाचा जड़ दिया, बोला कि कितने बार तू हुआ, मैं हुआ, बाप बेटा, इस संसार का कोई अंत ही नहीं, और गीता ज्ञान सुनने के बाद भी तुझे लगता है कि मैं तेरा बेटा, तू मेरा बाप, या ज्ञान अभी तक गया नहीं। वह तुरंत लौटे। ऐसे ही यहाँ सुंदर के जीवन में घटना घटी। सुंदर ही भगवान के चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और मैं जीवन में केवल एक ही चीज आपसे मांगता हूँ। अभी तक हमने कुछ भी नहीं मांगी थी, वह यह है कि हमारा परवा से ब्याह करा दो। अब जिद ठान लिया, इसे कोई बच्चे जिद करते हैं ना। भगवान शंकर बहुत समझाए कि देख इसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं। बोला कि कुछ भी हो, एक बार बस, केवल एक बार मेरा ब्याह करा दो, इसके बाद मैं आपकी पूर्व सेवा करता रहूंगा। बोले ठीक है, जब तेरा यही आग्रह तो तेरा ब्याह करा देते हैं, पर बाद में रोना नहीं। बोला महादेव मैं सब संभाल लूंगा, एक बार ब्याह मेरी हो जाए, जैसे नारद जी ने कहा था ना भगवान विष्णु से। उधर भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्धरात्रि में परवा के घर पधारते हैं। वहां जाकर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो। परवा खोलने गई तो उसकी मां ने रोक दिया कि रुक जा, मैं देखती हूं कौन है। उसकी माँ ने कहा कि जिसकी तू याद करती है शायद वही पधारा होगा, पर मैं देख लूं कौन है। परवा आई तो पूछी तुम कौन हो, तो भगवान शंकर जो ब्राह्मण वेश बनाकर आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं हूं तेरा गुरु पुजारी मंदिर का। और इतनी रात्रि मर्द रात्रि में कैसे पधारे, चार पांच घंटे के बाद स्वयं मैं आपके मंदिर में आती, बोले कुछ विशेष काम था। परवा की मां ने कहा कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अर्ध रात्रि में किसी घर पधारना इस तरह। बोले इसकी तो चिंता छोड़, मैं विशेष काम से आया हूं। बोले काम बताइए। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुंदर के साथ तेरी कन्या परवा का ब्याह होना चाहिए, और बड़ा अच्छा ये संयोग है, सुंदर भी चाहता है तेरी कन्या, परवा भी उसको चाहती है। परवा को जब बुलाया तो परवा ने कहा कि ब्याह इसी शर्त पर होगी जब साक्षात भगवान कह दें कि ब्याह होवे, जो आपके कुल देवता मंदिर के जो भगवान शंकर हैं, वे आकर स्वयं जब कहें तब विवाह होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा चिंता मत कर, बस थोड़ी देर में वे भी आएंगे। इधर जो है भगवान शंकर बाहर के दरवाजा बंद हुआ, पांच मिनट के बाद शंकर थे ही आ गए। बोले कि देख हमारा आशीर्वाद है, तुम दोनों अपना नया जीवन प्रारंभ करो। पूरे गांव में सपना दे दिया कि सुंदर परवा का ब्याह होना चाहिए। प्रातः काल होते ही अपना विधिवत दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद आप जानते हैं ना कितना सुख होता है, एक साल के अंदर पूरा सुख समाप्त, आकाश उड़ जाता है। कई लोगों सबने पूछा, ऐसी बात नहीं। तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद कुछ दिन के बाद सुंदर को अपने गलती वाला पश्चाताप हुआ। अब विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी आएगी। पहले तो आपको अकेले की जिम्मेदारी थी, वो एक्चुअल इतनी थी कि आपको बस कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, पर्याप्त है। परंतु विवाह होने के बाद पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, महावीर हैं, बलवान हैं, हम लोग तो भगोड़े से संसार से। हमारे कैलाश के दशम पीठाचार्य कहते थे कि सन्यासी लोग हम लोग भगोड़े हैं, हम लोग जिम्मेदारी संभाल न पाए तो छोड़कर सीधे आ गए, तो आप लोग महावीर हैं। इधर जो सुंदर ही पछताने लगा, जाकर भगवान के चरणों में गिर के रोने लगा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने ब्याह कर लिया, अब जो है समय से आपकी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, अब पत्नी कहते कि ये करो वो करो, ये भी झमेला खड़ा हो गया। जब विवाह हो जाएगी तो पत्नी की बात सुनना ही पड़ेगा। आप माता पिता की बात इनकार कर सकते हैं, काम चल जाता है, माता पिता सहन कर लेंगे, पर श्रीमती सहन नहीं करेंगी, वो तो बार बार कहती रहेंगी। अब बेचारा रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता की बात नहीं, कुछ समय के बाद तेरा उद्धार होगा। इधर एक दिन अजीब घटना घटी। सुंदर को भगवान ने कह दिया कि तू चिंता छोड़, जब भी तुझे समय मिले नहा कर बिना नहा कर तो मंदिर में आकर के अपने नए स्तोत्रों से मेरा स्तवन किया कर। एक दिन सुंदर जल्दबाजी में, समय बहुत अधिक हो गया था, बिना नहाए ही मंदिर में प्रवेश करके आंख बंद कर स्तुति गान प्रारंभ कर दिया। बस्त व्यस्त व्यस्त थे, मुख में अभी पान की समझो की लालिमा थी, आंख में कीचड़ थी। मंदिर का रक्षक जिसका नाम था वीर मित्र, वह दूर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। बोले कि कैसा धूर्त है, बिना नहाए धोए मुख में पान चुबा रहा है, और कपड़े अस्त व्यस्त, आंख में कीचड़ है, और आंख बंद करके स्तुति शुरू कर दिया। अपने हाथ में परसु लेकर दौड़ा, बोला कि जल्दी निकल नहीं तो तुझे काट डालूंगा। अभी जब रक्षक दौड़ा तो डर के मारे सुंदर जो है कपाट अंदर से बंद कर लिया। जब कपाट बंद कर लिया, भगवान को पकड़ लिया कि क्षमा करे हमसे भूल हो गई, या आपका द्वारपाल मुझे मार डालेगा, दरवाजा खोलूंगा तो आप मुझे सद्बुद्धि दें। भगवान शंकर ने अंदर से कहा कि मित्र वीर मित्र तू चिंता मत कर, ये हमारा अनन्य सखा है और भक्त भी है।

0: और हमारे आदेश से इस प्रकार से मंदिर में पधार रहा है, इसलिए मंदिर तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ है। इतना सुनते ही द्वारपाल और आग बबूला हो गया। बोला कि आप जगत गुरु कहलाते हैं, आप संसार के शासक हैं, नियमन करता है, और आप ही जब ऐसे धूर्तों को मंदिर में बैठाएंगे जो कि माता जी अंदर बैठी है और आप अकेले हो, तीसरा कोई है नहीं, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? तुम दोनों जल्दी से बाहर निकल आओ, अभी सुबह का समय है। भगवान शंकर को भी डांट दिया, आप भी निकलो। देखो भक्तों की ऐसी जो है ना प्रतिभा होती, प्रभाव होता है। ज्ञानी नहीं डांट सकता है, पर भगत भगवान को जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। गोपियां तो भगवान को पाव भर छांछ में नचाती थी, जिससे सारा दुनिया नाचता है उसको नचा रही गोपियां। यहां पर भी भक्त ने कहा कि आप भी बाहर निकल आओ, क्योंकि मंदिर आपने शुद्ध कर दिया, हमें सफाई करनी पड़ेगी। अब जो है उत्तर दिशा से दरवाजा खुल गया, भगवान शंकर की पिंडी मंदिर के बाहर स्थापित हो गई और सुंदर वय से तेजी से भगा, भागते भागते वहां शब्द ने गांव पहुंच गया। इधर जब देखा वीर मित्र कि दरवाजा पूरब का बंद है, उत्तर दरवाजा खुल गया और शिवलिंग भी बाहर स्थापित हो गया, उसके मन में उस भगवान के प्रति बड़ी नफरत हो गई कि भगवान बड़े पक्षपाती हैं और अपने भक्त के लिए, मित्र के लिए इन्होंने दूसरा दरवाजा खोल करके और बाहर भगे। उसने प्रतिज्ञा किया कि आज से मैं इस जो यहाँ के देवता कमलानाथ हैं, कभी पूजा न करूंगा न दर्शन करूंगा, बड़ी कभी यहाँ पर प्रवेश भी नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से कहीं बाहर चला गया और कुछ दूर जा करके छोटा सा मंदिर बना करके वही पूजा शुरू कर दिया। इधर भगवान शंकर अपने भक्त की परीक्षा के लिए एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं कि सही में इसने जो प्रतिज्ञा किया है वह अटल है कि नहीं। भगवान परीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। उसका नियम था कोई भी यदि द्वार पर आए तो उसका चरण धो करके और उसको भोजन कराना, पर एक शर्त था, वह पूछता था कि आप कहां से पधारे हैं। यदि बोल दे कि मैं कमलानाथ के यहां से आया हूं तो सीधा पैर भी काटता था, ये भी नियम था। ये बाएं हाथ में परसू रखता था, दाएं हाथ से पैर धोता था और अपने पत्नी को लगा रखा था जल गिराने के लिए। तो पत्नी बहुत चतुर थी, पत्नी पहले ही सबको पूछ ले अभ्यागतों से कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हैं तो झूठ बोल देना, कहीं और का बता देना, अन्यथा हमारे पति देवता आपके पैर काट डालेंगे या चले जाना। अब ये जब ब्राह्मण पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि आप यदि कमलानाथ पुरुष आए हो तो झूठ बोल देना या चले जाना, नहीं तो हमारे पति देव पैर काट डालते हैं। इस ब्राह्मण ने कहा कि देख देवी, मैं तो कमलानाथ पुरुष आया हूं, मैं परम सही हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुझे जोर से भूख भी लगी है, मुझे भोजन भी करना है और तेरे पति देवता बड़े अच्छे शिव के भक्त हैं, मैं बिना भोजन किए नहीं जाऊंगा और झूठ भी नहीं बोलूंगा। अब पत्नी घबराई, पत्नी ने चालाकी किया, परसा को छिपा दिया दूर। जैसे ही आए पैर धोने लगे, पूछे कि आप कहां से पधारे हैं, बोले कमलानाथ पुरुष आया हूं। बस सुनते ही वीर मित्र आग बबूला हो गया, बोला कि परसा लाओ, इसका पैर काटते हैं अभी। अब परसा डोले मिले ही नहीं कहीं, तो डंडा उठाया, बोले किसी से पूजा करे भगवान शंकर, ब्राह्मण वेश में भगे पीछे पीछे और ये डंडा लेकर के धनुष बाण पीछे पीछे दौड़ रहा। भगवान शंकर भागते भागते कमलानाथ क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो दूर से ही धनुष बाण से अनुसंधान शुरू कर दिया, मारने लगा। भगवान शंकर भी बाण चलाने लग गए, भयंकर संग्राम। कि भगवान शंकर ने देखा कि अपने प्रतिज्ञा पर अटल है, एक तरफ भगवान शंकर का नाम भी लेता, दूसरे तरफ कहता है कमलानाथ पुरुष से कोई भी आएगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अंत में भगवान को हार करके वही दर्शन देना पड़ा। देखो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों के भय को दूर करते हैं, इसलिए इनका यह सार्थक नाम है भुवन भय भंगक व्यसनिना। यदि आपको संसार से भय लगता हो, मौत से भय हो, कामना से पीड़ा हो, तो अपने कामना को यदि आप भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करेंगे तो वह कामना नष्ट हो जाएगी, आत्म काम हो जाएंगे, परिपूर्ण काम हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति की उपलब्धि होगी। शेष कल विचार करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तो दूसरा शब्द दिया चित्ताकाश. ये चित्ताकाश क्या है? तो संकेत किया चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यथा. चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यथा. क्या है? चित शब्द है, और चित शब्द में एक तकार और बैठा दो तो क्या बन गया? चित्त बन गया. ये आचार्य शंकर का अनुभव उनका है, और उन्होंने इस अनुभव को दिया. वो लिख रहे हैं कि चित शब्द जो है, तो चित चैतन्य का वाचक है, चिदानंद का वाचक है, सदानंद का वाचक है, और चित्त अंतःकरण का वाचक है, मनादि जहां. तो जहां से उस तकार को हटा दो तो क्या रह गया? चित रह गया. अब जब ये समझ लिया जाता है कि चित्त क्या है और चित क्या है, लेकिन ये चित्त कहां होगा? चित्त के बगैर चित्त क्या शब्द बन जाएगा? चित्त शब्द न बनाओ और केवल चित्त शब्द बनाओ तो केवल तकार से क्या चित्त शब्द बन जाएगा? नहीं बने. अधिष्ठान उसका क्या है? चित्त चैतन्य. उसी चैतन्य में एक तकार की और कल्पना कर ली तो क्या बन गया? चित्त. ऐसे ही और तकार को भी हटा दो तो क्या रह जाएगा? चित ही तो रहेगा कि और कुछ रह जाएगा? और यही सारा का सारा यहां बतलाया कि जीव है क्या. आप सुनते रहते हो, वेदांत के ग्रंथ भी सुनते हो, स्वाध्याय भी करते हो. जीव क्या? अंतःकरण की उपाधि से जो उपहित है उसी का नाम क्या है? जीव. और अंतःकरण की उपाधि से उपहित और अंतःकरण की उपाधि को हटा दो तो क्या रहेगा? उपाधि के हटने पर क्या शेष रहता? अधिष्ठान मात्र शेष. और उपाधि क्या है? उपाधि क्या है? आप जैसे सामान्य लोक में देते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, बाबा जी, ये सब क्या है? ये सब उपाधि. लेकिन उपाधि किसमें आई? उपाधि ये स्वतंत्र नहीं. केवल उपाधि की सत्ता ढूंढो कि डॉक्टर, तो डॉक्टर किसी जीव को लेकर के ही, किसी प्राणी को लेकर के ही तो आएगा. वो गुण कहां रहेंगे? वो धर्म कहां रहेंगे? स्वतंत्र रूप से उसकी अपनी निजी कोई सत्ता नहीं. इसलिए उपाधि का लक्षण शास्त्रकारों ने किया. उपाधि क्या है? अविद्यमानत्वे सति, असंश्लिष्टत्वे सति, व्यावर्तकत्वम उपाधेर लक्षणम. उपाधि क्या है? कहने लगे जिसकी सत्ता है ही नहीं. बड़ी विलक्षण बात है. जिसकी निजी सत्ता है ही नहीं और सत्ता भी नहीं है, और कहने लगे असंश्लिष्ट, उसका संबंध भी नहीं, और संबंध भी नहीं, सत्ता भी नहीं, लेकिन फिर भी कर क्या रही? व्यावर्तकत्वम, भेद बतला रही है, दूसरे से भिन्न करके बतला रही है, तो उसी का नाम क्या है? उपाधि. लेकिन ये उपाधि की अपनी निजी सत्ता ढूंढने जाओ तो कहीं मिलने वाली नहीं। उदाहरण के लिए जैसे और मोटे ढंग से समझो, छाया जो है उस छाया की सत्ता ढूंढो तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी। और छाया जो है वो आप में मिली है का मिली भी नहीं है और आपसे भिन्न भी नहीं है, ये भी समझ लेना। छाया भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, सत्ता वाली भी नहीं है, लेकिन सारे क्रियाकलाप वह दिखला रही। ऐसे ही उपाधि विशेषण तो कम से कम क्या होता, विशेषण का लक्षण वहां किया कि विशेषण तो जो है संश्लिष्टत्व सति व्यावर्तकत्व विशेषत्व। ये कपड़ा लाल है तो ये जब कहोगे तो क्या है, यहां विशेष विशेषण भाव होगा और विशेष विशेषण भाव में यह कपड़ा जो है सफेद रंग का था, उसकी सत्ता सफेद थी, लेकिन लाल रंग है और वो लाल रंग इसमें संश्लिष्ट हो गया, उसका इससे संबंध हो गया, इसका उसका चिपकाव हो गया, लगाव हो गया। लेकिन उपाधि का तो लगाव भी नहीं होता, ये विलक्षण था। ऐसी उपाधि और ऐसी उपाधि को लेकर के ही वो व्यावर्तन भेद खड़ा कर देते। ठीक यही जो तकार है वो क्या है, चित्त जो बना, तो चित्त शब्द में तकार आया उपाधि रूप से, अंतःकरण ही उसको बना उपाधि रूप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी सत्ता नहीं है लेकिन वो सत्ता हमने मान ली, और जो नहीं है उसे मान लेना ही हमारी मृत्यु का कारण है, हमारे दुख का कारण है, हमारे जन्म का कारण है, हमारे रोगों का कारण है। यदि वह मान्यता जो उपाधिकृत मान्यता है उसकी हम निवृत्ति कर लें, और वो निवृत्ति का उपाय क्या है, तो प्रबोधई के समीर ना प्रबोध वा, वो कब, तो चित्त और चित्तम विजानीयात, चित्त क्या है और चित्त क्या है, तो दो चीजें नहीं, चित्त ये अलग चीज नहीं है और चित्त अलग चीज नहीं, ध्यान रखना। क्या चित्त और चित्त ये दो सत्ताएं, अरे चित्त में ही तो आया है तभी तो चित्त बना है, केवल उस तकार को हटाना मात्र है तो क्या रह जाएगा, चैतन्य। सत्ता किसकी है, सत्ता चैतन्य की है, चित्त की है, तकी कोई सत्ता स्वतंत्र उसकी सत्ता कोई नहीं। ऐसे ही यहां पर जो जीव आदि और जिसको लेकर के भेद खड़ा हुआ, जिसको लेकर के नाना प्रकार के उपद्रव हुए, कहने लगे ये ही समझना और ये समझ लिया जाए, तो कहने लगे ये फिर जीव क्या है, तो क्या सिद्ध होगा, जब तकार हटा दिया तो चित ही रह गया, वायु आदि हट गई तो क्या आकाश ही रह गया, है ना। ऐसे ही यहां पर इसलिए यजुर्वेद के अंतर्गत क्या चर्चा आई, अमृतस्य पुत्र, हम आपको अपने को मरण धर्मा मानते हैं लेकिन हम हैं क्या, तो क्या कहा, अमृतस्य पुत्र, अरे तू तो अमृत पुत्र है, और आप सुनते भी हो आत्मा वही है पुत्र नाम आश, वो पुत्र भी कौन है, तो कहा आत्मा ही है, या वहां दूसरा शब्द दे देते हैं, पिता वही है पुत्र नाम आश, पिता का ही अंश तो पुत्र रूप है, उससे भिन्न उसकी सत्ता नहीं है। ऐसे ही यहां संकेत किया अमृतस्य पुत्र। तो अब जब ये सारी बातें हम शास्त्र की सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे सामने क्या चीज है, तो कहने लगे हमारे सामने संकल्प भी है और विकल्प भी, प्रत्येक प्राणी के अंदर दो चीजें, और ऐसी स्थिति में वो खड़ा है जहां पर उसके अंदर प्राणी जीव भाव है तो वहां संकल्प विकल्प भी रहेगा, और जब तक संकल्प विकल्प रहेगा तब तक क्या होगा, गति प्रवाह बना रहेगा। आप जानते हो साइकिल, साइकिल के अंतर्गत गति कब आती है, उसके पैडल होते हैं, और पैडल कितने होते हैं, दो। एक पैडल पर आप पैर रखते हो तो वो पैडल कहां जाता, नीचे की तरफ जाता, और दूसरा ऊपर की तरफ आ जाता। उस पर पैर रख करके उसे दबाते हो तो वो नीचे चला जाता, वो ऊपर आ जाता है इसी को। और फिर क्या होता, साइकिल में प्रवाह गति हो जाती। अब यदि उस पैर का जो आपने दबाव दिया था, उन पैरों को वहीं रोक दो तो क्या होगा, वो पैडल भी वहीं रुक जाएंगे, और पैडल भी रुक जाएंगे तो साइकिल में जो गति है वो रुकेगी कि चलती रहेगी, का वो भी रुक जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हमने ये संकल्प हुआ, मैं जीव हूं, मनाया मन को लेके संकल्प होता है तो विकल्प भी खड़ा हो जाता। अब मैं जीव हूं तो कहता हूं जन्म लेने वाला हूं, मरने वाला हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, ये सब आ गया। लेकिन चाहता क्या अंदर से, अंदर से तो चाहता कि मैं जन्म न लूं, मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं, मैं रोगों को प्राप्त न हूं, मैं दुखी न हूं, है ना, मैं अमर हो जाऊं। तो ये दो स्थितियां प्रत्येक जीव की सामने, एक तो मृत्यु और दूसरी अमरता, ये दो स्थिति प्रत्येक जीव के सामने है। तो जीव चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं, मृत्यु से रहित हो जाऊं और अमृत हो जाऊं, है, अमरता को प्राप्त कर लूं। ये प्रत्येक प्राणी की स्थिति। अब इसके लिए कहा ये होगा कब, तो बतला दिया आचार्य ने कि चिदाकाश में ये खेल है, प्रमोद रूपी वायु के द्वारा ही ये सारा का सारा झंझावात समाप्त, और समाप्त हो जाएगा तो वो तो जैसा था वैसा ही है और वो अमर रूप ही है। इसलिए वेद कहता अमृतस्य पुत्र, तुम हो तो अमृत, लेकिन तुमने अपने को क्या मान लिया है, खेल में मान लिया है मरणधर्म। आप लोग कभी वृंदावन जाते हो, और आजकल तो वृंदावन वासी यहां भी आ जाते, तो रासलीला करते और आप लोग देखते हो रासलीला, लीला नाम है, और लीला किसकी करते हैं, तो रास का मतलब ये मैंने रस से होने वाला जो है उसे रास शब्द भी कह देते, रस से बने, तो मैंने जो रस है उस रस की ही लीला करते, या ये कह दें रहस्य की लीला करते, रस ही तो रहस्य, रसो वही सह। अब जो है जब वो लीला करते हैं तो उस लीला को तो हम देखते हैं, और लीला में इतने लीलान्वित हो जाते हैं कि लीला का जो सार है, लीला का जो मूल रस है, उसे हम पकड़ नहीं पाते। आप जानते हो जब वहां पर रासलीला होती है तो जो कृष्ण बनता है, और हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना, जो कृष्ण बनता है वो बोलता है वहां, और क्या बोलता है, यमुना के किनारे खड़ा हुआ और गोपिकाएं हैं, और वहां पर क्या बोल रहा है, जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। ये अक्सर बोलते, जितने भी कृष्ण बनते उनको रटा हुआ है, रिपीट है, और वो उनका अभ्यास है, उसको जो बोलेंगे जहां भी ये रासलीला होगी वो बोलेंगे जग नैया हमार। कृष्ण जो बनता है वो बोलता है जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। क्या बोलता है, कहा ये जो सारा जगत है वो क्या है, कहा एक नाव, नौका है, नाव है, कहा ये नौका किसकी है, कहा मेरी। कृष्ण बनता वो क्या कहता, जग नैया हमार, ये नौका मेरी है। और कहा ठीक, अच्छी बात, नौका तुम्हारी है, तुम कहां हो, कहा मैं उसी नौका में हूं, देखना ध्यान से, जग नैया हमार, नैया में हम कहां है, कहा जगत में है। और उसी कृष्ण की बात नहीं, आप लोग भी कृष्ण हो, आपकी सबकी बात वही, जग नैया हमार नैया में हम, और आगे शब्द जोड़ दिया। आप कह दोगे ये घर मेरा, तुम कहां हो, कहां इस घर में, यहां तक तो समझ में आ जाता, लेकिन आगे जो संकेत कर दिया वो विलक्षण कर दिया। क्या कहा? जग नैया हमार नैया में हम, और हम में कहा वो नैया कहां है, तो कहने लगे वो मेरे में है। हाँ, विचार करो, एक लीला है, वह आपको अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, और परम जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देते भी हैं, लेकिन वो जान के दे रहे हैं कि अनजान के दे रहे, वो बात अलग है। वो भी खेल में खेला है, खेलान्वित हो रहे हैं, उनकी ही दृष्टि कहां है बात अलग है, लेकिन है ये यथार्थ। ये समस्त वेदों का, समस्त श्रुतियों का और समस्त सार का भी सार है। जग नैया हमार नैया में हम, और हम में सारा ये जगत की नौका भी। तो क्या हो गया? कहा इसका मतलब यही है अभेदत्व, यह है प्रबोध, क्योंकि हमारे अंत, इसलिए तुलसीदास ने सरल भाषा में लिख लिया, मूदो नयन कतहु को, जब तक हमारी दृष्टि है तभी तक सब कुछ है, और दृष्टि न हो तो सारे शास्त्र सुसुप्ति अवस्था को लेकर के यही तो बतला रहे, यही अनुभव की तरफ इंगित कर रहे। तो ये सब कहां है? तो जो संकेत कर दिया उसी चिदाकाश में। क्या आया? माया भी आई, मन भी आया, अहम भी आया, सारी वृत्तियां भी, तो सारा जगत भी उसी में है, और उसी जगत में भी वो विद्यमान है, उसका अभाव नहीं। और कहने लगे वो जगत कहां है? तो कहा उसी में है, उससे भिन्न जगत की सत्ता नहीं। ऐसा जब बोध होता है, उसी बोध के लिए संकेत करते, तब जो है अमृत की प्राप्ति होती। अब ये जो है बोध हो हमें, तो हम शास्त्र सुनते हैं लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए ही यहां कहा रुचि नाम। ध्यान देना, ये सारी चर्चा क्यों कर रहे, बार बार जो है यहां पर कहा विस्पष्टार्थ रुचि नाम। जो उस विस्पष्ट रूप से उस रहस्य को समझना चाहते हैं और उसमें उनकी रुचि है, ऐसी रुचि वाले। हम लोग गीता को पढ़ते हैं, बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन इस ज्ञान को प्राप्त करता? इस ज्ञान को प्राप्त कौन करता है? का श्रद्धावान। और भी साथ में तत्पराचार्य जोड़ दिया, लेकिन उसकी चर्चा न करके। अब ये श्रद्धा क्या है? हम श्रद्धा को समझते क्या? श्रद्धा का रूप क्या? मोटे उदाहरण से बतलाऊं, श्रद्धा को ऐसे समझ लो जैसे तुम्हारे घर में क्या हो गए? चूहे हो गए। और चूहे हो गए तो चूहों का स्वभाव क्या? जो भी वस्तु उनके सामने आएगी उसे कुतर डालेंगे, उसमें विकार पैदा कर देंगे। तब तुम क्या करते हो कि हमारी वस्तु सुरक्षित रहे तो चूहों से निवृत्ति हो जाए। तो चूहे से निवृत्ति कब हो? तो तुम आप अपने को हैं अहिंसावादी मानते हो, धर्म के अनुयायी हो, हिंसा करना नहीं चाहते हो, और हिंसा नहीं करोगे तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? तब क्या करते हो? चूहेदानी बनवा लाते हो, और चूहेदानी बनवा करके लाके उसमें कुछ डाल देते हो, और फिर क्या होता है? चूहा आकर के उसमें, अब उसको निकाल के बाहर कराते, ये बात भिन्न है, उसको हम नहीं लेने, इतने अंश में लेना कि चूहे दानी में चूहा आकर के फंस गया। अब चूहा निकलना चाहे तो निकल पाता, और जब निकल नहीं पाएगा तो तुमको हानि भी नहीं कर पा। और निकलता है तो कब निकलता है? कहा जब आप छोड़ोगे, आपके पूरे बंधन में आ जाता है। लेकिन ये होता कब है? ये चूहादानी क्या है? श्रद्धा। ये हमारे जीवन में जब आ जाती है, श्रद्धा का ऐसा स्वभाव है, क्योंकि तब कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। और जिसके अंदर ये श्रद्धा आ जाती है, फिर वो उस परमात्मा को पकड़ने नहीं भाग रहा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर उसे कोई विशेष प्रयत्न की जरूरत नहीं रह जाती। जैसे चूहा आकर के उसमें फंस जाता है, वैसे ही ज्ञान भी उसमें आ जाता है या वो परमात्मा वो अमरता भी उसमें आ जाती है। इसलिए कुछ लोग भक्त जो होते हैं ना वो कह देते हैं असर होगी उल्फत में तो वो आ ही जाएंगे, मुझे परवाह नहीं अगर वो तन के बैठे, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी प्रार्थना के अंदर यदि असर होगी सामर्थ्य होगी तो वो अपने आप आ जाए। और वो प्रार्थना वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, तो पहले तो श्रद्धा नहीं थी, ये नवद्धो बलि राजा हम बोलते तो हैं कर्मकांड, दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुवधनामी रक्षे मा चल मा चल, रक्षा सूत्र बांध देते यज्ञ आदि करते हो मांगलिक कार्य करते, लेकिन उस रक्षा सूत्र का तात्पर्य क्या है और कब से ये शुरू हुआ, तो वहां क्या है, वहां पर भगवान आए लेकिन वो जानता तो था नहीं, उसे तो उसका ज्ञान नहीं था, और जब ज्ञान हुआ तो उसके जीवन में श्रद्धा आ गई। शुक्राचार्य को ज्ञान तो था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना भी किया, लेकिन बलि में श्रद्धा आ गई, और जब श्रद्धा आ गई तो उसने अपना कुछ बचाया भी नहीं, समर्पण भी वही होता है, वास्तव में समर्पण शिष्यत्व भी वही आता है, और जहां ऐसा समर्पण आता है ऐसा शिष्यत्व आता है वहां सत्य की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए केवल गीता की बात नहीं, गीता तो सारी उपनिषदों का सार, व्रतेन दीक्षा मापनोती दीक्षया मापनो दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा मवापनोती श्रद्धया सत्य मस्त होते, वहां संकेत किया श्रद्धा के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो जाती, इसलिए यहां रुचि नाम करके संकेत कर दिया वो श्रद्धा, तो कब, तो वहां श्रद्धा का रूप

0: लेकिन शब्दा अनेक अर्थ, शब्द के अर्थ अनेक होते। वहां जिसे तत्परा शब्द से कहा, यहां व्रतेन शब्द से कहा। यहां व्रत का मतलब जो हम व्रत समझते वो व्रत नहीं, वहां क्या है, वहां जिसे तत्पराह शब्द कहा, यहां पर व्रत शब्द का। तो तत्पराह संयतेन्द्रिया तत्पराह श्रद्धावानम ज्ञानम लभते, जब अन्वय करोगे तो क्या है, संयतेन्द्रिया तत्परह श्रद्धावान ज्ञानम लभते। वेद ने कह दिया व्रतेन दीक्षा, और दीक्षा के द्वारा दक्षिणा, दक्षिणा के द्वारा श्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा सत्य, एक ही सार को वहां पर निकाल दिया। तो वहां व्रतु परिपालन अर्थ में धातु है, इसका मतलब है व्रत। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अहंकार आदि को हटा करके वर्णाश्रमोचित धर्म से, और जो है जो प्राप्त समय के अनुकूल कर्म हुआ है उस कर्म का परिपालन करता है, तो वही है व्रत। और उस व्रत के द्वारा उसके जीवन में दीक्षा आती। दीक्षा का मतलब क्या, एक तो ये अर्थ है, गुरु मुखात स्वयिष्ट मंत्र ग्रहणम इति दीक्षा, इसको भी दीक्षा कहते। लेकिन यह दीक्षा विपरीत यहां नहीं है, यहां दीक्षा शब्द का अर्थ जो है तत्परता, जिसको आप शिक्षा और दीक्षा बोलते हैं ना, तो वो अनुभव, अर्थात जब आप अपने कर्तव्य को सही ढंग से करोगे, कर्तव्य परायण होगे, कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से करोगे, तो उसमें आप दीक्षित हो जाएंगे, उसमें आप अनुभवी हो जाएंगे, और उसमें आपकी संलग्नता हो जाएगी। दीक्षा शब्द का, और जब इस प्रकार की दीक्षा आती है, जब इस प्रकार की संलग्नता होती है, इस प्रकार की तत्परता होती है, तब दक्षिणा की प्राप्ति होती है। अब दक्षिणा ये नहीं, हमने कथा कराई, यज्ञ कराई, तो पंडित जी को दक्षिणा दे, वो दक्षिणा नहीं। यहां दक्षिणा शब्द का अर्थ है, पाणिनी व्याकरण में एक प्रयोग आता है, दक्षिणा गाथका कुशला इत्यर्थ, ये गायक बड़ा दक्षिण है, तो क्या है, विवेक, प्रबोध, निपुणता। तो दक्षिणा शब्द का अर्थ वहां है विवेक, प्रबोध। समय हो गया, आप कल चर्चा कर देंगे इस पर।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: इसमें है जो है ना संवाद है जग्जवल्का का या गार्गी का, तो योग के विषय में है। अभी आपको करना तो है नहीं किसी को, आने बार इसका प्रयोजन भी नहीं है। जितना प्रयोजन है उतना श्लोक में है। जितना प्रयोजन है ना आपने, उतना श्लोक में ही है। देखिए, प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तं ब्रह्मणि स्थितं भवति इति प्राणायामो निर्दिश्यते। देखो, प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य, मन के जो मल है, ये मल का धो डाला आपने, किससे धो डाला, प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा।

प्राणायाम क्षपिका मनोमालस्य, तब जब मल से रहित हो गया मन, तो क्या हुआ? चित्तम ब्रह्मण स्थितम। तो मन को चित्त कहो, मन का बात है कि है चित्त हो गया तो ब्रह्म हो गया, है ना। चित्तम ब्रह्मण स्थितम, चित्त को आपने कहाँ लगा दिया, कहाँ स्थिर कर दिया, वो जो कल के प्रसंग में बतलाया, ख्याल है कि नहीं। तत्र योनिम कृणवसे, सातवां मंत्र देखो, सवित्रा प्रसवेन जुषित ब्रह्म पूर्वियम, तत्र योनिम कृणवसे नहिते पूर्वम अक्षिपतः, पूर्तम अक्षिपतः। आया ना, पूर्वियम पूर्वम ब्रह्म दूषितः, पहले ब्रह्म का सेवन करना चाहिए, फिर उसी ब्रह्म में मन को स्थित कर देना चाहिए, ब्रह्म में निष्ठा कर देना चाहिए। आप उसी बात को यहाँ बतला रहे हैं, प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तम ब्रह्मण स्थितम भवति इति। हाँ, पेज नंबर 148। पेज नंबर वहां श्लोक रहे या भाष्य बतला रहे, प्राणायाम का क्रम और उनकी जो है ना महत्व बतला रहे। चित्त शुद्ध आपका कैसे होगा? को प्राणायाम के द्वारा, जो प्राणायाम का मतलब क्या है? वो जोगीराज रामदेव बोलता है कि नहीं, प्राणायाम करो, प्राणायाम का मतलब क्या बतलाते हैं? नाड़ी नहीं, क्या बतलाते हैं प्राणायाम? अरे इतना दिन सुनते हैं जोगीराज से, रोज देखते हो, है ना, ऊपर खींचने का नाम क्या है? पूरक, फेंकने का नाम रेशक, रोकने का नाम कुंभक। ये तीन बातें बताते हो, पूरक, रेशक, कुंभक। और पूरक का रेशक करो, करते हैं कि नहीं? हाँ। और तीसरा कपाल भाती, भस्त्री का, ये चार बात पर जोर देता है। लालू प्रसाद कहते हैं उनका प्राणायाम क्या, पेट को धक्का दे करके भीतर ले जाओ, धक्का दे करके बस यही उनका जोग है, धक्का देकर भीतर लाओ और बाहर लाओ, यही उनका जोग। एक ही बार वो बैठा था, सीख गया जोग, भस्त्रिका प्राणायाम, उड्डयन प्राणायाम, हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात बतला रहा है, नाड़ी शोधन कैसे होगा? तो प्राणायाम आनी बात, तो प्राणायाम माता प्राणायाम के द्वारा, प्राणायामे न प्राणायाम के द्वारा क्षपित मनमल, क्षय कर दिया मन का मल जिसने, मन का माल जिसने क्षय कर दिया। यद्यपि योग दर्शन में ऐसा है तो मन का माल प्राणायाम से नाश नहीं होता, याद रखना। मनोमल क्या है? राग द्वेष, हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश, क्लेश, पंच क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। क्लेश का नाश होता है कैसे? अविद्या के नाश होने से। अविद्या का नाश जब तक नहीं होगा, पंचक्लेश का नाश नहीं होगा। प्राणायाम केवल प्राणवायु को स्थिर करने के, मन को स्थिर करने के लिए आनी बात। तो पर यहां भी लिखते हैं, प्राणायाम क्षपित मनमलस्य चित्तम ब्रह्मण स्थितम। चित्त को आपने कहाँ लगाया? ब्रह्म निष्ठा कर दिया, हाँ, समाधि, हाँ, ध्यान में लगाया,
चित्तं ब्रह्मणे स्थितं भवति इति प्राणायामो निर्दिश्यते। इसीलिए यहां प्राणायाम का निर्देश करते हैं। प्राणायाम प्रथमम नाड़ी शोधनम, आप प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपका नाड़ी शोधन चाहिए। नाड़ी नाड़ी शोधन, शोधन समझ में ना, औषधि का शोधन, धातु शोधन, सुवर्ण का शोधन, शोधन करते कि नहीं? सुवर्ण को जो शोधन करते हैं, औषधि का शोधन करते हैं, माने दोष निकाल देते हैं। शोधन का मतलब दोष निकाल देना। तो नाड़ी शोधन माने नाड़ियों में जो है जो दोष है और दोष को दूर कर देने का नाम नाड़ी शोधन। शोधन किया, औषधि शोधन करे ना, वैद्य लोग शोधन करते हैं। ऐसे प्राणायाम के द्वारा प्राण का शोधन किया जाए, नाड़ी शोधन किया जाए। वो कहते ना आन पान और आन बान प्राण, ऊपर नीचे ऊपर ले जाना, बाहर निकलना और रोकना, ये तीन बात है। तो ध्यान देने से इसलिए किस लिए ध्यान दिया जाता है? ये यदि तुमने वायु के ऊपर नीचे भीतर बाहर रुकने से होता क्या, तुम्हारे दृष्टि वहां लग जाएगी। उन लोग कहते हैं कितने बार तुमने प्राणवायु को भीतर ले गया, पूरक किया, ध्यान रखो, और कितने बार रेशक किया उसको ध्यान रखो। ब्रह्म में ध्यान नहीं, आत्मा में ध्यान नहीं, ईश्वर में ध्यान नहीं, ध्यान कहाँ रखो? वायु में, वायु में, श्वास में। श्वास को भीतर ले जाना, पूरक वायु फेंकना, रेशक भीतर रोकना, अभ्यंतर कुंभक बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। तो ऐसा करते रहोगे तुम्हारी वृत्ति तदाकार हो जाएगी। तो तुम्हारे जो मन में जो आने वाला जो राग द्वेष आदि वो सब आएगा नहीं, यही शोधन है। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम, भाष्यकार कहते सबसे पहले प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन करो। नाड़ी समझ ना, नाड़ी नस, नसों को नाड़ी शोधन कहते ना। तथा प्राणायाम ही अधिकार, आप तुमको प्राणायाम का नाड़ी शोधन किया नहीं, प्राणायाम में बैठ जाते हो तो प्राणायाम होगा कैसे? क्रम है ना, हर एक वस्तु का क्रम होते। अभी तुम भाजी बनाते हो, भाजी बनाने शीरा बनाने में वो भी एक क्रम होता है कि नहीं? कौन कौन से वस्तु कब डालना चाहिए, कौन से वस्तु कब डालना चाहिए? तो आगे बताएगा सब, नाड़ी शोधन करने के लिए तरीका बताएगा सब। जब बतलाया नाड़ी शोधन करो, नाड़ी शोधन किए बिना प्राणायाम में अधिकार नहीं है, तो आपको बतलाना पड़े नाड़ी शोधन क्या चीज है, बतलाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तथा प्राणायाम में अधिकार, तथा माने इसके बाद प्राणायाम में अधिकार है। किसके बाद? नाड़ी शोधन के बाद। ये अभी देखो बता रहा है, दक्षिणा नासिका पुटम अंगुल्य अवस्तम्भ्य वामेन वायु पुरेत यथाशक्ति। अभी देखो, अभी प्राणायाम करते, कोई कैसे बोलता, कोई कैसे बोलता, कोई भी प्राणायाम सिखा देते। अभी ये शास्त्र का देख लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूरक कैसे करना चाहिए, कुंभक कैसे करना चाहिए, रेशक कैसे करना चाहिए, भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जी स्वयं बतला रहे हैं। दक्षिणा नाड़िका नासिका पुटम अंगुल्य अवस्तभ्य, ये दक्षिण कौन सा है? ये दायना आनी बात, इसको दावा देना अंगुष्ठा, अंगुष्ठा के द्वारा क्या